नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। और अब सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्रवाई कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Chintan. किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

इस झरोखा के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 256। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला घुंघरू की तरह का भाग एक, कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। इसी के तुरंत बाद सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम है राही प्यार के। समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8 बजे, 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर सोनाली पाठक का। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं दिन में 2 बजे। चित्रलोक कार्यक्रम में सुनिए नए गीत सुबह 8:30 पर। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार आनंद बख्शी पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और पुनः प्रसारण रात 9:30। दिन में 11 बजे सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग, 12 बजे हिंदी में समाचार और 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। सुरीला सफर वो कार्यक्रम है जिसमें हमारे श्रोता फेसबुक कमेंट्स द्वारा हमसे जुड़ते हैं दिन में 1 बजे। दोपहर समाचार होंगे दिन में 2:15 पर और सदाबहार नगमे सुनिए 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम का होगा समय दिन में 3 बजे और दिन में 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। राकेश आनंद बख्शी से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक आपको सुनवाएंगे, संपादन सहयोग और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। कार्यक्रम का समय दिन में 4 बजे। शाम 5:30 सुनिए कार्यक्रम तराने नए पुराने, शाम 6 बजे हिंदी में समाचार, जिसके बाद तराने नए पुराने कार्यक्रम 6:30 तक आप कंटिन्यू सुन सकेंगे। शाम 6:30 होगा झरोखा। संध्या रंजन के अंतर्गत सुनिए चित्रपट संगीत, शाम 6:35 पर, शाम 6:45 पर संगीत सरिता। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 बजे सुनिए हवा महल में नाटिका चूहा प्रकरण, लेखन सुधा जौहरी, निर्देशन सुशील बैनर्जी। रात्रि 8:15 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम, 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत कार्यक्रम। छाया गीत में आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर सुनिए कार्यक्रम ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग।

ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय

लक्ष्मण को श्रीराम की खोज में गया देख रावण यति का वेश धारण कर सूनी कुटी के समीप पहुंचता है। सीता जी को अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं सुनाकर वो उनके मन में भय अथवा प्रेम जगाने के प्रयत्न करता है। एक यति के मुंह से दुष्टतापूर्ण गुहार सुनकर सीता के मन में संशय उत्पन्न होता है कि तभी रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। उसका नाम सुन और रूप देखकर सीता भयभीत होती हैं, किंतु धैर्यपूर्वक उसको श्रीराम के पराक्रम की धमकी देती हैं। क्रुद्ध रावण बलात् उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चलता है। सीता का विलाप सुन मार्ग के सभी जड़चेतन प्राणी व्यथित होते हैं। गिद्धराज जटायु सीता जी को पहचानकर रावण से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपनी विनय का रावण पर कोई प्रभाव न होता देख जटायु रावण को पृथ्वी पर लापटकते हैं और चूंच मार मार कर उसे घायल कर देते हैं।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज से हम शुरू कर रहे हैं एक श्रृंखला घुंघरू की तरह। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी संगीत प्रेमियों को राजेश जौहरी का नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम वो मंच है जहां आते हैं हिंदुस्तान के मूर्धन्य कलाकार। ये वो कलाकार होते हैं जिनके लिए संगीत न सिर्फ एक इबादत है बल्कि जिंदगी का दूसरा नाम भी। आज ये मंच सुशोभित है ऐसे व्यक्ति से जिनका व्यक्तित्व विविध विधाओं में बिखरा है और निखरा है। मैं परिचय दे रहा हूं हमारे देश और हमारे फिल्म उद्योग के लब्ध प्रतिष्ठित कवि, गीतकार, गायक और संगीतकार रविंद्र जैन साहब का। दादा से जुड़े हैं वो गीत जो अपने जन्म से ही दीर्घायु पाते रहे। आपको याद है ना, घुंघरू की तरह बसता ही रहा हूं मैं। फिल्म का गीत होने के बावजूद इस गीत का साहित्यिक तत्व आज भी सृजनकारों के लिए प्रेरणा है। जब दीप जले आना, एक डाल पे तोता बोले, तेरा मेरा साथ रहे, दूर है किनारा, राम तेरी गंगा मैली, हर हसी चीज का मैं तलबकार हूं, गीत गाता चल, और अनेक ऐसे ही गीत जो मन पटल पर दर्ज हैं। महान कलाकार रविंद्र जैन साहब का संगीत सरिता में होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विविध भारती में संगीत सरिता का होना। विविध भारती की ओर से, संगीत सरिता की ओर से दादा का स्वागत करते हुए मैं आपको नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार दादा।
2: नमस्कार राजेश। और संगीत सरिता में अवगाहन करने वाले तमाम श्रोताओं को नमन करता हूँ। राजेश का सवाल है कि मैंने दोनों पक्षों को कैसे संभाला। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने दोनों पक्षों को नहीं संभाला है, बल्कि दोनों पक्षों ने मुझे संभाला। गीत इस तरह बचपन से मेरी जिंदगी में शामिल हो गए कि मेरा परिवार साहित्यिक रहा है। मेरे पिताश्री संस्कृत के बड़े विद्वान थे और बड़े भाई साहब साहित्य को डील करते थे, साहित्य में साहित्य रत्न वगैरह कर रहे थे, और उनकी तमाम किताबें, उनसे रचनाएं सुनता रहता था। क्योंकि मैं खुद ज़्यादा नहीं पढ़ सकता था, मुझे डॉक्टर की तरह से पढ़ने को बिल्कुल मना था, मेरी आंखों की रोशनी कम होने की वजह से, लेकिन सुनता रहा हूँ, उनसे घंटों बैठ के सुना है। और जहाँ जहाँ अंत्याक्षरी कहीं होती थी, वहाँ कोई अगर मैं मुझे कुछ याद नहीं आता था तो कुछ ना कुछ जोड़ना शुरू कर देता था, और वहाँ से ही ये जोड़ने का सिलसिला पंक्तियों का शुरू हो गया। और चूंकि अलीगढ़ का हूँ, इसलिए हिंदी और उर्दू और ब्रज भाषा तीनों जबानों का वहाँ संगम है, और उनका समावेश मेरे जीवन में बचपन से ही हो गया। चूँकि मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है विधिवत, और गायक बनना चाहता था, लेकिन इसमें मुझे संगीतकार बनाने में मैं आकाशवाणी को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि इस पे जो प्रोग्राम्स होते थे क्लासिकल के, वो सुन सुन के मैं ये समझ गया था कि मैं इनसे अच्छा नहीं गा सकता हूँ, तो मैं अपनी दिशा बदल दूँ, और कंपोजिशन का काम तभी से शुरू कर दिया मैंने। और इस तरह धीरे धीरे दोनों विधाएँ मेरे साथ हो गई, संगीत और गीत। क्यों भी अगर हम संगीत से गीत को निकाल दें तो संगीत सुना हो जाएगा, सिर्फ सा रह जाएगा, लेकिन साथ ही संगीत शुरू होता है। सा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सा पे मैं आपको आगे चल के एक रचना सुनाऊंगा जो शलज पे ही आधारित है। फिल्मी गीतकार में इस तरह बन गया कि जब कलकत्ते से यहाँ आया तो

0: जानना चाहता हूं कि जब आप बंबई में आए, आपका सबसे पहला गीत फिल्म उद्योग में, और किस फिल्म के लिए, किसने गाया और किस तरह उस गीत का जन्म हुआ?
1: मेरा पहला फिल्मी गीत जो रिकॉर्ड हुआ वो हमारे हरदिल अजीज और मैं ये कहूँगा कि आवाज़ के एकमात्र धनी आदरणीय रफ़ी साहब, जिन्होंने 14 जनवरी 1972 में पहला गीत रिकॉर्ड किया मेरे लिए। शायद 71 था, एक साल में कहीं भूल रहा हूँ, इतने दिन हो गए हैं, लेकिन गीत याद है मुझे। वो गीत नारी सिप्पी साहब की फिल्म सिलसिला है प्यार का शुरू करने जा रहे थे, जो एक शायर की कहानी थी। तो वो फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन वो गीत अभी तक यूं का यूं ही पड़ा हुआ है। वो गीत फिल्म में नहीं आया किसी में, लेकिन आपको मैं चाहूँगा कि उसका मुखड़ा सुना दूँ,
0: जरूर
1: ताकि लोगों को याद रहे, सनद रहेगी आकाशवाणी में।

0: और सचमुच ये सिलसिला तभी से चल पड़ा और आज तक आपकी सेवा में हूँ।
1: और इस तरह हमारे फिल्म उद्योग को रविंद्र जैन नाम का एक महान अध्याय मिला, एक महान संगीतकार और गीतकार मिला। अच्छा दादा, ये बताइए कि आपके ऊपर जैसे साहित्य का इतना प्रभाव रहा, लेकिन फिल्म की सिचुएशन पर गीत लिखना, एक गीत बनाना जो पर्दे पर बहुत सशक्त रूप से उभरे, वो एक अदा है, एक कला है। इस अदा और कला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
0: मेरा फिल्म में कंपोजिशंस का जो अपना मेरा ढंग है वो ये है,
1: जी
0: मैं पूरी कथा पहले सुनता हूँ, उसकी कहानी क्या है, चरित्र क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है, किस प्रदेश की कहानी है, प्लेन्स की है, पहाड़ों की है, ज़मीन की है, गांव की कहानी है, उन करेक्टर्स के मैनरिज्म क्या हैं, उनके हाव भाव क्या हैं, तो मैं वहाँ से रविंद्र जैन को हटा देता हूँ और उसी कलाकार को जीता हूँ जो उस फिल्म में जो पात्र है।
1: वाह वाह, आपकी सफलता के बहुत आगे आकर एक गीत आपकी पहचान बन गया। जैसे मैंने शुरू में कहा, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। इस गीत का क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या इस गीत का अभिप्राय है, इस गीत की बैकग्राउंड क्या है, इस गीत का आधार क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, ये गीत के बारे में बताएं और एक गीत सुनाएं।
0: ये मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि फिल्म सिलसिला है प्यार का सिविसा बनाना चाहते थे और वो एक शायर की कहानी थी,
1: जी
0: तो शायर शायर जो है फिलोसफर भी होता है, और बाद में तो ये गीत फिल्म चोर मचाए शोर में इसलिए लिया गया कि सबको बहुत पसंद था,
1: जी
0: शशि जी को पसंद था और हमारी जो हीरोइन है मुमताज उनको पसंद था, सीपी साहब को पसंद था। और ये इसका बैकग्राउंड जो आप जानना चाहते हैं वो ये, मैं जहाँ जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि कलकत्ते चला गया था, मैं शायद आपको नहीं बताया, कलकत्ता अलीगढ़ से जब मैंने वहाँ की शिक्षा संगीत प्रभाकर तक की करके
1: जी
0: कलकत्ता इसलिए किया कि मुझे बंगला म्यूजिक बहुत फैसिनेट करता था बचपन से ही, गुरुदेव की रचनाएं टैगोर की उनको जानने के लिए कलकत्ते गया, और ये एक उन्हीं की रचना का एक भावांश है जो आप सुनते हैं घुंघरू की तरह,
1: वाह,
0: तो ये सिर्फ एक मैंने उसमें से एक प्रेरणा ली, हमेशा मैंने कभी नकल नहीं करना चाहा, बल्कि प्रेरणा तो कोई ना कोई होती है,
1: कहीं
0: कोई ना
1: ना
0: कोई
1: कहीं से
0: सोच
1: होती
0: जरूर
1: है।
0: होता
1: जी
0: है और
1: जी
0: आइडियल होता है हर एक का कुछ ना कुछ,
1: बिल्कुल।
0: ये एक उनकी रचना थी, मोन देवा नेवा अनेक कोरेछी,
1: हाँ,
0: मोरेछी हजार मौरने, आमी नूपुरेर मोतो बेजेछी चौरने चौरने,
1: वाह वाह वाह,
0: तो किशोरदा ने गाया और बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये गीत गाया। किशोरदा को ढूंढने में बहुत टाइम गया, मुझे डेट नहीं देते थे, तो किसी ने कहा कि एक बार वो लड़का आया है कलकत्ते से, उसको तुम सुन लो और सुन
1: जी
0: लो, तुमको अच्छा लगे तो गाना। तो मेरी रिकॉर्डिंग फिक्स हो गई थी 18 फरवरी को, ये सेकेंड रिकॉर्डिंग थी मेरी, तो किशोरदा बॉम्बे लैब में सुबह ही सुबह 9 बजे आ गए, तब मैंने काम शुरू ही नहीं किया था, तब मैं भी पहुंचा ही था, तो कहने लगे रिकॉर्ड करने से पहले मुझे सुना दो तुम क्या गाना रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, तो मैंने

जब उनको मुखड़ा सुनाया तो अंतरा सुनाई नहीं, कहने लगे बस तुम आराम से अभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह अपने बैलेंस करो, मैं यहाँ बैठा हूँ, गाना मुझे याद करा दो और तुम्हारा गाना गा के ही जाऊँगा।

0: अपने संगीत से पत्थर नहीं पिघले न सही, बावरा मैं भी हूँ संगीत में बैजू की तरह।
1: वाह वाह,
0: पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
1: ये गीत तो रविंद्र जैन नाम के उस कलाकार का परिचय और उसका आध्यात्मिक अध्याय बन गया है। कौन चाहेगा आपसे विदा लेना, लेकिन समय है कि आपसे विदा ली जाए और कल फिर इसी कार्यक्रम में आपसे मिला जाए।
2: घुंघरू की तरह आज से आरंभ है इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आपने सुना सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत का पहला भाग।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं रूपलेखा इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। कुमार बारा बंकुई ने इसे लिखा है और सजाद हुसैन का संगीत।

छोड़ सब्र का दामन कोई ये कह न सके के चार दिन भी मोहब्बत में रंग सह न सके खुशी से हर सितम।

0: खाए जा, खीर से खीर खाए जा, जुल्मों से तुम उठाए जा, ऐ मेरे बेकरार दिल भी वफा के गाए जा।
1: साथियों, आज के संगीत सफर में हम रूबरू होंगे उस फनकार से जिनकी धुनें कम सही लेकिन हर धुन अपने आप में एक अनमोल कृति है। आज हम सुन रहे हैं संगीतकार सजाद हुसैन के संगीत से सजे कुछ खूबसूरत और यादगार नगमे। लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं रुस्तम सोहराब इस फिल्म का गीत सुरैया की आवाजों में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा है, सजाद हुसैन का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं संग दिल इस फिल्म का गीत तलत महमूद की आवाज। रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और संगीत से सजाया है सजाद हुसैन ने।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अब कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आज हम याद कर रहे हैं सजाद हुसैन जैसे संगीतकार को। ये कैसे संगीतकार थे जिन्होंने कभी लोकप्रियता से समझौता नहीं किया। उनकी रचनाओं में शास्त्रीयता, मौलिकता और मधुरता का अद्भुत संगम सुनाई देता है। आइए अब सुनते हैं दोस्त फिल्म का ये गीत नूरजहां की आवाज में। शम्स लखनवी ने इसे लिखा है सजाद हुसैन की धुन।

खुमार बारा बंकुई का लिखा ये गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है सजाद हुसैन ने। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम हलचल।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: आइए अब आपको सुनवाते हैं आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, रुखसाना फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, शकील बदायूनी की रचना, सजाद हुसैन का संगीत।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। साथियों, हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गीतकारों में शुमार आनंद बख्शी ने अपने सहज और दिल को छू लेने वाले शब्दों से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। आज आइए सुनते हैं उनके लिखे कुछ सदाबहार और यादगार गीत। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मस्ताना फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

0: हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। जब भी दिल की भावनाओं को आसान शब्दों में बयां करने की बात होती है तो आनंद बख्शी का नाम सबसे पहले याद आता है। उनके गीत हर दौर में गुनगुनाए गए हैं। आज ऐसे ही कुछ खूबसूरत नगमे हम सुन रहे हैं। अगला गीत आपको सुनवाएंगे, पहले सुनिए ये संदेश।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: हो तो

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: प्रेम कहानी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत के शब्दकार हैं आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

कर्म फिल्म का गीत अब सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और इसी के साथ आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
4: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
5: फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड।
2: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास

0: स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को ₹1000 से बढ़ाकर ₹1500 करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, NHPC के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य

0: है ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल हुरमुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में एफआईएच यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, एसआईटी के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई एसआईटी करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओ नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी फूल पर। फूल प्रकृति की सबसे सुंदर और मनमोहक रचनाओं में से एक है। रंग बिरंगे फूल धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं और अपनी सुगंधित स्पर्श से वातावरण को आनंदमय बना देते हैं। फूलों को देखकर मन में प्रसन्नता, शांति और सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए फूलों को प्रकृति का मुस्कुराता हुआ

उपहार भी कहा जाता है। फूलों का जीवन भले ही छोटा होता है, लेकिन उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। वे हमें सिखाते हैं कि कम समय में भी अपने गुणों और सुंदरता से संसार को खुशियाँ दी जा सकती है। फूल बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी खुशबू और सुंदरता प्रदान करते हैं।

हमारे जीवन में फूलों का विशेष स्थान है। पूजा पाठ, त्योहारों, विवाह समारोहों और शुभ अवसरों पर फूल का उपयोग किया जाता है। हर फूल अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। फूल केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फूलों से मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आकर्षित होती है, जो परागण की प्रक्रिया में सहायता करती है। इससे पेड़ पौधों का जीवन चक्र चलता रहता है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। फूलों से हमें जीवन में कई तरह की सीख मिलती है। जिस प्रकार फूल कांटों के बीच रहकर भी अपनी खुशबू फैलाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में अच्छाई और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। फूल हमें विनम्रता, मुस्कान और दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने की प्रेरणा देते हैं।

सूखे हुए फूल केवल मुरझाई हुई पंखुड़ियां नहीं होते, वे अपने भीतर बीते हुए पलों की अनगिनत कहानियां संजोए रखते हैं। किसी किताब के पन्नों में दबा हुआ फूल किसी पुराने उपहार की तरह हमें उन खूबसूरत यादों की दुनिया में ले जाता है, जहां भावनाएं हमेशा ताजा रहती है। जब कोई हमें प्रेम, स्नेह या सम्मान के रूप में फूल देता है, तो वह केवल फूल नहीं बल्कि अपने मन का एक कोमल भाव हमारे पास छोड़ जाता है। समय के साथ फूल की खुशबू भले ही कम हो जाए, उसका रंग फीका पड़ जाए, लेकिन उनसे जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं होती। कभी किसी पहली मुलाकात की निशानी, कभी किसी खास अवसर की स्मृति, तो कभी किसी अपने के स्नेह का प्रतीक बनकर सूखे हुए फूल जीवन के अनमोल पलों को संभाल कर रखते हैं और खत में भी भेज दिए जाते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप कार्यक्रम चित्रलोक।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मणिकर्णिका इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है शंकर महादेवन ने। प्रसून जोशी की रचना, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम का ये अगला गीत। भूत बंगला फिल्म से विशाल मिश्रा, नक्श अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजें, कुमार के बोल प्रीतम का संगीत।

लव यापा फिल्म का गीत अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल और जहरा खान की आवाजों में। इस गीत को लिखा था गुरप्रीत सैनी ने और तनिष्क बागची का संगीत था। आइए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म सत्य प्रेम की कथा से। अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजें, रोचक कोहली और अली सेठ ने इस गीत को लिखा है, गुरप्रीत सैनी और अली सेठी का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। इस फिल्म का गीत दिव्या कुमार, सुनिधि चौहान और इश की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल हैं, संदेश शांडिल्य का संगीत।

कबीर सिंह फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कबीर सिंह फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में, गीत संगीत मिथुन का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस अंतराल पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था धमाल चार। इस फिल्म से संजू राठौड़ की आवाज से रश्मि विराग और संजू राठौड़ ने इस गीत को लिखा, तनिष्क बागची और संजू राठौड़ का संगीत। और आइए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं भूल भुलैया तीन। इस फिल्म से आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजों में ये गीत है। आदित्य रिखारी ने इसे लिखा है और संगीत है लीजो जॉर्ज का।

0: 잔에도
1: मित्राज की आवाज में सुनिए इन्हीं का लिखा और संगीतबद्ध किया ये गीत, फिल्म का नाम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पति पत्नी और वो, इस फिल्म वो दो। पति पत्नी और वो दो इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे बादशाह कृष मोंदल, किशोर मोंदल और इप्सिता की आवाजों में। इस गीत को लिखा है बादशाह और कुणाल वर्मा ने, बादशाह हितेन और देव सदाना का संगीत।

यारियां दो इस फिल्म का गीत अब सुनिए। यो यो हनी सिंह, नेहा कक्कर की आवाजों में इस गीत को लिखा खलीफ और यो यो सिंह ने, संगीत खलीफ और यो यो सिंह का।

ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर है चित्रलोक कार्यक्रम लेकर। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये पारंपरिक गीत जुग जुग जियो। इस फिल्म से कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजें हैं और इस गीत को संगीत से सजाया है कविता सेठ और कनिष्क सेठ ने।

और लीजिए अब सुनिए तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं प्रीतम का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: थैंक गॉड फिल्म का गीत सुनिए, योहानी, जुबिन नौटियाल और सूर्य रघुनाथन की आवाजों में, रश्मि विराग की रचना, तनिष्क बागची और चमत्कार संगीत का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शोधन लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही।
1: यहाँ मैं

0: पागल।
1: दोस्तों आनंद बख्शी की गीतकारी का संसार इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के एक कार्यक्रम में उनकी गीतों की दुनिया को समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपने तरीके से याद करेंगे इस अनमोल गीतकार को जो 21 जुलाई 1930 को जन्मा था रावलपिंडी में। वो रावलपिंडी जो बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई, तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी प्यारी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरस बाद आनंद बख्शी ने लिखी एक नज्म, और ये नज्म हमें फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
2: जब पार्टीशन हुआ था, बख्शी साहब 17 साल के थे, तो उन्होंने 17 साल जिंदगी जीती रावलपिंडी में, तो दूसरा देश बन गया, लेकिन वो थी बख्शी साहब की जन्मभूमि, उन्होंने वहां जन्म लिया था, वहीं गाने सुने, वहां उधर का कल्चर उन्होंने पिया और खाया, जिसकी वजह से वो गीतकार भी बने आगे जाके। पंजाबी कल्चर, फोक कल्चर, सूफी गाने, जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नज़म लिखी, उस नज़म का नाम है रावलपिंडी, और तकसीम के ऊपर है उनकी फीलिंग्स, और उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को इस तरीके से लिखा जैसे कि एक आदमी एक बिलेवड के लिए लिखता है या कोई जो छूट जाता है जिंदगी में पीछे, उन्होंने उस हिसाब से ये पोएम लिखी है। तो मैं ये नरेट करना चाहता हूँ दो अपने बख्शी साहब फैंस के लिए।
1: जरूर।
2: सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहां रह गई, कुछ ना मैं कर सका, कुछ ना मैं कर सका, देखता ही रह गया, कुछ ना वो कर सकी, देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बट सकी चीज वो रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी जहलम में वो बह गई। इन जमीनों ने कितना लहू पी लिया, ये खबर आसमानों तलक है गई। रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पे खड़ी बेबसी रह गई। दे गई घर गली शहर मेरा किससे, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, क्या पता किससे बख्शी वो क्या कह गई।
1: क्या बात है।
2: ये तकसीम के ऊपर बख्शी आपका जो दर्द था कि अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ के आना पड़ा
1: जी जी
2: माँ की तरह, इस पोएम से ही जाहिर होता है।
1: जी, आनंद बख्शी एक जमाने में फौज में थे, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता था, वो तो फिल्मी दुनिया में बतौर गायक शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया और किस्मत ने उन्हें गीतकार बना दिया। सन 1962 में आनंद बख्शी को पहली कामयाबी मिली, फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सन 1965 आनंद बख्शी की कामयाबी का एक बेमिसाल साल, क्योंकि तब आई जब जब फूल खिले। इसी बरस आई हिमालय की गोद में।

ये वो दौर था जब आनंद बख्शी बाकायदा एक कामयाब गीतकार बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रही थी। सन 1967 में फिल्म मिलन के गाने उन्होंने लिखे।

0: आनंद बख्शी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। वो रेल से सफर कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और गांव का एक व्यक्ति मिलन फिल्म का उनका एक गाना गा रहा था। आनंद बख्शी का दिल बहुत खुश हुआ और उन्हें ये एहसास हो गया कि अब वो पक्के गीतकार बन चुके हैं, क्योंकि अब वो जन जन तक पहुंच चुके हैं। आनंद बख्शी के कुछ गानों की कहानी फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
1: शुक्रिया यूनुस जी, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं विविध भारती के हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं हर चैनल सुनता हूँ। मैं हिंदुस्तान में जितने चैनल हैं, बाहर के भी जो चैनल हैं, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चैनल नंबर वन है भारती जो है, दैट इज एक्चुअली द रीडर्स डाइजेस्ट ऑफ रेडियो।
0: राकेश जी, बख्शी साहब की याद का दिन है और पूरा देश जो है वो उन्हें याद कर रहा है, संगीत के चाहने वाले, गीतों के चाहने वाले। हम चाहते हैं कि कुछ गानों के बनने की कहानियां आप सुनाएं।
1: बख्शी साहब का गाना था एक फिल्म में, जहाँ पर विलेन और वैम्प ने हीरो को बांध कर रखा हुआ है और उसका फैसला नहीं हो रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो बख्शी साहब को एक लाइन याद आई, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ी थी या कहीं कहानी में पढ़ी थी, कि जब इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने हरमा हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो तब जब किंग पोरस को कैद कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया, तो तब ये सवाल उठा था कि क्या किया जाए, उनका उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनको ये बात याद आई, और जो राजकोट साहब की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश में जो सिचुएशन बनी, तो उन्होंने फिर वो वहां यूज किया, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
0: क्या बात है, मतलब देखिए इतिहास से रेफरेंस लेके और उन्होंने उसे एक मॉडर्न गाने में बदल दिया।
1: यस यस,
0: एक तो अच्छा तो हम चलते हैं कि भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
1: हाँ।

0: वो बख्श साहब, और जब सेटिंग चल रही थी गाने की तो काफी वक्त निकल गया। मेरे ख्याल में 1-2 दिन कुछ बात नहीं बनी, सेटिंग हो रही थी। लक्ष्मी जी प्यारलाल और बख्श साहब और डायरेक्टर साहब जी ओम प्रकाश जी, और कुछ बात नहीं बन रही थी, कुछ मुखड़ा नहीं बन रहा था, कुछ अंतरे नहीं बन रहे थे, कुछ बन ही नहीं रहा था। तो जब तक तो मुखड़ा नहीं बनेगा फिर अंतरे नहीं निकल सकते, क्योंकि अंतरे मुखड़े से ही निकलते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, फड़प हो गए वो लोग, और उन्होंने बख्शी साहब ने उठा, या बख्शी साहब उठे या लक्ष्मी जी उठे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं। तो बख्शी साहब ने पूछा फिर कब मिलोगे? तो जब वो जवाब देने लगे तो बख्शी साहब ने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि रुको रुको, बैठो बैठो, अभी मुझे एक आइडिया आया है। और वहीं उन्होंने फिर वहीं थर्ड लाइन लिखी, जब तुम कहोगे, और उससे गाना गाने की शुरुआत होती है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ, आधी रात को, कहाँ, वही जहाँ कोई आता जाता नहीं।
1: क्या बात
0: तो ये
1: है।
0: वहां से वो बात निकली। एक
1: अच्छा
0: गाना है अपना, एक बार सुभाष घई साहब आए थे घर पे,
1: जी
0: उन्होंने बख्श साहब से कहा कि मैंने नई नई फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं आपको आज आके स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते वो रात हो गई और खाने का वक्त हो गया, और खाना वाना खाया, और जब खाना खा के जब हाथ धोने निकल चले गए बख्श साहब वॉश बेसिन पे, तो हाथ धोते धोते बख्श साहब ने सुभाष जी घई साहब को कहा कि एक यार मुझे एक लाइन याद आ रही है, तेरी फिल्म का नाम सौदागर है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, सौदागर सौदागर सौदागर, दिल लेकर दिल देकर। वॉश बेसिन में हाथ धोते धोते वो लाइन उनके दिमाग में आ गई। एक और मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि एक बार वो बख्श साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे बम्बई, उनके शायद फादर आ रहे थे बाहर गाँव से, तो वो बम्बई सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे उनके अपने पिताजी को लेने के लिए। उनके साथ एक दोस्त था उनकी गाड़ी में, उनके दोस्त अपने दोस्त की गाड़ी में गए थे, क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी खरीदने के लिए। तो दोस्त की गाड़ी में जा रहे थे और बख्श साहब बैठे थे बाजू में और दोस्त चला रहे थे। तो वहीं पर रास्ते में कहीं बख्श साहब ने गाड़ी रोक दी, बोला रुक रुक रुक, लिखना है मुझे। और उन्हें कागज पे लिखा कि गाना है अपना मेरे हम सफर का, सराहा पर इस मोड़ पर, कहीं तू मेरे हम
1: किसी राह
0: सफर।
1: पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना छोड़कर।
0: हाँ, तो वो एक आगे ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे लिखा था मेरे हम सफर। तो वहां से उन्होंने ये लाइन पकड़ी कि गाड़ी निकल जाएगी, सड़क निकल जाएगी, लोग निकल जाएंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ना, मेरे हम सफर।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: दोस्त है उनका हरी मेहरा, उनके दोस्त हैं, जिनके रिकॉर्ड की शॉप थी, अभी भी है स्वीट, तो रोज डेली जाते थे पान खाने खार स्टेशन के बाहर। तो एक बार पान खा के वहां से निकले, और वहां पर एक स्कूल है खार में, सेक्रेड हार्ट स्कूल, स्कूल से आगे आ रहे थे एसवी रोड की तरफ, और सामने से कोई बहुत खूबसूरत लड़की चलती हुई आ रही थी। तो वहीं पर बख्शा ने वापस गाड़ी रोक दी, बोला रुक रुक रुक, मुझे कुछ लिखना है। उन्होंने कुछ अपना, उनके पास एक, जब उनके पास किताब नहीं रहती थी ना, तो वो अपना 5x5 सीजर पैकेट पे पीछे लिख देते थे लाइनें, मुखड़े अंतरे जो भी था, क्योंकि पेपर तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ लोग हमेशा पेपर लेके नहीं घूमते थे, पेन तो हमेशा रहता था जेब में, राइटर हैं तो हमेशा पेन लेके घूमते थे। तो 3-4-6 महीने बाद जब एक बार ट्रायल हुआ फिल्म का, तो बख्शी साहब ले गए अपने दोस्त को ट्रायल के लिए, चलते को नई फिल्म दिखाता हूँ लगने वाली है 2 हफ्ते में, वो चले गए फिल्म देखने। और जब वो गाना आया तो बख्शी साहब ने बोला, याद है तेरे को, हमने वो खूबसूरत लड़की को देखा था, तूने क्या कहा था, तूने कहा था क्या रूप पाया इस लड़की ने, तो मुझे वहीं पे लाइन स्ट्राइक की थी और मैंने ये गाना लिखा था तब, कि रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जाए।
1: ओहो, तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं को उन्होंने गीत का रूप दे दिया। कोई एक घटना बताइए, एक फादर के तौर पर कैसे थे बख्शी साहब, पिता पुत्र की कोई घटना याद कीजिए।
0: हजारों घटनाएं हैं, 2 घटनाएं जो हैं, एक तो जब मैं छोटा था तो हमेशा रात को लेट आते थे काम से, क्योंकि 70s में बहुत पॉपुलर हो गए थे बख्श साहब, 68-64 के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब जब फूलगले रिलीज हो गई थी, मिलन आ गई थी, आराधना आ गई थी, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी इन डिमांड। तो लिखते भी थे 10-15 घंटे डेली, 10 घंटे लिखना डेली, फिर रात को फिर दोस्तों की पार्टी, फिल्मी पार्टी में जाना, इवेंट्स में अपना अवार्ड फंक्शन में जाना, काफी बार लेट आते थे रात को, हम सो जाते थे, बख्शी डैडी आए घर पे, लेकिन हम तो सोए हुए रहते थे, 1-2 बजे आते थे, 3, कभी 3 बजे आते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था, उनकी आदत थी, वो हमेशा आके सर को या बदन को हमारे थपथपाते थे, यू नो, लाइक जैसे माँ कैसे लोरी गाती है बच्चे के लिए, वो हमेशा वो बच्चे को थपथपाती हाथ से, यू नो, हाथ के हाथ ऐसे लगा के टप टप करके, तो वो हमेशा रात को आके ही शुड डू दैट फॉर टू मी एंड टू माई ब्रदर टू माई सिस्टर। लेकिन उनके हाथ लगाने से मैं जाग जाता था, जब मैं जाग जाता था वो शर्मा जाते थे और वो चले जाते थे, फिर वो फिल्म नहीं करते थे, वो छोटा कोई लोरी सुनाना या कुछ। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा फिर जब आते थे, अगर मैं उठ जाता था तो मैं आंख बंद ही रखता था ताकि उनको पता चल जाएगा तो चले जाएंगे, मैं आंख बंद करके उसका मजा लेता था, उनकी
1: क्या
0: उनकी
1: बात है,
0: लोरियों का। दूसरी मुझे एक बात याद है कि जब शायद कॉलेज में था, तो मैंने नाश्ता किया और अंडा छोड़ दिया, अंडा नहीं खाया मैंने, तो मेरे डैडी ने कहा कि तेको पता है इस अंडे का भाव क्या है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, होगा।

0: दस पैसे 25 पैसे जो भी होगा 1 रुपया होगा आई डोंट नो। तो इसे की जब तुम छोटे थे ना, तुम दो भाई दो बहने छोटे थे, तुम्हारी माँ एक अंडा 4 टुकड़े में बांट के तुम चारों को देती थी और खुद नहीं खाती थी ताकि तुमको न्यूट्रिशन मिले। तुम्हारी माँ ने ये प्राइस पे किया एक अंडे का, बिकॉज माई फादर वॉज स्ट्रगलिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 ईयर्स ऑफ करियर इन द बिगनिंग।
1: बिल्कुल।
0: तो तब उनके पास शायद अंडे के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक ही अंडा हम चारों को बांटना पड़ता था फैमिली में। तो मेरे फादर ने कहा था कि ये है अंडे की कीमत, तो ये तुम्हारी माँ ने जो अंडे की कीमत दी है ना, वो अंडे की कीमत कभी नहीं भूलना, फूड कभी वेस्ट नहीं करना, खाना कभी वेस्ट नहीं करना,
1: क्या बात है,
0: भले वो एक अंडा ही हो।
1: क्या बात है।
0: इसी बात मुझे बड़ी अच्छी याद है कि एक बार मेरा कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो गया
1: जी,
0: और वो मेरे डैडी की पसंद की नहीं थी। तो मेरे डैडी ने कहा कि मिलना जुलना सब बंद करो, ये सब लव वर्व नहीं चलता, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो। तो मैंने झट से एकदम रूडली उनको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। मैंने कहा अरे आप तो आनंद बख्शी हो, आपने तो अभी लव स्टोरी में गाना लिखा है, आपने प्रताप में गाना लिखा, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आपने लव स्टोरी में कुमार गौरव के कितने अच्छे गाने लिखे हैं, आपने बॉबी में इतना अच्छा गाना लिखा है, आपने रॉकी फिल्म में इतना लव स्टोरी लिखी, अच्छी गाने लिखे, आपने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे लव स्टोरी गाने लिखे, अब अभी मेरा वक्त आया तो आप बोल रहे कि यू कैन नॉट मीट हर, अभी तुम्हारा रोमांस का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है
1: जी।
0: तो मुझे डैडी ने कहा कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा काम है। काम में और शौक में फर्क होता है। वो मैं जो गाने लिखता हूँ लव स्टोरी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर की डिमांड होती है, एक सिचुएशन की डिमांड होती है, वो मैं अपनी फैमिली के लिए लिखता। अब तुम्हारा वक्त है स्टडीज करने का, लव स्टोरी में पढ़ने का अभी तुम्हारा वक्त नहीं है।
1: क्या बात है। अच्छा अब मुझे बताइए कि बख्शी साहब की याद में आप कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपनी तरफ से विविध भारती पर?
0: गाने तो बहुत है, हजार है, जैसे कि क्या होता है हर गाना आपको एक जब आप किस मूड में हो उस मूड के हिसाब से आपको एक कोई गाना अच्छा लगता है।
1: मैं समझ
0: सकता हूं। मुझे याद है एक बार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरा अफेयर डामल डोल से चला गया था, यू नो विद अ गर्ल, कॉलेज में था शायद, वो मेरा अफेयर टूट गया था, मेरा बड़ा दिल का बड़ा मुझे दर्द हुआ था। तो मैं कम से कम 2 हफ्ते एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया था। तो मेरे डैडी ने झट से एक बार रूम में आके पूछा क्या हो गया तेरे को, 2 हफ्ते से एक ही गाना सुन रहा है मेरा, कुछ लफड़ा उड़ा नहीं हो गया लड़की के साथ कुछ? मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है,
1: जीत
0: चाहेंगे हम अगर तू संग है,
1: क्योंकि
0: काफी वक्त हम जिंदगी में शायद अगर हमारे साथ कोई नहीं होना हम हार मान जाते हैं, तो अगर कोई हो साथ में, माँ हो, बाप हो, लवर हो, बिलवड हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो हर एक इंसान को कुछ ताकत चाहिए। तो इसलिए वो गाना मुझे आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: क्या बात है?
0: ऐसा ही एक गाना है बख्शी साहब का जो मेरे ख्याल में किसी की भी जिंदगी में काम आ सकता है, और ये गाना है फिल्म अंगार का, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: काफी बार क्या होता है, हम जब मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, लेकिन काफी बार ये सब भाग जाते हैं लोग, कोई साथ नहीं देता। तो बख्शी साहब ने ये कहा था मुझे कि कभी भी तुम जिंदगी में तकलीफ में होगे तो खुद को याद करो हमेशा, दुनिया अपने आप साथ चलेगी तुम्हारे।
1: क्या बात है।
0: लेकिन पहले खुद को याद करो
1: जी,
0: किसी और को याद करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले भी पहले खुद को याद करो। तो ये लाइन आई थिंक ये गाना किसी की भी जिंदगी के काम आ सकता है, मुझे लगता है यही एक अच्छा गाना हो सकता है जो किसी की जिंदगी के काम आ जाए।
1: जी राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बख्शी साहब की याद का दिन और आपने ये लम्हे हमारे लिए यादगार बनाए, बहुत शुक्रिया।

0: आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने हर तरह के हर सिचुएशन के गीत लिखे हैं, और कमाल की बात यह है कि बातचीत को गीतों में बदल देने का हुनर है आनंद बख्शी के पास।
1: सुनो कहो कहा सुना

तो आनंद मिलिंद के साथ भी लिखा, एसडी बर्मन के लिए गाने लिखे तो आरडी बर्मन के लिए भी लिखे, रोशन के लिए लिखे तो उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी लिखे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लिखे तो विजू शाह के लिए भी लिखे। यानी संगीतकारों की ही कई पीढ़ियों के साथ बख्शी साहब ने काम किया। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बातें करें, सन 1979 फिल्म अपनापन का ये गाना।

आनंद बख्शी ने कुछ फिल्मों में गाने भी गाए हैं। आइए एक झलक सुने उनके गाए इस गाने की। फिल्म का नाम है बालिका वधू।

बख्शी साहब 30 मार्च 2002 को इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने हजारों गाने, और उन गानों का गाने सुनने वाली जनता से अभूतपूर्व लगाव।

0: था गीतकार आनंद बख्शी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
0: तो ये सर्जिकल प्रोसीजर से जो होता है तो कितने समय तक वो चलता है, क्या फिर वापस वही परेशानी तो नहीं होती?
1: ज्यादा करके इसके रिजल्ट्स 10 साल 5 साल अगले लंबे समय तक भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन
0: जी।
1: साथ में ये चीजें हमें ख्याल में करनी कि वेट कम करना
0: जी
1: रेगुलर एक्सरसाइजेस करना
0: जी जी
1: ऑपरेशन ट्रीटमेंट का एक भाग है, साथ में ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर मसल सी वीक होने लगे वापस तो ऑपरेशन के बावजूद भी वापस तकलीफ हो सकती है।
0: जी
1: सो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ऑपरेशन, ये दोनों के साथ में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं।
0: जी, तो पहले से क्या सजगता बरतनी चाहिए, किस तरह से सावधानी रखें कि ये स्थिति ना आए लीकेज वाली?
1: सो पहले तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है। सेकेंडली इसे हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो रेगुलर करना जरूरी है ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहने से अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तीसरा है प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना जरूरी है। अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है।
0: जी, तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
0: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जिसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट वहां ज्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है।
0: जी, और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए वो क्या है तरीका।
1: सो यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है, लेकिन एक मैं बताता हूँ, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको एक डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहां भी बाहर जाते पहले बाथरूम ढूंढते हैं।
0: जी,
1: ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है।
0: जी,
1: लेकिन
0: जी,
1: वो एक अश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में, काफी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए। सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है। लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है।
0: जी जी,
1: सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, ये डर बना रहता है, ये जरूरी नहीं है। ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, باہر جانا ضرور چالو رکھنا چاہیے
0: جی,
1: کیونکہ نہیں تو ایک پرابلم سے دوسری پرابلم سائیکالوجیکل پرابلم
0: جی,
1: شروع ہونے کا ڈر رہتا ہے
0: جی,
1: تو یہ اس کے بارے میں یہ بہت مہتو کا سمجھنا ضروری ہے کہ ٹاک ٹو پیپل, ٹاک ٹو ڈاکٹرز, اور صحیح سمے میں ٹریٹمنٹ شروع کر دیجیے.
0: جی بزرگوں کو ہم نے سنا ہے, کئی بزرگ ایسے ہیں جو یورین کی سمسیا کے کارن کہیں باہر نہیں جانا چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے ہمیں وہاں پھر باتھ روم کی سمسیا ہوگی. تو آپ کی باتوں سے کافی انسپائر ہوں گے کہ آپ اس کا ایک طریقہ ہے, اس کی ویوستھا ہے, وہ کر کے آ جائیے. تو
1: ایبسولوٹلی کچھ لوگ جیسے رہتے ہیں جن کو پیشاب کی تھیلی کام نہیں کرتی ہے,
0: جی ہاں,
1: ان لوگوں کو کبھی کبھی نلی اور بیگ لگانا ضروری پڑتا
0: جی,
1: ہے
0: جی جی,
1: اور جب تک وہ پرابلم کی ٹریٹمنٹ نہ ہو وہ نلی لگانی پڑتی ہے. آج کل اس کے لیے بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں جسے ہم انٹرمیٹنٹ کیتھیٹرائزیشن بولتے ہیں.
0: اچھا,
1: تاکہ پیشنٹ خود چھوٹی نلی سے دن میں 3 یا 4 بار یورینری بلیڈر خالی کر سکتا ہے
0: جی,
1: اور ان کو کنٹینیوس بیگ لگانے کی آوشیکتا نہیں رہتی ہے
0: جی جی,
1: اور اپنی ڈیلی لائف اور کام پہ وہ جا سکتے ہیں. سو کبھی کبھی لوگوں کو ایک مائنڈ بلاک جیسا رہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا, لیکن کافی لوگ کر رہے ہیں. سو ان شارٹ یہ سب پرابلم کی سمسیا رہی, ایکسپرٹ سے بات کیجئے, اپنا مائنڈ اوپن رکھنا بہت ضروری ہے. مان لینا کہ نہیں اب اس کی کوئی سولوشن ہی نہیں ہے, مجھے سفر ہی ہونا ہے, یہ غلط بات ہے.
0: بالکل,
1: کیونکہ میڈیکل ایڈوائز اور آپ اگر ٹریٹمنٹ کے لیے تیار رہے تو کافی آپشنز ہیں جس سے کوالٹی آف لائف ضرور امپروو ہو سکتی ہے.
0: جی بالکل, اور ڈاکٹر صاحب ابھی بہت ساری باتیں چل رہی تھیں, ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے

0: है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है। तो ये क्या वजह हो सकती है और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है?
1: सो ये दो चीज होती है, अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है,
0: जी
1: जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं और उसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है, जाके बाथरूम में काफी समय तक बैठते हैं लेकिन ज्यादा यूरिन होती नहीं है। सो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है,
0: जी
1: जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है, अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना वो हम कोशिश करते हैं।
0: जी
1: और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है
0: जी
1: कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बाईपास करना सीखना पड़ता है, कि थोड़े सेंसेशंस रहे हम उसको बाईपास कर देंगे, एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफी समय तक वापस
0: नहीं
1: चला जाता है और
0: आता
1: बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: जी, बिल्कुल।
1: लेकिन ये सब चीजें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है,
0: जी
1: और फिर ये काफी चीजों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बायपास करके हम अपने काम में लग जाएं,
0: जी
1: क्योंकि नहीं तो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं।
0: जी और सारा फोकस सारा ध्यान उसी पर रहता है कि
1: एब्सोल्युटली।
0: कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन के
1: और
0: लिए
1: फिर वो
0: चले
1: डर सा
0: जाते
1: रहता है कि अगर
0: हैं
1: कपड़े में कुछ बूंदे
0: जी
1: हो
0: लग गई
1: गई
0: तो
1: और कुछ स्मेल आने लगी तो एक एम्बरेसमेंट जैसा होने लगता है, इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस। सो ये चीजें थोड़ी आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है? स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई
1: दैट्स राइट।
0: बार।
1: सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है,
0: जी
1: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है। सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है।
0: जी
1: दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है। तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है।
0: जी
1: दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं देन वो स्मेल कंटिन्यूअसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। सो वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को, कौन सा गाना?
1: जरूर, आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर
0: जी जी
1: और उनका एक अच्छा गाना है मोहे रंग दो लाल,
0: क्या बात है
1: बाजीराव मस्तानी से।
0: जी, बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं?
1: सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन रही है,
0: जी
1: और कुछ कुछ इलाके में जहां ज्यादा गर्मी है वहां स्टोन डिजीज काफी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है
0: जी जी
1: और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तब तक पता नहीं चलता है। और कुछ स्टोन्स छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है, सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना,
0: जी
1: क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं।
0: जी जी
1: सो सबसे बड़ी दवाइयां पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड, उनकी मेटाबॉलिज्म
0: जी
1: एबनॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है।
0: जी
1: कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, उसमें कुछ निकलेगा, उनको डॉक्टर के पास भागना
0: अरे
1: पड़ेगा
0: इसलिए मत
1: और
0: चेकअप
1: उसे चेकअप मत
0: कराओ
1: करवाओ।
0: जी जी
1: लेकिन चेकअप करना जरूरी है
0: हाँ
1: ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है।
0: जी
1: कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, उससे निकल सकता है। लेकिन महत्व क्या है, हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
0: जी
1: सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी
1: आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफी इजी हो गई है
0: जी
1: और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है।
0: जी
1: सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं।
0: जी
1: लेकिन एक बात हमें ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है।
0: जी
1: दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं।
0: ओ
1: क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन को दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज, क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीजों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं। सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
0: जी
1: दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सकें कि आप ये लीजिए आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा,
0: जी जी
1: ये गलत बात है। इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि
0: जी
1: हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें, आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की कुछ पान खाए, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है। अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा हो के किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा।
0: बिल्कुल।
1: सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीजें लोग मानते हैं लेकिन वो सही नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसा नहीं मानता है, लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समय आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
0: जी।
1: सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना जरूरी है।
0: ओके।
1: ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डायट्री रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, लेकिन सब पेशेंट को डायट्री रिस्ट्रिक्शन करके जैसे बीज जैसी चीजें सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना वो भी सही नहीं है। सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफी मिथ्स है, वो जरूरी नहीं है।
0: जी जी। तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। तो
1: मेरी राय में काफी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीजें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है।
0: बिल्कुल।
1: एट द सेम टाइम एवरीपैथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक, बट ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर न हो। एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना जरूरी है।
0: जी।
1: बाकी ये काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है, साइंटिफिकली सब चीजें प्रूव नहीं हुई है।
0: जी।
1: ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं वो एक बड़ा प्रश्न है।
0: बिल्कुल।
1: सो इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट।
0: जी। इस तरह की बीमारियां जब होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा होता है। किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए?
1: सो बेसिकली पेन, अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है। इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है। ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो जरूर ब्लड आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके उनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कहां यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है। सो बेसिकली जहां तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकेंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है। जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट, जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है, न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है।
0: जी, तो उसे पता चल जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुने।
1: जरूर, वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये एक रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं। क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर है?
1: यहां मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए,
0: जी,
1: क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि
0: बिल्कुल।
1: बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इम्पॉर्टेंट।
0: जी,
1: सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स। सो ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो
0: जी
1: समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है।
0: जी
1: सो ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है। आप मेडिकल राय लीजिए
0: जी
1: और जरूर पड़ी तो सेकंड ओपिनियन लीजिए।
0: जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स ने बोली है, और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते
1: जरूर।
0: हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में, कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए?
1: मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है, वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है,
0: जी हाँ,
1: और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफी ऑप्शंस अवेलेबल है, और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट। सो रिकवरी काफी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है।
0: जी
1: महत्व का है दैट डिसीशन मेकिंग कि
0: जी
1: जरूरी है या जरूरी नहीं है,
0: जी
1: और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीशन और डिस्कशन महत्व का होता है।
0: जी
1: अब
0: बिल्कुल
1: हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है,
0: जी
1: कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है। सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है, और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है।
0: जी
1: इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फायदे हैं कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है।
0: जी तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है?
1: सो मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है, आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है। इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतने हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आईटीन, ये अलग अलग नाम है, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज्यादा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है। सो उस पर्टिकुलर पेशेंट की जरूरत क्या है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है।
0: जी बिल्कुल। और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है कम हो जाए।
1: काफी चीजें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है, जैसे काफी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप। कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है। प्लस अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने लगी है, पहले दवाइयां नहीं थी, अभी दवाइयां से ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं। सो ये काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
0: जी बिल्कुल।
1: और आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से
0: जी
1: ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है।
0: जी जी।
1: और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना
0: क्या
1: है।
0: बात है।
1: सो ये बहुत महत्व की बात है। सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है। लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं।
0: जी सही बात है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है या लाइलाज?
1: बहुत महत्व की बात आपने कही है।
0: जी
1: पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते
0: जी,
1: हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल। कैंसर शब्द बड़ा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान, कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है।
0: जी जी।
1: क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहां पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है।
0: अच्छा।
1: तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफी दिक्कत वाली बन जाती है। लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
0: जी।
1: जब खाली लोकली प्रोस्टेट में डिजीज रहता है तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, जहां पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोनल इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं, और जिनको काफी स्प्रेड हुआ रहता है उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट आई कैन टेल यू, ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है, और रेगुलर चेकअप, पीएसए चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं।
0: डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाए?
1: सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन साबदन
0: चंचल चितवन।
1: चंचल चितवन
0: बेहतरीन गाना,
1: अच्छा
0: है।
1: गाना है
0: जी, मुकेश की आवाज में भी
1: है
0: और
1: लता जी की आवाज में भी है।
0: जी,
1: मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज में सुनेंगे।
0: मुकेश की आवाज वाला गाना सुनते हैं
1: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण है, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है, तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर,
0: जी
1: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन, या कभी कभी स्टोन्स वगैरह की किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होके अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है।
0: जी
1: जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन अवर बॉडी,
0: जी जी
1: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस या पोटेशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है,
0: जी
1: जो हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस।
0: जी
1: लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है, और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है।
0: जी जी
1: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
0: जी
1: नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है।
0: जी
1: लेकिन यहां कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज हैं जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है,
0: जी
1: क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है।
0: जी जी
1: 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए।
0: बिल्कुल
1: पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं।
0: जी जी
1: लेकिन सबसे जरूरी बात है, जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़े चीज क्या है।
0: जी
1: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई, एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है,
0: जी जी
1: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेड कहते हैं।
0: जी जी
1: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकेंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है
0: जी जी।
1: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है।
0: जी।
1: ये बात मानना गलत है कि कहां भी एक्सीडेंट हो गया कहां से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। सो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: सो ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकेंड लाइफ मिलती है।
0: जी।
1: सो ये जानना बहुत जरूरी है।
0: जी।
1: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है।
0: जी जी।
1: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन ना हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है। सो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। सो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है, और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: काफी लोग खाली पड़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है।
0: जी जी, जी।
1: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने, और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने एक कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूंकि यूरिन के विषय पर बात करें तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: सो सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत जरूरी है। किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है।
0: जी।
1: सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है।
0: जी जी।
1: और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको। जो लोगों को पता नहीं है लेकिन टोबैको से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज्यादा स्प्रेड हो गया तो काफी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सो अगेन यहां दो तीन चीजें हैं। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक टोबैको इज अनदर थिंग जिसके कारण शरीर में काफी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है। और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं।
0: जी, मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है अगर समय पर।
1: एब्सोल्युटली
0: जी, तो अब डॉक्टर साहब चलते चलते एक गाना आपकी पसंद का सुनवाएं, कौन सा गाना?
1: जरूर, आई थिंक ये आइकॉनिक गाना है, लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना हो।
0: जी, अमूमन अंताक्षरी हो या कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम हो या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, इस गाने के बगैर अधूरा सा रहता है। तो आज का ये प्रोग्राम भी जैसे अधूरा सा था इस गाने के बगैर। फिल्म है वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज, पर्दे पर साधना, सुनते हैं ये गाना।

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे?
1: सो कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट
0: जी
1: ग्लैंड। हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है। लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर बड़ा शब्द है, लेकिन मॉडर्न टाइम में काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज्यादा देते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफी टेंशन कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है। अगेन, राइट टाइम में डिटेक्शन होना जरूरी है।
0: जी
1: और सबसे बड़ी बात, गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना जरूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती है, वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं, वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए।
0: बिल्कुल
1: सो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए, आप एक्सपर्ट को पूछिए।
0: जी
1: अगर आपको कुछ सलाह दी गई है, वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको डाउट है, जरूर सेकेंड ओपिनियन लीजिए। लेकिन ये बहुत महत्व की चीज है कि जो डिजीजेस अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई, तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है।
0: जी
1: आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल नो।
0: जी
1: और आज के जमाने में जहां इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 एंड 90 लोगों एक्टिव है, हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये भी मैं जानता हूं कि हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रही है। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज कमिंग एट अ कॉस्ट। सो यस, पहले 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अभी 2 दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है,
0: जी जी
1: लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर।
0: जी
1: सो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन, एंड दैट इज हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल चेंजेस, एडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग एंड टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप। आई थिंक दिस विल गिव अ गुड रोड मैप फॉर गुड हेल्थ, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट क्रुशियल थिंग इन मॉडर्न टाइम।
0: जी
1: थैंक यू वेरी मच।
0: डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे

0: श्रोताओं को दी। विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंकज उधास की आवाज से।

0: छाया गांगुली के स्वर में आप सुन रहे थे महादेवी वर्मा का लिखा ये गीत। संगीत था जयदेव का, ये फिल्म का नाम था त्रिकोण का चौथा कोण। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान

0: सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनिए
2: ये आशा भोसले की आवाज है। संगीतकार जयदेव।

0: खीरे।
1: मन्नाडे के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, रचना थी श्याम सागर की।
2: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
3: वो तेरे प्यार का।
2: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
4: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
2: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
5: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
2: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
6: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
2: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
5: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
4: बेचारा
6: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
5: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
6: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
5: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
7: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
6: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
5: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
6: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
8: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब सुने चंदन दास की गायी गजल। कलाम है निदा फाजली का।

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
1: आकाशवाणी लखनऊ, और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
0: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
0: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
0: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
0: जॉन बील मेला
2: जी,
0: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है।
2: हमारे
0: बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
0: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
0: पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
0: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
0: हाँ विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
2: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
0: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
2: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
2: जी।
0: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
2: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी
0: जी। श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
0: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
2: जी।
0: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
2: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
0: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे हुए अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे
2: जी। फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
0: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
2: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जोनविल मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
2: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
0: सांकेन।
3: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? हाँ, ये जानते हैं।
4: यमन भैया कहाँ हो भैया?
5: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ,
4: चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। भैया, खुश होने की बात तो है ही, पता है पापा का ईमेल आया है।
5: अच्छा, क्या लिखा है?
4: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है, कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ।
6: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
3: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
4: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
5: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
6: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
3: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
6: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने

0: आपका स्वागत किया।
1: अरे बेटा वल्लरी यमन, आजा आजा आजा आजा।
2: नमस्ते पापा।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटा आप लोग?
2: ठीक है।
1: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
2: बड़ा मजा आया।
1: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आजा आजा आजा।
3: चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
0: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
3: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया।
1: अरे भाई चावतान जी घर पर हैं क्या?
4: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
2: नमस्ते
4: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना?
1: बिल्कुल ठीक पहचाना।
4: आइए, स्वागत है आप सबका।
1: धन्यवाद।
4: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
1: अरे भाई हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
2: अंकल हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
4: थैंक यू।
2: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
4: ओहो वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
1: जी,
4: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा।
4: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
1: अरे
4: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
1: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
2: अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
1: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: अरे बताता हूँ वर्मा जी बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
2: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
4: बेटा ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
1: अरे वाह वाह वाह भाई, मैं तो चाय पीऊंगा।
2: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
4: थैंक यू।
1: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
4: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
1: अच्छा
2: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
4: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
1: जल उत्सव क्यों?
4: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
1: अच्छा।
4: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
1: हाँ।
4: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं। जी।
2: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
4: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
2: तो हम भी चले?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो आ जाओ।
2: चलो चलो चलो, चलो।
0: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी, और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
3: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया।

0: और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
1: हैप्पी संकेन।
2: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
3: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
0: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
2: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
4: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
3: अच्छा।
4: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
3: जी अंकल।
4: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
5: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
4: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
0: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
6: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
7: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक

0: अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है। क्लैप एंड स्माइल।
3: हेलो फ्रेंड्स।
4: हेलो।
3: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। सो वी विल सिंग द हैप्पी सॉन्ग अगेन बट विद अ डिफरेंस।

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan, sung by Neha and Children, recorded by Butty Langdingdo, produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India. श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार. उमंग.

0: मोम की गुड़िया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में, रचना थी आनंद बख्शी की।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीक

रागों की श्रृंगार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

चलते चलते एक गाना और सुन लेते हैं, दुश्मन फिल्म का। ये आन मिलो सजना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत, संगीतकार हैं उत्तम सिंह, फिल्म दुश्मन, रचना आनंद बख्शी की।

दुश्मन फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती से, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, सुरीला सफर कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, विविध भारती के फेसबुक पेज पर। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं, और आज की जो इबारत है वो हम आप तक पहुंचा दें। वैसे जो हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर सक्रिय हैं, उन्होंने ये इबारत पढ़ ली और टिप्पणियां भी लगातार साझा कर रहे हैं। इबारत यूं है कि बचपन में जब पापा जल्दी आते तो एक गुड़िया साथ लाते थे, तो लगता था जैसे पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में सिमट आई हो। फिर दुनिया बड़ी हुई, समय और मौसम बदला, साथ मिला सजना का, नसीब खुशियों से भर गया। पिया का इंतजार करना भी सीख लिया मन ने, कभी घटा बनकर यादें बरसी, कभी गुल और बुलबुल की तरह मोहब्बत ने गीत सुनाए। दिल ने किया सवाल, छोड़कर प्यार का दामन भला कहां जाए, तो एहसास आज भी साथ है वो। जुल्फों की छांव हो या मोहब्बत की महक, दिल की दुनिया इन्हें खूबसूरत लम्हों से आबाद रहती है। होठ गुनगुनाते हैं, जाने क्यों लोग करते हैं मोहब्बत, ओ मेरी शाहे खुबा, और भी बहुत सारे गाने। और बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और शब्द तो बहुत जल्द पकड़ लिया। और हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज तो आपने परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। भाई, इसे लीक करना नहीं कहेंगे, इसे तो हम ये कहेंगे कि आप की त्वरित बुद्धि ने बहुत जल्द पकड़ लिया कि आज के इस इबारत में कौन से शब्द हैं और कौन से गाने होंगे। तो जरा ये देखिए, सुनिए और बूझिए कि ये गाना भी आपने चुना था या नहीं। इस गाने के बारे में आप क्या कहेंगे? फिल्म मेरे हमदर्द मेरे दोस्त। इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात हो तो जरा बताइएगा हमें। जरा गीतकार का नाम बूझिए और संगीतकार का नाम बूझिए।

घटा, सावन, सजना, कौन कौन से गाने हैं इन शब्दों पर याद किया क्या आपने? जरा लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद हो वो भी लिखिए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना था। हमने पूछा था आपसे गीतकार संगीतकार का नाम, बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। मजरू सुल्तानपुरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और बहुत सारे श्रोताओं ने पप्पा जल्दी आ जाना सात समंदर पार से इस गाने के लिए लिखा है बहुत कुछ। और बहुत सारी टिप्पणियां आई है कि बचपन की गुड़िया, बचपन का संसार, लेकिन आज की इबारत में और भी तो बहुत कुछ है। तो वो जो टिप्पणी है हम पढ़कर सुनाएंगे जरूर, और वो गाना भी हम सुनवाएंगे, क्योंकि इतने सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमारी मजबूरी बन गई है वो गाना सुनवाना। और कौन से गाने आपके जहन में इस वक्त आ रहे हैं? और आज एक खास बात और है, हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, आनंद बख्शी कलम के वो जादूगर जिसने अपने रचे मधुर गीतों से सुनने वालों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें भुला पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। बचपन के बारे में ऐसा लिखा कि लोग कहने लगे, आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। महबूबा की तारीफ, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, और पूरी पूरी लाइनें भी लिखी है। और आगे लिखा है इन्होंने कि आनंद बख्शी कलम के वो जादूगर जिसने अपने हृदय रचे मधुर गीतों से सुनने वालों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें भुला पाना नामुमकिन है। बिल्कुल सही फरमाया है। और अब बात आनंद बख्शी की चली है, आज उनकी याद का दिन है, विविध भारती से उनके बहुत सारे गाने प्रसारित किए जा रहे हैं, और शाम को 4 बजे भी उनके बेटे राकेश बख्शी से बातचीत आप सुन सकते हैं। तो चलिए फिर एक गाना आनंद बख्शी साहब के नाम, रोशन का संगीत है, आपको बूझना है फिल्म का नाम। इस गाने को सुनते हुए आपके जहन में कौन कौन से और गाने कौंध रहे हैं हमारी इबारत से जुड़े हुए? फिल्म का नाम बूझना है आपको, फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। देवर लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी की याद को समर्पित था ये गाना, रोशन का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही, और ये भी लिखा है कि धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर होते हैं इस फिल्म में। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम पहला गाना सुन रहे थे चलो सजना, तो हमें याद आया काली घटा छाई प्रेम रुत आई। और एक श्रोता ने लिखा है कि इस गाने को सुनते हुए बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गाना हमें याद आया है। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है इस बात के लिए, जब हम अब हम लाइन से वो टिप्पणियां पढ़ के सुना रहे हैं। लेकिन हमारा आपसे आग्रह ये है कि और भी जो इसमें शब्द हैं उन शब्दों से जुड़े हुए गाने भी आप लिखें और उन गानों से जुड़े हुए भी टिप्पणियां आप साझा करें। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा बचपन तो छोटे से ग्रामीण परिवेश में ही गुजरा है, जहां कभी कभार रेडियो सीमित समय के लिए सुनने को मिलता था। मनोरंजन के नाम पर भजन मंडलियों और गीत, सावन के झूले, बहनों का गरबा और नदी में नहाने जैसे कार्यों के करते पढ़ाई के लिए कब हरदा पहुंच गए कुछ याद ही नहीं। हाँ, याद है पिताजी का झूले पर बैठकर अक्सर गुनगुनाया जाने वाला गीत, रुमझुम बरसे बादरवा, रुंझुन बरसे बादरवा, मस्त घटाए छाए, और पिया घर आजा, फिल्म रतन जोराबाई अंबाले वाली की आवाज में। आज के प्रोग्राम की सूची में ये गीत निश्चित ही सम्मिलित होगा, ऐसा अनुमान है। भाई अनुमान हो सकता है, कई बार सच होता है, कई बार गलत भी होता है, तो आप इंतजार कीजिए पूरे प्रोग्राम के दौरान। हाँ, लेकिन ये जो झूले वाली बात याद आई है, तो जरा हमारे बाकी श्रोता भी बताएं कि क्या आप भी झूले पर बैठकर पींगे मारे हैं? वो झूले वाली बात याद कीजिए, सावन वाली बातें याद कीजिए। गानों के साथ तो हम जाने कहाँ कहाँ की सैर कराते हैं मन के उड़न खटोले से, तो आप जरा याद कीजिए वो गाने और साझा कीजिए, झूले वाली बात, सावन वाली बात।

अब एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में न जाने कितने मूल्यवान उपहार बिखरे पड़े हैं, मगर पापा की लाई हुई वो प्लास्टिक की गुड़िया से ज्यादा अच्छा और कोई उपहार है? गुड़िया की शादी, गुड्डे से और विदा के समय जब वो गुड्डे वाली सहेली कहती, अब ये गुड़िया हमारी हुई, तो सारी दोस्ती भूल कर अपनी गुड़िया के लिए लड़ाई करना, तब बीच बचाव में मम्मी को आना पड़ता। क्या बात है भाई। वे कहती कि शादी हुई है तो गुड़िया अब गुड्डे की हुई ना। फिर न जाने कब बचपन बीत गया और फिर मिला एक साथी जिसके साथ चलते जीवन की सच्चाई से सामना हुआ। यादें भी न जाने कितनी अजीब होती हैं। वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक किसी गीत के सहारे, किसी पुराने मौसम के साथ दिल में उतर आती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो अब हमारा साथी है, हमारा हमसफर है। तो अपने हमसफर से जुड़ी हुई बात भी बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी साझा कीजिए कि आपके जीवन साथी के साथ दिन में कितनी बार तकरार होती है और कितनी बार प्यार मोहब्बत की बातें होती है, ये भी साझा कीजिए। भाई ये तो प्रोग्राम ही ऐसा है कि एक परिवार की तरह हम एक दूसरे से बोलते बतियाते हैं। फिलहाल अब जो वो गाना आ रहा है जिसकी फरमाइश बहुत सारे श्रोताओं ने की है और बहुत सारे श्रोताओं ने इससे जुड़ी हुई याद साझा की है, टिप्पणी साझा की है।

गुड़िया के अलावा आपके पापा कौन सा तोहफा लाया करते थे शाम को जब घर लौटते थे तो? कभी जब आपके पापा खाली हाथ आते थे तो कैसा लगता था, जरा वो भी बताइएगा। क्या गुड़िया के अलावा कभी टॉफी चॉकलेट भी लाए?

तकदीर फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और साथियों की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आनंद बख्शी की याद को समर्पित था ये गाना और बहुत सारे श्रोताओं ने लंबी तादाद में इस गाने का जिक्र किया और अपने पापा के तोहफों का जिक्र किया। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का साथ होना ही सबसे बड़ा उपहार होता है, बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत है ये। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गुड़िये गुड्डे से तो नहीं खेल पाया हूं, लेकिन मेरी धर्म पत्नी मुझे बताती हैं कि वो उनकी बहनें बचपन में अपनी गुड़िया और दूसरे बच्चों के गुड़िया के साथ आपस में मिलकर शादी कराते थे, खूब मजे करते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब के लिए लिखा है कि आनंद बख्शी जी ने गीत सिर्फ लिखे नहीं, उन्हें लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया। उनके शब्द इतने सहज थे कि हर कोई उसमें अपना एहसास, कोई रिश्ता, कोई याद ढूंढ लेता है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, सादगी में गहराई और हर दिल तक पहुंच जाने वाली बात। बिल्कुल सही फरमाया है कि सादे सीधे सादे अंदाज में, सरल भाषा में गहरी बात लिखना बहुत मुश्किल है। एक श्रोता ने लिखा है कि भई आज तो पूरी लिस्ट वायरल हो गई है, आप तो प्रश्न करते रहिए, जवाब देते रहेंगे। तो हमने तो आपसे प्रश्न किया है कि अब बताइए कि आनंद बख्शी साहब के कौन से गाने इस वक्त आपको याद आ रहे हैं। कोई एक गाना अगर आपसे कहा जाए, चुनकर बताइए कि आपका बेहद पसंदीदा गाना, तो क्या आप सब बता सकेंगे? अगर बता सकते हैं तो जरा बताइए, हम भी देखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब वो शख्सियत हैं जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में कभी एक जैसा किसी का नसीब नहीं होता है, जो देवर फिल्म का गाना सुनवाया था उसके लिए। और झूले के लिए इन्होंने लिखा है कि सावन के महीने में जब झूले पर पींगे मारते थे तो बीच में बैठी लड़कियां गाना गाती थी, पिया मेहंदी मगाए द मोती झील से जाए के साइकिल से, ये याद है मेरी दीदी को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पींगे भरते हुए लोगों को देखा है और स्वयं तो दरवाजे की कुंडी में चादर बांधकर तकिया लगाकर घर में झूला झूला गया है, भाई क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो मेरी गुड़िया का जन्मदिवस है, आज वो 13 बरस की हो गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि पापा जल्दी आ जाना, ये गाना इतना भावपूर्ण है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी टिप्पणियां लिख भेजी हैं। अब देखते हैं कि हमारे एक श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि गाने हैं सात समंदर पार से, एक था गुल और एक थी बुलबुल, तेरी जुल्फ के छांव में दिल मेरा खोना चाहे, और छोड़कर तेरे प्यार का दामन। फिर आगे लिखा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, ओ मेरे शाहे खुबा। भई गजब, इतने सारे गाने तो आपने बूझ लिए, तो और भी श्रोता और भी गाने बूझे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में बहुत सारे भावनात्मक शब्द हैं, जैसे कि मोहब्बत, प्यार और एहसास। इन शब्दों पर कई सुरीली गाने सुनवाए जा सकते हैं, गुड़िया लाकर देने की बात तो दिल को छू गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पापा की लाई हुई उस गुड़िया से शुरू हो रही है, जो भावनाओं से जुड़ी हुई पापा की गुड़िया कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, समय कितनी जल्दी हाथों से निकल गया। हम अपनी बेटी को उसी गुड़िया के रूप में देखते हैं जो जल्दी ही विदा होने वाली है, ये सोचकर आंखें भर आती हैं। और वो पापा भी अपनी गुड़िया की विदाई के कामों में व्यस्त हो गए हैं, जो कभी उसके लिए गुड़िया लाया करते थे। अब देखिए ना, एक गाना कितने सारे श्रोताओं के मन की भावनाओं पर दस्तक दे रहा है, कितने सारे श्रोताओं की आंखें नम कर रहा है, कितने श्रोताओं के जज्बात से जुड़ गया है ये गाना, उनमें से एक तो हम भी हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा भावों को बदलते हैं और जुड़ते हैं, थोड़ा सा अपने बचपन के संसार को आगे बढ़ाते हैं, जब प्यार मोहब्बत की दहलीज पर हमारा मन पहुंचता है। बताइए फिल्म का नाम, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हीरो हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम बूझना है आपको।

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज़, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और हमने हीरो हीरोइन का नाम आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने बताया, जॉय मुखर्जी और आशा पारेख। कुछ श्रोताओं ने इसका गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बात झूले की चली है तो वो 13-14 साल की उम्र का झूले की मस्ती याद आती है। आज गांव में 2-3 पेड़ नीम के हैं, पहले तो हर घर के दरवाजे पर 2 जरूर होते थे। सावन आते ही बांस के डंडे से रस्सी बांधकर झूला लटकाते और नीचे एक पटरा बांधकर पींग मारते। फिर शाम को अक्सर गांव की लड़कियां झूलने आती हैं और हम सब मना करने पर भी तेज पींगे मारकर झूला ऊपर ले जाते थे। और कजरी गाई जाती थी, चैती गाई जाती थी, है ना? तो कौन सी कजरी, कौन सा गाना अगर याद है तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिता हमारे बहुत सख्त थे, बाहर का खाने से रोकते थे, यहाँ तक कि गुलाब जामुन भी घर पर बनवाया करते थे माताजी से, और मांग पर भुनी मूंगफलियां दिलाया करते थे। बस स्मृतियों में ही सब पल है और जाने वालों को भला कौन रोक सकता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों को जितना हो सके डांट मार से नहीं, प्यार से समझाने में ही समझदारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ बच्चे के हाथ में गुड़िया पकड़ा देती है, जिससे बच्चा उससे खेलने लगता है और रोना बंद कर देता है। माँ बच्चों को झूले में सुलाकर उस पर डोरी पर गुड़िया लटका देती थी, जिससे झूले के साथ गुड़िया हिलती रहती थी। पर अब वो बचपन है क्या? अब वो गुड़िया है क्या? अब तो नकली गुड़िया आती हैं और अब मोबाइल है। अब माँ छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, उसमें अपने आप से बच्चा स्क्रीन बदलता रहता है, बस यहीं से स्क्रीन की लत लग जाती है। आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक जमाना वो भी था कि बिजली, बंगले, सड़क, गाड़ियां, मनोरंजन के तमाम साधन बिल्कुल नहीं थे, फिर भी सजनी को साजन का और साजन को सजनी का इंतजार होता था। बिल्कुल सही बात कही है आपने। कैसे मिट्टी के तेल से जलते माटी के दीपक की रोशनी में हम लोग मिले थे, बड़ी मान मनोवल के बाद वो हमारे पास तो आई और शरारत से दिया बुझा दिया कि हमें शर्माती है, फिर अंधेरे में दीपक रोशन हुआ था और जिंदगी भर का साथ बन गया, और आज बेटे नाती पोते बहुत कुछ है। तो सचमुच तब मोबाइल और सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, रिश्ते बड़े प्रगाढ़ होते थे, आँखों की भाषा होती थी, होठों की भाषा होती थी। तो आप अपने अनुभव साझा करते चलिए। फिलहाल बहुत सारे श्रोताओं ने आनंद बख्शी के अनगिनत गाने लिखे हैं और उनमें से एक गाना हमने चुना है ये। तो आपने क्या ये गाना चुना था, याद कीजिए और बताइए इसमें हीरो हीरोइन कौन है। फिल्म महबूब की मेहंदी, गीतकार का नाम तो अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने, संगीतकार का नाम जरा बूझिए।

महबूब की मेहंदी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं भाई, आप अपने अनुभव ही तो बताइए कि आपने अनुभव किया ऐसा कुछ कि आपने कभी ये गुनगुनाया हो गाना किसी और के लिए या किसी ने आपके लिए ये गाना गुनगुनाया हो। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और लीना चंदावरकर, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि धन्यवाद आपने ये गाना सुनवाया, मेरी भी पसंद का गाना था। किसकी पसंद नहीं हो सकती भला। हमने संगीतकार का नाम भी आपसे पूछा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी, और आनंद बख्शी के गानों के लिए जब हमने पूछा कि कौन सा गाना पसंद है तो ये गाना भी आपकी पसंद में शामिल था, और बहुत सारे गानों का जिक्र किया है हमारे श्रोताओं ने, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आनंद बख्शी जैसा गीतकार कोई हो नहीं सकता, उनके गीतों में जो सहजता है। तमाम श्रोताओं की बात इन वाक्यों में मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि आनंद बख्शी साहब का एकदम सदाबहार दिल को सुकून देने वाला ये गाना था। अब हमने जो झूले की बात पूछी थी, हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि कुछ पारिवारिक परंपरा होती थी, बच्चों के लिए मोटे कपड़ों का झूला छत की कड़ी से बांधकर उसमें छोटे बच्चों को सुलाते थे, लकड़ी का पालना वर्जित था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी दो बेटियां हैं, दोनों का विवाह हो चुका है, मैंने करीब 10 वर्ष तक उन्हें चॉकलेट नहीं खाने दिया, और इस बात को मेरी बड़ी बिटिया ने एक वाक्या बताया कि उसकी एक सहेली के दांत पूरी तरह खराब हो गए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जो हमने पूछा था कि झूले पर कौन सा लोकगीत गुनगुनाते थे, तो एक श्रोता ने लिखा है कि मिर्जापुर कैल हो गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमु सोने की थाली में जेवना परोसल, और दो तीन लाइन और लिखी है। एक श्रोता

गीता ने लिखा है कि बचपन की वो प्यारी यादें, पापा का प्यार, धीरे धीरे जवानी के दहलीज में बढ़ते कदम, हम सफर का साथ, खट्टे मीठे अनुभव, सब कुछ जीना सिखा दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक पिता के द्वारा लाई गई गुड़िया सचमुच हर बिटिया के लिए एक अमूल्य उपहार होता है। ये वात्सल्य रस की प्रतीकात्मक और कोमल अभिव्यक्ति है, जिसमें पिता का निश्चल स्नेह, हृदय से जुड़ी भावनाएं रहती है। यहाँ गुड़िया का भौतिक अस्तित्व ममता की मूर्त की भावना को दर्शाता है। सचमुच एक गाने ने कैसे आप सबको द्रवीभूत कर दिया है, और कौन ऐसा शख्स है जो ये गाना जो हमने सुनवाया था, पापा जल्दी आ जाना गुड़ियों के बाजार से, गुड़िया चाहे ना ले ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, सचमुच एक मर्म है इस गाने में। और अभी तो हमने महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना सुनवाया, इससे जुड़ी हुई कोई खास बात आपके जहन में है तो वो भी बताते चलिए। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है गुल और बुलबुल वाला गाना कब आएगा, ये आ गया, लेकिन आपको पहेली का जवाब देना है कि कौन है इसमें हीरो, कौन है हीरोइन। त्वरित जवाब दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा शायद हीरो हीरोइन का नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं आप।

क्या ये गाना सुनते हुए आपको कोई कहानी भी याद आती है? कहानी की शक्ल में ये गाना लगता है ना।

शशि कपूर और नंदा इस फिल्म में हीरो हीरोइन थे, ये हमने सवाल पूछा था, सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया, त्वरित जवाब आया और लंबी तादाद में अब तक जवाब आ रहा है। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, टिप्पणियां खत्म नहीं हो रही हैं। शशि कपूर और नंदा, एक श्रोता ने लिखा है, बहुत ही मासूमियत भरा सुपरस्टार हिट गीत है मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ में। और एक श्रोता ने लिखा है कि अद्भुत अभिनय था इस फिल्म में शशि कपूर का और नंदा का। कश्मीर की वादियों में फिल्माया गया ये गाना सुनने में खूबसूरत है, देखने में भी उतना ही खूबसूरत था। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां तक मुझे याद है हमारे नाना जी ने कोई कहानी नहीं सुनाई, नानी और दादी जरूर सुनाती थी, देश के वीर जवानों की कहानी सुनाया करती थी। कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि अपने क्रांतिकारियों के बारे में कहानी सुनाना जैसे हम भूल गए हैं, बच्चों को जरूर सुनाइए ऐसी कहानियां। कहानियां सुनने से एक तो उनकी कल्पना शक्ति में विस्तार होता है, वरना तो वो मोबाइल में जो कहानियां देख लेते हैं उसमें उनकी सोचने की क्षमता कमजोर होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव की सच्ची घटना है, दो लोग गुल और बुलबुल की तरह प्यार करते थे, जब उन्हें घर वालों ने एक न होने दिया तो वो दोनों साथ में जान दे दिए। उफ, ये तो दर्दनाक बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि सच में ये गीत कहानी जैसा लगता है, जैसे कोई अपना पराया सा साथी कुछ बता रहा हो और हम उनसे हर बात बड़े ही भोलेपन से पूछ रहे हो। ये आनंद बख्शी की गीतकारी की कमाल है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम ऐप पर सुन रहे हैं गाने तो आधे मिनट देर से पहुंचते हैं, लेकिन हम जवाब तो रेत देते हैं। आ गया आपका जवाब भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मपत्नी के साथ अगर नोकझोंक ना हो तो जीवन में मजा ही ना आए, मैं तो जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ देता हूँ तो वो लेक्चर शुरू कर देती है और मन ही मन में हंसकर खुश होता रहता हूँ। भाई ये तो बड़ी शरारत है, अगर आपकी श्रीमती जी सुन रही हो तो एक तरह से अच्छी बात है, अगर उन्हें गुस्सा आता हो तो गुस्सा उनका ठंडा भी हो जाता होगा। एक श्रोता ने लिखा है कि गौरवशाली बचपन के गुड्डे गुड़िये की गाथा गान कर जवानी के दहलीज के दहकते दहन को दर्शाती है आज की ये इबारत। और एक श्रोता ने लिखा है कि उस जमाने में गाने बनाने वालों ने बेहतरीन गाने बना दिए और गीतकार आनंद बख्शी के लिए इन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और जब बहुत रोते थे तो हम दोनों पति पत्नी उसको चादर पर सुलाकर उसके दोनों कोने पकड़ लेते थे और उसे झूला झूलाकर सुलाया करते थे। भाई झूले की बात बहुत हो गई है

बचपन के तोहफों की बात हो गई, पापा के घर आने की बात हो गई है, अब जरा ये बात हो जाए कि प्यार मोहब्बत जब आपने किसी से किया और आपकी पत्नी या आपके पति ने क्या बातें कही, ये गाना सुनिए और कभी आपने भी इस तरह की बात कही एक दूसरे से, क्योंकि जिंदगी में प्यार बहुत जरूरी है।

प्यार का इजहार बहुत जरूरी है, तो क्या आप अपनी पत्नी से या अपने पति से इजहार करते हैं प्यार का? उम्र के किसी भी पड़ाव में प्यार का इजहार किया जा सकता है। फिल्म का नाम जरा बताइएगा।

फिल्म थी वो कौन थी? सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। ये हमारा सवाल था। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मनोज कुमार और हेलेन अभिनेत्री, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि कमाल है ये गाना, हमने भी सोचा था, मेरी पसंद का था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कहानियां सुनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, नाना नानी दादा दादी तो इस तरह दुनिया में नहीं रहे, मगर हाँ उनकी कहानियां ज़रूर याद आती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 38 साल हो गए ये कहते और दोहराते हुए, अब तो बच्चे हंसते हैं, कहते हैं पापा डिजिटल युग में नया गीत अपनाइए। उनको समझाइए कि हम अपने युग का गीत गा रहे हैं, आप अपने युग का गीत गुनगुनाइए, लेकिन गुनगुनाइए जरूर। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी मेरे पास ही बैठी रेडियो पर विविध भारतीय सुन रही है और आपकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही है। क्या बात है भाई, हमारा कहना और बोलना सफल हो जाता है जब हमारी बात से कोई मुस्कुराए और हमारे बजाए गए गानों से किसी बात

क्या बात है भाई, आगे लिखा है कि गुड़िया बुलबुल गुल दुनिया घटा वगैरह शब्द पर गाने होंगे और बहुत सारे इमोजी इन्होंने लगाए हैं, फूल पत्ती दिल और हाथ। तो आप बताइए कि क्या आप जब अपनी बात कहते हैं आज के जमाने में अपनों से, तो क्या इमोजी से काम चलाते हैं या अपने दिल की बात शब्दों से कहते हैं? अब सुनिए ये गाना। ये गाना आ रहा है कुछ श्रोताओं के अनुरोध पर, बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का भी जिक्र किया है हमारी आज की इबारत में ये शब्द है, तो सुनिए ये गाना और बताइए जरा गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म रतन, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है, जोराबाई अंबाले वाली।

रतन फिल्म का गाना जोराबाई अंबाले वाले की आवाज में, रचना थी डीएन मधुक की, संगीतकार नौशाद। और ये हमारा सवाल था, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही जवाब, कुछ श्रोताओं ने गलत भी लिखा है, लेकिन इतने जवाब नहीं आए हैं जितने कि अन्य गानों के लिए आए थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो प्यार के इजहार का सबका अलग सा अंदाज है, पर होता बड़ा ही प्यारा है। रूठना मनाना, कभी कभी बात न करना, हमारे साथी तो रूठ कर खाना नहीं खाते थे, बड़ा ही मुश्किल होता था उन्हें मनाना। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह क्या पूछ लिया, जिंदगी अंतिम पड़ाव में पति जी से बड़ा प्यार और इजहार सुनने को मिला, लगता है सारी कमी पूरी हो गई। जब प्यार से कहते हैं तुम अपना ध्यान रखा करो, तुमने सोचा तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, अभी मैं 74 वर्ष की हूँ। क्या बात है भाई, आपने तो हमारे जज्बात को छू लिया। और अच्छा लगा कि उम्र के इस पड़ाव में एक दूसरे से आप इजहार करते हैं और ये बात आपने यहाँ पर लिखी। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज बहुत सारे गाने हमारे और आपके मिले, हमें भी अच्छा लगा। एक श्रोता ने लिखा है कि शब्दों के साथ साथ थोड़ी सी इमोजी भी हम भेज दिया करते हैं।

श्रोताओ नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी फूल पर। फूल प्रकृति की सबसे सुंदर और मनमोहक रचनाओं में से एक है। रंग बिरंगे फूल धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं और अपनी सुगंधित स्पर्श से वातावरण को आनंदमय बना देते हैं। फूलों को देखकर मन में प्रसन्नता, शांति और सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए फूलों को प्रकृति का मुस्कुराता हुआ उपहार भी कहा जाता है। फूलों का जीवन भले ही छोटा होता है, लेकिन उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। वे हमें सिखाते हैं कि कम समय में भी अपने गुणों और सुंदरता से संसार को खुशियाँ दी जा सकती है। फूल बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी खुशबू और सुंदरता प्रदान करते हैं।

हमारे जीवन में फूलों का विशेष स्थान है। पूजा पाठ, त्योहारों, विवाह समारोहों और शुभ अवसरों पर फूल का उपयोग किया जाता है। हर फूल अपनी अलग-अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। फूल केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फूलों से मधुमक्खियां और तितलियां आकर्षित होती है, जो परागण की प्रक्रिया में सहायता करती है। इससे पेड़ पौधों का जीवन चक्र चलता रहता है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। फूलों से हमें जीवन में कई तरह की सीख मिलती है। जिस प्रकार फूल कांटों के बीच रहकर भी अपनी खुशबू फैलाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में अच्छाई और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। फूल हमें विनम्रता, मुस्कान और दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने की प्रेरणा देते हैं।

सूखे हुए फूल केवल मुरझाई हुई पंखुड़ियां नहीं होते, वे अपने भीतर बीते हुए पलों की अनगिनत कहानियां संजोए रखते हैं। किसी किताब के पन्नों में दबा हुआ फूल किसी पुराने उपहार की तरह हमें उन खूबसूरत यादों की दुनिया में ले जाता है, जहां भावनाएं हमेशा ताजा रहती है। जब कोई हमें प्रेम, स्नेह या सम्मान के रूप में फूल देता है, तो वह केवल फूल नहीं, बल्कि अपने मन का एक कोमल भाव हमारे पास छोड़ जाता है। समय के साथ फूल की खुशबू भले ही कम हो जाए, उसका रंग फीका पड़ जाए, लेकिन उनसे जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं होती। कभी किसी पहली मुलाकात की निशानी, कभी किसी खास अवसर की स्मृति, तो कभी किसी अपने के स्नेह का प्रतीक बनकर सूखे हुए फूल जीवन के अनमोल पलों को संभाल कर रखते हैं और खत में भी भेज दिए जाते हैं।

0: आज की त्रिवेणी यहीं पर संपन्न होती है। सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर एक अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता

0: मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
1: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समुद्र में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रूपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय MSHPC@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट UG 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचि जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

लोफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आज के सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी को। सुनिए अगला गीत उन्हीं का लिखा हुआ, किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: कटी पतंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: गलियां, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है,
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमक हराम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं चुपके चुपके फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है मंदाकिनी जी, तो आपको भी मंदाकिनी जी मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं।
2: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी प्यार भरा नमस्कार, हमारे सभी सखियों और हमारे सखाओं को और साथ में मंजरी आपको भी
1: जी।
2: और मिलना जुलना तो होता ही रहता है, देखिए जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही मुलाकातों में भी कभी कभी बदलाव आता है, कभी हम मिल पाते हैं कभी नहीं भी मिल पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे मौसम बदलता है तो हम लोग उसमें खुश होते हैं, तो मिलकर भी बहुत खुश होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मंदाकिनी जी। तो देखिए
2: कैसे अभी मौसम बदल रहा है ना, जगह जगह बरसात होना शुरू हो गई है और गहरी बरसात भी हो रही है, जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं सुनते हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारी जगह बरसात हुई है। तो ये जो मौसम बदलता है ठीक वैसे ही प्यार का मौसम भी होता है।
1: बिल्कुल मौसम होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक विषय अपने विषय बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं।
2: अरे बताओ।
1: तो आज हल्की फुल्की बातें में हम बात करने वाले उफ घर में सामानों की उठा धराई, ये इसमें कितने बिजी हो जाती थी हमारी सभी महिलाएं, तो सखियां भाभियां मौसी चाची वगैरह, तो इस पर बात करेंगे। अपने अनुभव भी लिखकर भेजिए और सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर स्वाति लोढ़ा लाइफ लेमोनेड और यूएलटीए की स्कूल की संस्थापक है, इनके बारे में हम बातें करेंगे।
2: ठीक है।
1: और मुहावरों की दुनिया में खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे,
2: इस पर हमारी बिल्ली खम्बा नोचे।
1: हाँ जी,
2: अच्छा।
1: तो इसके बारे में हमारे सभी साथी लोग अपने अपने विचार लिखकर भेजिए।
2: लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ कि हमारे जो सखी और सखा हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, इसका आपको वर्णन नहीं करना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरे का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, आपको बताना है ऐसा कोई प्रसंग जो आपकी जिंदगी में घटा हो। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप खिसियानी बिल्ली बनकर खंबा नोच रही होंगे, है ना, या आपके सामने खड़ा कोई इंसान है आपके जीवन में कोई भी ऐसा हो जब आपको लगता है देखा खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे।
1: बिल्कुल,
2: तो वो प्रसंग आप लिखिए तो ज्यादा मजेदार ये जो है सेगमेंट बन सकता है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे हमारे साथी सोचेंगे और लिखेंगे। और यादों से सुकून लेकिन बदलाव को समझे, इस पर भी अपनी अपनी यादें आप साझा कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम लोग क्या चर्चा करते हैं ये तो आपको सुनकर पता चलेगा, है ना।
2: हाँ।
1: लेकिन उससे पहले एक बढ़िया से गीत सुन लेते हैं जो मौसम से ही मिलता जुलता गीत है।
2: चलिए सुनाइए।

0: तो देखिए कितना प्यारा सा गीत था, मौसम प्यार का। हमारे साथियों ने देखिए जो बातें लिखी हैं उनको तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन यादों से सुकून लेकिन बदलाव, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अक्सर होता है मंदाकिनी जी कि हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, और अच्छी यादें होती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, वहीं अगर खराब यादें होती हैं तो हर समय वही घेरे रहती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, उदासी से मन व्याकुल हो जाता है, और ना किसी से मिलने का और ना बात करने का ही मन करता है, ना कहीं जाने का मन करेगा, और एक तरफ से व्यक्ति पूरी तरह से मतलब उसको अजीब सा लगने लग जाता है, दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। और हम जब जन्म लेते हैं, हर दिन उम्र के साथ बिताया पल अगले पल में यादें बन जाता है, जिनके साथ हम रहते हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, संगी साथी, सभी के साथ बिताए दिन यादों में समा जाते हैं, और यादें हमारी अपनी स्मृतियों की अमूल्य धरोहर हैं, और जीवन पर्यंत वे बढ़ती ही जाती हैं, जिनको कोई चुरा नहीं सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक इन यादों के साथ भी होता है ना मंदाकिनी जी?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए बचपन का जो बिताया पल है, वो घर शहर, अगर मोहल्ला की बात करें, गांव है गलियां हैं, हम उन दिनों क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था, घर में सीमित साधन होते हुए भी हमारे पास सभी सुख सुविधाएं होती थी, और आपस में मिलकर हम त्योहार मनाते थे, कैसे मनाते थे, उनकी रौनक सब आंखों में याद करते ही तैर जाती है, और कहीं ना कहीं मन को बड़ा सुकून मिलता है। यही यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं, और परेशानियों में उन्हें याद कर मुस्कुरा भी उठते हैं कि कैसे थे वे दिन, हम कितने खुश रहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सीमित दायरा था और ज्यादा आवश्यकताएं भी हमारे पास नहीं हुआ करती थी।
0: बिल्कुल। और उन दिनों रिश्तों में प्यार होता था, एक लगाव होता था मंदाकिनी जी, और अपनापन होता था, या कोई भी मेहमान या रिश्तेदार आते तो लगता था कि वे अपने साथ खूब दिन रुके, और उनके जाने की तारीख ये बहुत जानने की उत्सुकता बनी रहती थी कि वो कैसे भी पता चल जाए कि वो कितने दिन यहाँ रुक रहे हैं, कब जाने वाले हैं, तो उसी हिसाब से वो दिन बिताने या मौज मस्ती करने के बारे में हम लोग सभी लोग ऐसा सोचा करते थे। फिर उनके रहने पर तरह तरह के जो घर में पकवान बना करते थे, तो छत पर देर रात तक की बातें करना, बच्चे बच्चों के संग खेलते थे, नदी नहर तालाब पर जाना, नहाना, खेत घूमना, और पेड़ों पर झूलना आदि, बाग से फल तोड़ना चुराना, ये सब बहुत सारी यादें हैं जो एकदम से जुड़ जाती हैं उन।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बचपन का वो जो समय था हमारे लिए

0: इतना कीमती था कि आज भी हम उसे भुला नहीं सकते हैं। न जाने कितनी यादें थी, लालटेन में पढ़ते थे, कुछ बच्चे शाम होते ही खुले आसमान में चांद तारों को निहारते हुए सोते थे, और सब आज ही कहकर याद करते हैं कि क्या दिन थे वो भी। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, और ऐसे हमारे जमाने में वैसा होता था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन केवल वक्त के बदलते दौर में मंजरी, हम उन यादों के साथ तो नहीं जीवन गुजार सकते, है ना? जैसे ऋतुएं
1: जी
0: बदलती हैं, परिवेश परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, और जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लोगों की सोच बदल गई है, अब जीवन शैली समृद्धि की ओर बढ़ चली है। आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई सुविधाएं आ गई हैं। रसोई में सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले ली है, चूल्हे की जगह गैस ने ले ली है, अंगीठी की जगह भी गैस ने ले ली है, और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आ गए हैं हमारे घरों में। कभी हम पैदल चला करते थे, आज साइकिल तो स्कूटर कार से जाने लग गए हैं। घर में टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, सभी कुछ आ गया है, और सब ऑनलाइन भी हो गया है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं ना मंदाकिनी जी, कि यादों को सजो कर रखें, क्योंकि भविष्य के लिए हमें पहले के दिनों के संग और आज के दिनों में तालमेल बिठाना ही पड़ता है। और वैसे ही हम धीरे धीरे आज के सांचे में सुख सुविधाओं के आदि हो गए, जैसे कि इसके बिना रह ही नहीं सकते, तो पुरानी यादों को दोहराते भी है। और यादें जहां हमें भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती हैं, और बदलाव हमें आगे बढ़ना सिखाता है। इसलिए पुरानी यादों को भूलिए नहीं, और ना ही नए समय से दूरी बनाइए। यानी जीवन का जो सौंदर्य इसी में है कि हम बीते कल से सीखें और आज की पूरी शिद्दत से जिए, और आने वाले कल का पूरे आत्मविश्वास से स्वागत करें, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जिंदगी तो पल पल बदलती है मंजरी, और इसी प्रकार हमारी यादें भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पुराने लम्हों को याद करते हैं किसी वजह से, तो हमें वो सब याद आ जाता है जिसका जिक्र अभी तुम कर रही हो।
1: और हमारे साथी भी देखिए, एक संदेश में लिखा है उन्होंने कि बीते पलों की यादें जीवन का सबसे खूबसूरत और अमूल्य खजाना होती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, इस जिंदगी में जब हम कुछ पल ठहर कर स्मृतियों की खिड़की खोलते हैं, तो एक असीम शांति और सुकून का एहसास होता है। यादों की मिठास मन को गहरा सुकून देती है, जो हमें मुश्किल वक्त में संबल प्रदान करती है। वहीं जीवन का अटल नियम बदलाव हमें निरंतर आगे बढ़ने और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देता है। पुरानी यादें हमारी जड़ों से भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती हैं। इन पुरानी यादों को एक मजबूत पूंजी के रूप में सजोएं, लेकिन वर्तमान के बदलावों को खुले मन से स्वीकारें। बहुत अच्छी सी बात
0: वही
1: है।
0: वो ना, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, और उसे हमें स्वीकार करना ही होगा, है ना?
1: बिल्कुल।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि यादों में सुकून इसलिए है क्योंकि वहाँ सब कुछ अपने हिसाब से हमें सजावा लगता है। जो लोग चले गए, जो लम्हे गुजर गए, जो गलतियां हमने की थी, वो सब यादों में आकर धुंधली और खूबसूरत तो हो जाती हैं। वहां कोई शोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं होता, बस एक ठहराव है जो दिल को थाम लेता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी सुकून में उलझे रहें, तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि बदलाव को समझना बहुत जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि जिंदगी स्थिर नहीं है। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हमें स्वयं को भी उनके साथ बदलना पड़ता है। और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं कि जो ये बदलाव है, इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी जिंदगी में संतुलन बना रहता है।
1: बिल्कुल मंदाकिनी जी। और देखिए, यादों की बातें करते करते हमारे पास अभी अंतराल का भी समय होने वाला है, तो अंतराल के बाद फिर हम सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबकी यादें साझा करेंगे। तो लेते हैं एक अंतराल।
0: ठीक है।

अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो हम लोग बात कर रहे थे यादों के बारे में। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बारह खड़ी और अंक लिपि लिखा करते थे और

0: अब आज उस समय की यादों सजोते हुए स्मार्टफोन और को दिल में बसाकर मैसेज भी लिखते हैं, क्योंकि पुरानी यादें हमें सुकून, शांति और खुशी देती है, वर्तमान की भागदौड़ में ऊर्जा देती है। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें समय के साथ हो रहे बदलाव को भी पल पल समझना और अपनाना होगा, नहीं तो जीवन में हम पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी यादें इन्होंने जोड़ दी अपने संदेश में।
1: और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादें जीवन की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं। कठिन समय में वही यादें हमें सुकून देती हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं। लेकिन हमेशा यादों में ही खोए रहना ठीक नहीं होता। यादों को दिल में संजो कर रखें, लेकिन वर्तमान को पूरे मन से जिएं और आने वाले बदलावों का खुले दिल से स्वागत करें, क्योंकि सुंदर यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और सकारात्मक बदलाव हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यही जीवन का संतुलन भी है।
0: और एक साथी लिखती है कि यादों से सुकून कहाँ पर, अब तो हर दर्द की सीमा पार है। जो यादों में थे वो ही मुस्कुराते मिलते हैं, सामने है जो बस वो तो एक झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं। यादों का सुकून आज भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाए आप तो हमें रास्ता उसका दिखा दीजिए।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला 12 खड़ी बहुत ही प्यारा लिखा है, जिसे आपने शायद पढ़ भी दिया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों से सुकून कहाँ, अब तो हर दर्द की सीमा पार है। जो यादों में थे वो मुस्कुराते मिलते हैं, सामने हैं। अच्छा, ये भी आपने बता दिया है कि हमारे श्रोता कहते हैं कि जो सामने लोग मिल रहे हैं वो हमें झूठी मुस्कान के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं है, हम सखियां तो आपसे सच्ची मुस्कान के साथ मिलती है हमेशा, है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादों में सुकून तो सच में बहुत मिलता है। कितनी सारी पुरानी बातें हैं जिनको हम हटाना नहीं चाहते हैं, और बच्चे कहते हैं अभी हम हटाइए दूसरा लाइए, और ये एक माया है जिससे लगाव मन में रहता है, उसे हटाना नहीं चाहता। फिर उसको जब छोड़ते हैं नई चीज आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: तो चलिए इन्हीं यादों के साथ एक सुन लेते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: बहुत अच्छा गीत सुनवाया भी आपने। यादों का मेला तो हमारे साथ लगा ही रहता है।
1: जी
0: और हमारी श्रोता लिख भी रही थी कि वो जब अलमारी खोलती हैं और पुराने कपड़े देखती हैं, बहुत सारी चीजें जो अलमारी में पड़ी हैं वो उनकी यादों में सजीवी, और फिर वो खो जाती हैं यादों में। अलमारी खोलती कई देर हो जाती है, उन्हें लगता है कि अरे मैं तो कहाँ खो गई। तो इस तरह से भी हमारे जीवन में बहुत बार होता है कि पुरानी चीजें हमसे छूटती नहीं है।
1: बिल्कुल। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत मंदाकिनी जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी के बारे में। आज सखी विशेष के अंतर्गत हम स्वाति लोढ़ा जी के बेहद जो प्रतिभाशाली बहुमुखी प्रतिमा की धनी और सफल व्यक्तित्व की महिलाएं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी, PhD शिक्षाविद, लेखिका, सामाजिक उद्यमी और कारपोरेट प्रशिक्षक होने के अलावा आप जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संस्थापक निदेशक और JNU में प्रबंधन संकाय की डीन और मुंबई स्थित AIMSR आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च की निदेशक भी रह चुकी हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की हम बात कर रहे हैं। इस संस्थान को देश के शीर्ष 10 उभरते 20 स्कूलों में स्थान मिला है, और इसके बाद वे प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नेतृत्व विभाग में भी प्रमुख बनी हैं। और डॉक्टर स्वाति की बात जब चल रही है तो उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक पहलों की संस्थापक वो रही हैं। PD प्राइवेट लिमिटेड, इनकी स्थापना उन्होंने स्वाश PD प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना उन्होंने 1997 में की थी। और ये संस्था युवाओं को पेशेवरों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं।
1: इसके अलावा लाइफ लेमोनेट के आप संस्थापक भी हैं और ये उनके प्रशिक्षण एवं कोचिंग की पहल है और वे नेतृत्व, पेरेंटिंग, व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल और पर कार्यशालाएं एवं सेमिनार आयोजित करती हैं। उनके उल्टा स्कूल, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के सक्रिय, सार्थक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए शुरू की गई उनकी एक सामाजिक पहल है। वर्तमान में भी वे एक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने 10,000 से अधिक कॉरपोरेट अधिकारियों और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर स्वाति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिसमें शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और जीवन के क्षेत्र में सक्रिय योगदान, देश भर में छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों और कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए प्रेरक व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
1: जी, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, संवाद कौशल और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देना, लेखन के माध्यम से भी जीवन मूल्यों, प्रेरणा और सफलता के सूत्र साझा करती हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा की बेस्ट सेलर पुस्तक डोंट रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर सेल्फ, और साल 2020 में इन्होंने अपनी स्व सहायता पुस्तक कम ऑन गेट सेट गो लिखी, और कविता से गद्य में जो है कदम भी रखा, और इस पुस्तक का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है, और इसे भारत सरकार द्वारा 2002 में राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
1: इसके साथ ही इन्हें वीर दुर्गादास पुरस्कार 2009 में, सूर्यदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 में, भारत गौरव पुरस्कार 2016 में, JITO बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में, टाइम्स पावर वुमेन पुरस्कार 2019 में और ग्रोथ बिट्स वुमेन आइकॉन पुरस्कार 2021 में मिला। आपके पति शैलेश लोढ़ा जो एक कवि और अभिनेता लेखक भी हैं, और जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का मानना है कि सफलता केवल अच्छी शिक्षा से नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलती है। वे युवाओं को अपने सपने पर विश्वास

रखने, चुनौतियों से सीखने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। तो ऐसी सफल महिला से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम लोग बढ़ते हैं एक गीत की ओर।

0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उफ घरों में सामानों की उठाई धराई के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब पहले का समय होता था

0: मंजरी,
1: जी
0: आज भी लगभग यही होता है, लेकिन कुछ अंदाज तौर तरीके बदल गए हैं। उठा धराई के काम का कहीं अंत तो होता नहीं। सुबह होते ही घर की महिलाएं या घर के लोग जो हैं, घर के सामानों की उठा धराई में ही लगे रहते हैं। उनके दो हाथ 10 के बराबर हो जाते हैं। जिधर से निकले वहीं से सामान को झाड़ना पोछना सही से रखना शुरू कर देती हैं, खासतौर से महिलाएं। जो सामान जहां से उठाया वहीं रख दिया। परिवार में सबको समझाते हुए वो थकती नहीं कि वे सभी चीजें सही समय पर रखें, मगर भला किसी के कान में कोई असर नहीं पड़ता, यानी जू तक नहीं रेंगती।
1: और एक समय था जब घर के छोटे बड़े दोनों तरह के घर हुआ करते थे मंदाकिनी जी, लेकिन सलीका बड़ा होता था। घरों में हर चीज अपनी जगह तय होती थी। दादी अम्मा कहती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब यही छोटी छोटी सी आदत घरों को व्यवस्थित भी रखती थी और समय भी बचाती थी। पहले घरों में रसोई में तरह तरह के डिब्बे हुआ करते थे, आपको याद होगा है ना, और उनमें रंग से हम पहचान जाते थे कि अरहर की दाल के जो है वो है डब्बा है वो उसका ढक्कन जो है वो हरे रंग का है। चावल के डिब्बे का नाम बिगड़ चुका है, घिस चुका है, और चीनी के डिब्बे का ढक्कन चूहा उतर गया है, लेकिन डिब्बा नहीं बदला क्योंकि चींटी जाने की जगह नहीं उसमें हो पाई थी, है ना। तो जब माँ या दादी की रसोई कितनी भी उनकी छोटी सी दुनिया जैसी होती थी, आंख बंद करके भी वो बता देती थी कि चाय की पत्ती वाला डिब्बा दाईं तरफ तो दूसरे खाने में रखा है और जीरा उसके ठीक पीछे। सच पूछिए तो मंदाकिनी जी, उस जमाने में डिब्बे भी शायद अपनी जगह छोड़ने से डरा करते थे, है ना। और कोई बहू भला अम्मा की धराई को इधर उधर कर भी देना तो डांट पड़ने के आसार बन जाते थे, बल्कि क्या है कि पढ़ ही जाते थे।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका हम सभी कहना भी मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जैसा कि आज बच्चे भी चिल्लाकर माता पिता को डांट देते हैं, यूं कहें कि टोक देते हैं कि क्या मम्मी आप रोज शोर करती हैं या क्या पापा, है ना। तो पहले अनुशासन होता था, और सबसे मजा आता था जब बक्सा जब हम खोलते थे, अम्मा का संदूक खुलता था और कोठरी में अम्मा अपने उस बड़े से बक्से को संवारती थी। बच्चे फुदकते कंधे पर लटक जाते थे या पास में बैठकर उनके सामानों को निहारा करते थे और देखते थे कि दादी अम्मा का क्या खजाना है। ऊपर करीने से जो करीने से तह की हुई साड़ियां होती थी, उनके बीच में नीम की सूखी पत्तियां जो आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं, और कहीं कपूर की हल्की सी खुशबू होती थी, और अम्मा की पल्लू में डिबिया बटुआ छुपा लेती जिसमें उन्होंने एक एक पाई जोड़ी होती थी। तो इस तरह का नजारा हमें याद आता है आज भी।
1: बिल्कुल। और उस बक्से में ना जाने कितनी सारी चीजें निकलती थी, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की सोने की सुपारी और चांदी की तश्तरी, कोने मुड़े हुए टूटे, और दादा का खत भी उसमें होता था मंदाकिनी जी, और पोटली में पुरानी आरती संग्रह, दुपट्टे में लिपटा श्वेत श्याम फोटो का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम, और उसकी यादों में खो जाती थी, और बच्चे पूछने लग जाते थे ये कौन वो कौन, यानी ये भी उठाई धराई का एक हिस्सा होता था। जब संदूक खुलता था तो उसमें यादों में ही आदमी खोया रहता था, व्यक्ति खोया रहता था। और अब अम्मा जो थी अपनी साड़ी के पल्लू में संदूक की चाबी बांध कर रखती थी, कभी कमर में खोस ली थी, और कभी अगर कोई पूछ भी बैठे कि अम्मा चाबी कहाँ है तो वो मुस्कुरा कर यही कहती भाई तुम्हें उससे क्या काम।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा,
1: ये सब बातें भी उस समय बेहद याद आती हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही नजारा होता था जो आप अभी पेश कर रही हैं हमारी सखी और सखियों को। सूती बनारसी रेशमी साड़ी तो कहीं चमकी ले गोटे का गोला, जिसकी जो है जरी पीली पड़ चुकी होती थी, शादी के लहंगे से निकला हुआ, वो भी संजो कर रखा होता था। छोटी पोटली, 2-3-5 के सिक्के, बिछिया की कई जोड़ियां, घिसी हुई टूटी पायल जो शायद किसी को बनवाने को तो नहीं बोल पाई, एक संकोच मन में रहा होगा अम्मा के, और या अब नई मिल गई होगी, नई पहन ली होगी कि कभी इसको ठीक करवा के फिर से पहन लूंगी। और कंगन मोतियों की मालाएं जो थी, कजरोटा, शीशा कंघी, दुर्जनिया तंबाकू का डिब्बा और उसमें धरे सूती धागा, और वो सुई बटन हुक न जाने क्या क्या, मतलब कपड़ों को धूप दिखाई जाती थी, छत पर जाकर कपड़े सुखाए जाते थे, बक्सा झाड़ा जाता था, उन्हें फिर से धरा जाता था, और इसी में पूरा समय गुजर जाता था।
1: बिल्कुल, और कितनी सारी यादें पास चली आती थी। और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों को धोना, सुखाना, धूप दिखाना, रजाई गद्दे धूप में डालना, पलटना, फिर वापस धरना, घर भर के कपड़ों की सिलाई ठीक करना, अलमारी बक्से जमाना, यानी गर्मी आने से पहले ही वापस इन ऊनी कपड़ों को समेटना, और पापड़, चिप्स, कचरी, जाने क्या क्या बढ़िया है, इन सबको बनाना, और बारिश से पहले पीवे भरकर सब रख लिया जाता था, और दिन महीने साल साल उसकी उठा धराई के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और सब काम एक अभियान जैसे होते थे, और जैसे लगता था घर आंगन में एकदम मेला लग गया।
0: और किसी के कोई शिकन या शिकायत नहीं होती थी चेहरे पर कि हम थक गए हैं या सारे दिन हम काम ही करते रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं, सब मिलकर घर को संवारते थे। बड़ा प्यारा नजारा होता था। मुझे याद है मेरी मौसी कहा करती थी कि हम गेहूं में तेल लगाकर उसको सुखाए करते थे, फिर उसको डब्बे में भरा करते थे। तो हम पूछते, आप थकती नहीं है? कहती, काहे की थकान, सब मिलकर काम करते हैं। तो घर के सभी सदस्य जानते थे कि

0: कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है और कहाँ मिलेगी, और इसीलिए काम भी जल्दी होता था और बिना कारण जो भागदौड़ हुआ करती है आज के जमाने में वो नहीं होती थी। आले ताखे जिनमें लालटेन, कुप्पी, मोमबत्ती, माचिस रखी रहती थी और लाइट जाने पर हाथ बढ़ाकर जला लिया जाता था उसे, हाथ के पंखे होते थे और खटिया, पलंग, तक के सिराने पर भी वो रखे होते थे।
1: आराम से
0: हाँ
1: रहेगा, मिल जाते थे आराम से, है
0: हाँ
1: ना
0: जैसे ही लाइट गई हमारा हाथ जाता था या
1: जी।
0: दादी अम्मा का, नानी का, और उठाकर पंखा जलना शुरू हो जाता
1: बिल्कुल,
0: था।
1: तो ये भी एक सही, एक सामान को रखने का तरीका था कि एक जगह रखते थे, और घर का बड़ा हो या छोटा, सामान कम हो या ज्यादा, हर चीज का अपना एक ठिकाना होता था। शाम को पूरा परिवार मिलकर घर समेटता था, चारपाई अपनी जगह अखबार तय करके रख दिया जाता था, सिलाई का डिब्बा बंद होकर अलमारी में चला जाता था। सुबह घर ऐसा लगता था जैसे रात भर किसी ने प्यार से उसकी छोटी सी गूंथ दी हो,
0: बिल्कुल
1: एकदम
0: सही कह रही हो मंजरी।
1: जी
0: लेकिन अब आते हैं हम आज के दौर पर जहाँ
1: जी
0: बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया है। कभी चश्मा यहाँ, मोबाइल वहाँ, चाबी किसी मेज पर, रिमोट सोफे के नीचे, मतलब आधा समय कहाँ है सामान, कहाँ है मेरे मोजे, कहाँ है मेरा
1: जी
0: मोबाइल, इसी धुन में जो है पूरे घर में हंगामा बना रहता है आज के समय में।
1: बिल्कुल
0: और सामान ढूंढने में लगभग पूरा समय, ऑफिस को लेट हो जाते हैं लोग बाग, लगता है जैसे घर का हर सामान रोज अपनी जगह बदलने की कसम खाकर बैठ गया हो।
1: बिल्कुल। और बच्चों के कमरे तो बिल्कुल अलग ही होते हैं कि उनमें चाहे जैसा भी सामान रखा हो तो बच्चे चाहते भी नहीं है कि आप उनको समेटिए, वो कहते हैं कि भाई आप रहने दो माँ। और अब तो माँओं का भी धैर्य छूट गया है कि भाई उन्हें लगता है कि क्या करना इनका समेट के, तो फिर फैलाएंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रही, थकी आई है तो खाने में भी समय देना है उन्हें, तो जो उनके लिए अब क्या हो गया, छुट्टी वाला ही दिन उठाई
0: हाँ
1: धराई का हो
0: जो
1: गया है
0: बिल्कुल नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं ना,
1: जी।
0: उन्हें संडे बहुत प्यारा होता है, पता है मंजरी, जब उन्हें कोई रविवार को बाहर बुलाता है तो वो जाना पसंद नहीं करती हैं क्योंकि पूरा दिन वो संडे का इसी काम में बिताती हैं। तो आज सुविधाएं बढ़ गई हैं, सामान भी इतना बढ़ गया है घर में, दुनिया भर की अलमारियां, दुनिया भर के
1: बिल्कुल
0: हमने सामान उठा के घर में भर लिए हैं, और कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर ये आवाजें लगाने का सिलसिला है, कभी खत्म नहीं होता, भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा
1: जी,
0: पेन कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ
1: यानी
0: है
1: कहने का
0: ना।
1: मतलब ये कि जो उठाई धराई का जो काम था वो उस समय महिलाएं पूरे दिन भर इसी में लगी रहती
0: लगी
1: थी, और
0: रहती
1: कोई
0: थी
1: शिकवा शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के समय में है कि भाई अगर कोई आपका कर रहा है काम तो आप मिलकर हाथ बटाइए, और उठा धराई थोड़ी कम हो गई लेकिन आप अपना सहयोग दीजिए
0: हाँ तो
1: जरूर।
0: मंजरी, इसका अंत में जो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि घर की शांति जो है केवल सुंदर सजावट से नहीं आती बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। जब हर वस्तु अपने स्थान पर हो तो मन भी शांत रहता है और समय भी बचता है और
1: बिल्कुल
0: घर स्वर्ग जैसा लगता है।
1: बिल्कुल, और हम लोग सुनते हैं गीत।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंजरी, अभी
1: फिर
0: हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं कि भाई हल्की फुल्की बातें घर में सामान की जोठा पटक है, बहुत ज्यादा रोचक है ये विषय। जब हम घर में किसी सामान को एक नई जगह से सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा भी आता है, या कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, इस सामान को इस जगह पर रखना है, इस जगह पर नहीं रखना। इसमें परिवार वालों के अलग अलग मत हो जाते हैं, सबकी अलग अलग मर्जी होती है, किसी को वो सामान यहाँ जचता है, किसी को वहां जचता है, मुझे यहाँ मजा आ रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा झगड़ा होने लगता है लेकिन मजेदार होता है। और लास्ट में सामान जहाँ पर भी रखा जाता है वो देखना पड़ता है कि अक्सर गृहिणियों की पसंद ही होती है कि लास्ट में घर की जो महिला है,
1: हाँ।
0: मुख्य महिला, वो क्या चाहती है, वहीं पर सामान रखा जाता है।
1: और एक साथी लिखते हैं, जहाँ घर जहाँ लोग रहते हैं वहां रखी चीजों की जगह बदलती रहती है, कभी सफाई के लिए, कभी सजावट के लिए, और कभी बदलाव के लिए। इससे घर की सफाई होती है, बेकार वस्तुओं की पहचान होती है और घर अधिक व्यवस्थित बना रहता है। साथ ही इस बहाने से कई पुरानी खोई चीजें मिल जाती है जो भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा कर देती हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखती है कि घर के सामान की उठा पटक कई बार लगता है, अच्छा ये चीज यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, अच्छा ये सामान यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, और ऐसा करते करते फिर चीज की सही जगह कौन सी है ये भी भूल जाते हैं।
1: और एक लिखते हैं कि उफ, घर में सामानों की उठा पटक और घर में गूंजती आवाजें, जरा ये अलमारी इधर सरका दो, वो डिब्बा ऊपर रख दो, अरे ये सामान यहाँ किसने रखा। बस यहीं से शुरू हो जाती घर में सामानों की उठा पटक। इसी बीच अचानक कोई पुरानी तस्वीर, खोया जरूरी सामान या किसी अपने का लिखा हुआ पत्र मिल जाए तो चेहरे की थकान पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस उठा पटक में कभी चाबी नहीं मिलती, चश्मा गायब हो जाता है या फिर अन्य कोई जरूरत की चीज, फिर जवाब मिलता है अभी तो यही रखा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन उठा पटक करते समय धैर्य भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और खत है हमारे संदेश के रूप में कि सामान की उठा पटक का मौसम आने ही वाला है, ये कहीं आ ही गया है, यानी त्योहार का मौसम, अगस्त माह से तैयारियां आरंभ हो जाएंगी, और इसमें शामिल रहेगा घर की सफाई, रंग रोगन, पर्दे बदलना, इन सबको करते करते कुछ तो सामान की उठा पटक होगी ही, कुछ शरीर की भी, कभी गिरते हैं, कभी सामान उठाते हुए लड़खड़ा जाते हैं, कभी बड़ों की आवाज आती है, संभाल कर रखना भाई, गिरना नहीं गिराना नहीं, कहीं आवाज आती है अभी मजा, अभी यहाँ से हटा दो, बस यही करते करते कुछ टूट भी जाता है, कुछ बिखर भी जाता है।
1: ये भी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, और इसी की तरह देखिए मुहावरों की दुनिया में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, जो हमने आज दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर। तो इस पर लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया भी अजब गजब की है, जहां हमें गागर में सागर जैसा अनुभव होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहाँ नोचने का अर्थ झटकने से खींचना, उखाड़ना या खरोचना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय क्रोधित होकर दूसरों पर गुस्सा निकालता है, उसी पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मेरी बिल्ली और मुझे से म्याऊं। जी
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मुहावरों की

0: मैं बड़ी निराली है। अभी हाल ही में मैं एक कहानी संग्रह की समीक्षा लिख रही थी। क्या बात है। और उसमें कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है और कुछ ऑफिस के कर्मचारी उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। मैं उस एक जगह पर अटक गई और फिर वहीं बड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इसी मुहावरे का प्रयोग किया और इस मुहावरे के प्रयोग से मेरी समीक्षा को तर्क मिल गया, क्योंकि साथी कर्मचारी जब हर तरह से असफल हो गए तो नायिका के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाने लग गए।
1: तो चलिए एक पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे और संदेश पढ़ते हैं।
0: चलिए।

0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी असफलता या लज्जा पर गुस्सा होना और उस झुंझलाट को किसी निर्दोष पर या व्यर्थ की चीजों पर निकालना। मुहावरे की उत्पत्ति और भाव, जब तक कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन चूहा भाग जाता है, बिल्ली पकड़ी नहीं पाती उसे, पकड़ नहीं पाती, शर्मिंदा होकर पास खड़े खंभे पर अपने नाखून गड़ाने लगती है। इस स्थिति को इंसानों की इस मनोदशा से जोड़ा गया है, जहां व्यक्ति अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मन देता है और बेमतलब का गुस्सा दिखाता है। वाक्य प्रयोग से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ कुछ उन्होंने उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे हम अपने परीक्षा पेपर में देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखकर हमें भेजे हैं।
1: और इसके साथ ही एक लिखते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी ही गलती होने पर खुद पर शर्मिंदा होना और गुस्सा करके किसी पर भड़ास निकालना या किसी चीज को नोच डालना, इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ एक साथ लिखते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो, ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
0: वही एक श्रोता ने लिख रहा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, अपनी सफलता या शर्मिंदगी के कारण गुस्सा होना और उस झुंझलाहट में दूसरों पर गुस्सा निकालना, यानी बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकामयाब हो जाता है या उसे अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपना गुस्सा या खींच किसी और चीज पर निकालता है। घर में भी अगर बड़ों का मन किसी बात पर खराब है तो अपनी खींच बच्चों पर हम निकालते हैं और अपने से छोटे पर भी हम निकालते हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
1: और एक साथी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कोई गलती पर शर्मिंदा ना होना गुस्सा किसी पर उतारते हुए क्रोधित हो जाए, ऐसी ही कहावत गुजराती कि लाजवाने बदले गाजवू, शर्मिंदा ना होकर गुस्सा करना, इन्होंने लिखा है।
0: जी, वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में और अन्य संस्थानों में देखा जाता है कि वहाँ उच्च अधिकारी अपनी खुद की असफलता के कारण उसे छुपाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो फिर अपने घर पर बेचारी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। इस मुहावरे का चरितार्थ करते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जो कि बहुत ही गलत बात है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार में खिसियानी बिल्ली वाले बात हमेशा ही होती है। रिश्तेदारी में ही दो बहनों में कुछ मनमुटाव हो गया, जबकि उसमें से एक बहन बैठने पर कुछ कुछ बात बोल रही थी, दूसरी बहन को लगा कि ये उन लोगों की बात हो रही, उस समय तो कुछ नहीं बोली, बाद में वो हम ही लोग से उलझ गई और हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे इतनी ये आग बबूला क्यों हो रही है। सबके सामने कुपचिकी चिल्लाई, बाद में जब उसे पता चला तो हम सब में से ये कहकर खूब हंसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
0: और एक आखिरी और है संदेश, वो लिखते हैं कि पुराने समय में घी दूध मक्खन को छत पर रस्सी का छीका बांधकर सुरक्षित रखा जाता था ताकि बिल्ली उछलकर भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब बिल्ली वाकई में चढ़ने के लिए खंबे नोचती है तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचती तो फिर वो खंबा नोचने लग जाती है।
1: तो चलिए इसी के साथ सुन लेते हैं।

0: तो मंदाकिनी जी, देखिए बातें करते करते प्रोग्राम एकदम समापन की ओर आ गया है, तो चलते हैं, लेते हैं सबसे विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: Thank you.

0: आज है जाने माने गीतकार आनंद बख्शी का जन्मदिन। वो गीतकार जिसकी गीत यात्रा 1958 से शुरू हुई तो पूरे 44 साल चली, यानी तकरीबन 5 दशक का सफर। इस सफर में आनंद बख्शी के गानों ने कभी हमें रुलाया,
1: जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई,
0: कभी थपकी दी और बहलाया।

0: हमारी खुशियों की साझेदारी की।
1: जय जय शिव शंकर, माता लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया।
0: कभी इन गानों ने हमारी मोहब्बत का इजहार

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आया हूँ। 1950 में बख्शी साहब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली में गए थे
0: जी,
1: उन्होंने वॉइस टेस्ट दिया था
0: उद्घोषक बनने का।
1: हाँ जी, और वो फेल हो गए थे।
0: बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और खुद से एक वादा किया था जो सारा मामला है। पर सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है। एक और कनेक्शन है, जब उनका पहला गाना उन्होंने रेडियो पर सुना था, यहीं से बातें शुरू कर।
1: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रॉन्ग है या राइट, राइट राइट राइट,
0: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
1: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
0: जी
1: एक गली में, दिल्ली में घूमते घूमते, अरे ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन का सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे रेडियो पर
0: जी,
1: वो उस दिन पूरा हुआ।
0: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है, उसके अलावा एक और कनेक्शन है, आप जानते हैं क्या? वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
1: यस, और एक और कनेक्शन है।
0: अच्छा,
1: कि उनकी जो जीवनी है
0: जी,
1: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने किया।
0: जी, वो भी ये मेरा सौभाग्य है,
1: तीसरा कनेक्शन बन गया।
0: जी जी बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं, बख्शी साहब कहाँ पैदा हुए थे और वो जो खानदान था वो किस हैसियत का खानदान था, वहाँ लोग क्या क्या काम किया करते थे?
1: तो बख्शी साहब पैदा हुए थे भारत में, फिर उसका विभाजन हुआ। भारत में रावलपिंडी में पैदा हुए थे, 17 साल उन्होंने रावलपिंडी में गुजारे, और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया
0: जी।
1: तो 1947 में वो इंडिया आए,
0: सरहद के इस पार आ गए।
1: हाँ, क्योंकि उनके 17 साल थे, वो उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई
0: जी,
1: मेरे देश में,
0: बिल्कुल।
1: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता।
0: क्या प्यारी बात।
1: अगर मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है,
0: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है।
1: हाँ,
0: उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
1: हाँ, पवन चले पुरवाई।
0: हाँ,
1: क्योंकि जिसे कि हमारे खुले गांव में,
0: हाँ,
1: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन।
0: बिल्कुल,
1: पवन का

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। उन्होंने
1: वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे रावलपिंडी की, और जिंदगी भर उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबर्ड में उस बॉटल के अंदर।
0: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है मेरे देश में। पवन चले पुरवाई में बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका प्यार था।
1: अमवा की डाली पे गाय मत वाली क्या।

0: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी, उसका
1: पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
0: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
1: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
0: जी,
1: लेकिन जन्म तो वही हुआ था ना।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना। भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में, और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी उन्होंने ये कविता लिखी थी। कविता का नाम है
0: पिंडी की मिट्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है। एक किताब है बख्शी साहब की कविताओं की, जिसमें वो संग्रहित
1: मैं जादू हूं चल जाऊंगा
0: जी,
1: उसमें लिखी मेंशन की हुई है।
0: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटी है। जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीजें।
1: क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे।
0: और ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
1: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
0: पंजाब प्रांत,
1: पूरा प्रांत, अनडिवाइडेड पंजाब का जो जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है अभी कुछ 3-4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड।

0: फैमिली जिनके पास साइकिल थी, तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस,
1: सब
0: कि इधर
1: पहचानते
0: ये
1: थे।
0: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये,
1: क्या कहलाती है? मोहियाल
0: मोहयाल, मोहयाल। हाँ, पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहयाल्स। तो
1: जी।
0: हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव्स हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में हैं, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन।
1: जी जी
0: हाँ,
1: जी
0: वी वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजरों का काम होता था।
1: खराब माना जाता था।
0: हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, तो वहां पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी हफ्ते में 2-3 दिन। क्यों? पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
1: अरे गजब।
0: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे और लोगों को सीट बताओगे, सीट कहाँ बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में, तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने में नहीं वाले। तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा। तो जिस
1: वाह।
0: दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
1: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त।
0: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे, और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको।
1: जी।
0: और वो करीब कुछ 12-13 साल की उम्र से ही नज़्में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे, और उसपे एक्टिंग भी करते थे,
1: वाह वाह
0: क्योंकि
1: वाह
0: जब मोहल्ले में रामलीला होती थी
1: जी।
0: तो उनको भी पकड़ा जाता था डायलॉग,
1: अच्छा
0: मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शी साहब टीनेजर, उनको बुलाया जाता था, अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
1: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
0: हाँ, फिल्में देखते हैं तो पता चलता है ये कहाँ बनी है, बंबई से बंबई में बनती है। अच्छा, बंबई किधर है?
1: समंदर के
0: इतने
1: पार है।
0: समुद्र के पार है। तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं,
1: हाँ
0: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है, तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
1: एक छोटे से बच्चे को यह
0: हाँ
1: समझ में आ गया कि उसकी
0: हाँ
1: मंजिल बंबई है।
0: हाँ तो जब वो 14 साल के थे, उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज देवर अ मार्शल क्लैन
1: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
0: कैडेट, यू द नेवल कैडेट। और उनकी भर्ती हुई दो शिफ्ट थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिफ्ट में पढ़ाई जाती थी नेवल की जो पढ़ाई है।
1: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
0: हाँ, 1942। तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई। तो जो म्यूटिनी हुई वो बम्बई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट,
1: ये जो बगावत थी नेवी की,
0: बगावत।
1: ये
0: हाँ,
1: बहुत मशहूर है
0: बहुत
1: और
0: मशहूर है,
1: इसका
0: बहुत।
1: इतिहास में दर्ज
0: बल्कि
1: है
0: ये
1: इसका
0: पहली
1: नाम।
0: बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पर राज नहीं कर सकेंगे,
1: जी
0: क्योंकि देखिए आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके कू बन जाता है, लेकिन बी अ
1: हाँ
0: कू,
1: बिल्कुल
0: तो दैट
1: बिल्कुल
0: इज व्हेन दे रियलाइज यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा। तो
1: जी।
0: उन्होंने उसमें भाग लिया था। और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे, उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है, और वो शिप में घुमाते हैं, तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा।
1: अरे
0: तो
1: अरे अरे।
0: उनका जो गोल था वो देश के लिए नहीं था नेवी
1: हाँ
0: ज्वाइन करना, वो जो देश के लिए गोल था वो जब म्यूटिनी हुई तब पैदा हुआ, वहां उनको एहसास हुआ, क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई, तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था,
1: क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी
0: बहुत कम थी।
1: जी।
0: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सच ए पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता। तो जब भी इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया, डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए। तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा, तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है। तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट,

0: तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं।
1: जी
0: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूं ब्रिटिश नेवी का, तो
1: बिल्कुल,
0: मैं तुम्हें रेस्टिकेट करूंगा नेवी से। तो उनको रेस्टिकेट किया गया, यू हैड टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ, इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की, सिग्नल्स।
1: इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
0: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है, और एक
1: जी
0: जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है।
1: जी
0: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट,
1: जी
0: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकंड लाइफ दी कि तू जा, देखो
1: जी
0: मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में,
1: और छोड़ दिया, सबसे
0: छोड़ दिया।
1: इंपॉर्टेंट
0: हाँ,
1: बात।
0: यू आर रेस्टिकेटेड विद डिसऑनर।
1: अब जब
0: फॉर
1: घर आए तो क्या हाल हुआ?
0: घर आए तो फिर नेचुरली तो फिर तो इमिजिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का। तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा गया गुरुकुल, जम्मू के
1: जी
0: पास में गुरुकुल था, तो वहां गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे छोटा मोटा काम करने के लिए, पैसे नहीं मिलते थे लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी। तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो। और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन, ये तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का अब ये सपना था कि हम बंबई जाएंगे कुछ काम करेंगे। बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
1: और बाकी
0: बाकी
1: दो
0: दूसरों का
1: बंदे
0: कुछ था, उनका कोई सपना था। तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
1: अरे बाप रे,
0: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बॉटल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया। और जो से पैसे मिले वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहाँ जाएगी, यहाँ से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से बम्बई पहुंच जाएगी, और
1: हाँ
0: हम घर में नहीं बताएंगे। अभी वो चले गए, पहुंच गए, अपना सामान वामान बेच के सब पैसे वैसे जेब में, जो भी 5, 10, 6 रुपए, 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने दो तीन एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन। 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त,
1: अरे अरे अरे,
0: घर चले गए वापस, घर चले गए वापस। तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारी किताबें बेच दी इसने, तो कल स्कूल है,
1: फिर
0: स्कूल
1: पिटाई
0: जाने के लिए
1: हुई।
0: सब जबरदस्त पिटाई हुई।
1: अरे
0: तो
1: अरे,
0: उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहां से निकालो, ये यहाँ खराब हो गया गांव में,
1: यहां गलत संगत हो
0: गलत
1: गई।
0: संगत होगी इसकी,
1: हाँ
0: इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बंबई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के। तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी और साथ में
1: स्ट्रिक्ट लोग हैं
0: डिसिप्लिन,
1: वहां पर।
0: स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक। तो वहां ये सुधर जाएगा। तो भेजा
2: मुस्ताफा।

0: गुरुकुल ज्वाइन किया तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था और टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, हाँ, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना,
1: करें।
0: ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें। तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी, लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्होंने वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे, कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटीवीटी कराता था। तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है अपना, हमारी जो कल्चर है उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो है ही नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
1: अच्छा,
0: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा,
1: दूध मिलेगा।
0: हाँ, फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विद मलाई ऑन टॉप। और वो जमाने के ग्लास इतना बड़े बड़े रहते थे,
1: बिल्कुल। और वो पंजाबी व्यक्ति,
0: हाँ,
1: दूध का
0: शौक, हाँ,
1: मलाई,
0: गांव में पैदा हुए हैं
1: जी,
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे, वो रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्श साहब ने देखा, यार ये तो खूब पिटाई हो रही है, लेकिन यार धूप भी मिल रहा है। तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी न किसी के पीछे छुप जाते थे,

0: ताकि रिंग में ना आना
1: हाँ वो
0: पड़े।
1: रेंज में नहीं आया, आंखों आंखों से आंखें नहीं मिल सके। तो 3-4 महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए,
0: हाँ।
1: लेकिन एक दिन उस अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला यार तुम कौन हो, हैव यू ज्वाइंट न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर? इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में? वो सर 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए,
0: अभी तक मेरे हाथ से
1: अभी तक
0: पिटा
1: मेरे हाथ नहीं
0: नहीं।
1: लगा ये। उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने,
0: अरे बाप
1: अरे
0: रे।
1: जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को।
0: हाँ
1: बख्शी
0: हाँ
1: साहब अगले दिन भाग गए वहां से।
0: अरे अरे
1: सुबह उठे, सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना,
0: जी
1: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो। तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से और घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। और तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया,
0: हाँ
1: तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
0: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा।
1: हाँ तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला है, और क्योंकि वो दरोगा जी थे वो,
0: हाँ
1: तो उनके हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजिशन बट ऑल्सो मैन ऑफ पावर, कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज उस हिसाब से। तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहां से। तो जो भी हाथ लगा, बर्तन बर्तन,
0: जेवर
1: गहने वहने, हाँ खाना, जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और पंजाब जेल, तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए। देवर 2-3 फैमिलीज, देवर वेरी प्रिविलेज पीपल, और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए फ्रॉम रावलपिंडी। पता नहीं कि बीच में के रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डो नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप। और बहुत लकी थे क्योंकि ऐसी लाखों कहानियां जो लोगों का लूटा
0: ट्रेन में
1: गया,
0: आए,
1: रेप हो
0: दंगों का
1: गया,
0: शिकार
1: मर्डर हो
0: हुए।
1: गया, तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ। तो जो भी वो उनका हाथ लगाओ, और घर की चाबी बाजू वालों को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे, क्योंकि
0: इतना यकीन था।
1: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे। तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी देके आ गए। तो यहाँ कुछ 4-5 दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली। तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया। तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन, तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है हमारे कल्चर में, तो यही ज्वेलरी गोल्ड लेना, क्योंकि 5 बहन है, और ही वॉज ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड 2 ब्रदर्स फ्रॉम द सेकेंड मदर।
0: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
1: हाँ सौतेली माँ। तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली। तो सबने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े। तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि तो उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, कि सुबह होने से पहले हमें यहां से निकल जाना है। तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाबूजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ क्या उठा के लाया, ये क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में रातों रात वहां से जब निकले। अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ,
0: तो वो तस्वीर उनके लिए
1: वो
0: बहुत मायने
1: तस्वीर ही
0: रखती
1: उनकी
0: थी।
1: मेमोरी थी। कि ये
0: जी
1: तो उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ, यू नो, जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि क्या है कि उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकेंड, तो नेचुरली एक कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कि कम मिलता है, और हर एक बच्चा अलग होता है, कोई बच्चे को लगता है कि मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो। तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा।
0: गजब, क्या गजब की बात
1: तो
0: बोली।
1: मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूँ, उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी
0: वाह,
1: प्यारी है ओ माँ।

और कोई नहीं लिख सकता ऐसा गाना। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ लड़ते थे, क्योंकि हम हर बच्चा मम्मी के साथ लड़ता है, क्योंकि मम्मी एक है जो हमारे नॉनसेंस ले लेती है ना, बाकी तो बाप तो सीधा उठा के दो चांटे लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, लड़के लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है। ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी इनका एक रोब होता है बहुत हमारे घर में,

0: बिल्कुल
1: मम्मी फ्रेंड होती ना,
0: यस बिल्कुल बिल्कुल
1: हम दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे, तो हमेशा डैडी हमें बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपने मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है,
0: क्या
1: हमसे
0: बात है,
1: पूछो जिनकी माँ नहीं है माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता।
0: माँ का मोल समझो।
1: हाँ
0: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से वो थी पिंडी की मिट्टी।
1: वो मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो वेयर इट वेंट, मैंने बहुत उसको खोजा, उनके जाने के बाद जब मैंने उनका वॉलेट खोला, मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का एक वर्स मिला मुझे उसमें, एक बॉटल नहीं मुझे वापस मिली।
0: कि उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि। ये कितनी बड़ी बात है
1: हाँ इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे,
0: जी।
1: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे, और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का, और मिट्टी खो देने का, इंसान खो देने का, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जाने कहाँ चले जाते हैं वो लोग,
0: दुनिया से जाने
1: दुनिया से
0: वाले
1: जाने वाले, आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जिया है उसे,
0: उनकी जिंदगी की

0: रावलपिंडी से जुड़ी यादें वो शेयर करते थे, और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
1: जब रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: हाँ, क्यों स्टूडियोज होते थे बड़े
1: हाँ,
0: बड़े,
1: तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में। तो उनका जो लिखाई है वो भले हिंदी है, हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी।
0: जी जी
1: हाँ
0: जी।
1: लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
0: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
1: हाँ, मैट्रिक पास ना, 8th स्टैंडर्ड तक, तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में। तो वहां इंडस्ट्री भी थी, तो वहां भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो वो फिर वापस आ गए थे।
0: जी, पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
1: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पुणे शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप।
0: सरकार ने भेजा?
1: सरकार ने। फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र सूट नहीं किया। दे वॉन्टेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव वही हैं, पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा। तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा इधर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में। तो पुणे से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया। फिर उनको घर दिया गया दिल्ली में, सराय रोहिल्ला, जगह है सराय रोहिल्ला। तो फिर पार्टीशन हुआ अगस्त में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं। तो उन्होंने ही ज्वाइंट इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन एंड टेलीफोन ऑपरेटर।
0: ओके।
1: तो उनका जो कोड नेम था एज अ सोल्जर, क्योंकि सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है
0: जी जी,
1: और टाइप राइटिंग सिखाई जाती है, जो तब की कम्युनिकेशन थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हर ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता था, क्योंकि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर नेम। सो दैट अगर हमारी रिकॉर्डिंग टैप हो रही है एनिमी से, इफ एनिमी रिकॉर्डिंग आवर,
0: तो वो नहीं जान पाए,
1: उनको पता नहीं चलेगा ये कौन बात कर रहा है,
0: बंदा कौन है, उसकी लोकेशन क्या है।
1: तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: अरे वाह।

0: वाह वाह वाह वाह,
1: वाकई में आजाद थे वो।
0: क्या बात,
1: आजाद दिल के।
0: अच्छा, उनकी आर्मी सिग्नल कोर में पोस्टिंग से पहले
1: जबलपुर में पोस्टिंग हुई थी।
0: हाँ,
1: ग्रेजुएटेड फ्रॉम जबलपुर,
0: ट्रेनिंग वहाँ हुई।
1: 3 साल की जो ट्रेनिंग थी वो जबलपुर में हुई, तो उनका जो सर्टिफिकेट है जो मैंने पब्लिश भी किया है किताब में,
0: जी जी,
1: वो जबलपुर का है, वो सिग्नल सेंटर जबलपुर जो आपका गाँव है।
0: बिल्कुल, वहां पर स्पेलिंग लिखी जबलपुर। आज भी आर्मी सिग्नल कोर का जो ठिकाना है वो अभी भी जबलपुर में है, एक बड़ा सा गेट है। और क्योंकि मेरा शहर है तो जब कभी हम वहां से निकलते हैं, जो भी साथ होता है उसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि यहां बख्शी साहब रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के काम में उनको दिलचस्पी होने लगी थी। मैंने उनकी कॉपी दिखी है जो आपने दिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं साइंस के, तो वो देख के ऐसा
1: लेकिन कमाल की बात है, ही वाज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, लेकिन डरपोक नंबर वन। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन।
0: तो वो टच नहीं करते थे,
1: स्क्रू ड्राइवर डालने में भी घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा, हाथ में लगा, शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। ही वाज लाइक दैट।
0: नहीं, लेकिन वो जो नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी उसमें तो क्या सर्किट,
1: सब कुछ, लेकिन
0: बहुत सुंदर राइटिंग में सब कुछ।
1: फोबिया होता है शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था। एक चिपकली का डर, एक शॉक लगने का डर, और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे, और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना, उसको एनालाइज किया गया। वो करीब लेट 1990s में, मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ 2-3 साल पहले, ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूं, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
0: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
1: घर पे भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना। बोलते अभी अब जाना, खेलने के लिए जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, या गोटी खेलने जाना है, या गिती गिती खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे, नहीं नहीं मम्मी आएगी या भाई आएगा, गोगी आएगा तब जाना। तो हम लड़ते थे डैडी के साथ, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं या माय ब्रदर और माय सिस्टर और माय मदर, कोई होना चाहिए, अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूं साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5, और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है भले वो माँ अच्छी हो जो दूसरी आई है, लेकिन वो माँ नहीं है,
0: तो एक अकेलापन आ जाता
1: है। अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट।
0: जी जी,
1: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू।
0: यस,
1: अकेलापन मे नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडनड यू आर हर्टिंग योरसेल्फ
0: कि मेरा तो कोई नहीं है,
1: मेरा तो कोई नहीं है, नहीं मुझे छोड़ा गया है, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो उसको लगता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे, तो वो जख्म था, वो भरा नहीं कभी। इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनी बडी हैज रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: 60s 70s 80s में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रांग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की,
0: हाँ, जो आजकल नहीं है फिल्मों में। आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखा रहे दोस्ती का, तो ये सब है। तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी। एक तो ही फेल्ट लेटर तो वेन ही ग्रू ओल्डर देन ही रियलाइज दैट शी डाइड, बिकॉज शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ। जब सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती
1: जी जी लेडीज की, बिल्कुल।
0: लेकिन वो जख्म जख्म होता है, कोई जख्म बढ़ते नहीं है, हर जख्म नहीं बढ़ता
1: वाला। और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों था?
0: दैट इज जस्ट अ फोबिया। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जंप मारता था 70 रुपए के लिए ज्यादा, हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराट्रूपिंग करें। वो आदमी प्लेन में नहीं चढ़ रहा है, आप सोचो। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कमाल का क्योर दिया हमको। उन्होंने बोला कि आप जब बंबई आए थे ये डर था, इसे नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये डर बाद में आया। कब आया? जब शोहरत आई, शोहरत के साथ डर आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेन में वापस चढ़ना है, अगर आपको लिफ्ट में वापस जाना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी थी 1956 में,
1: स्ट्रगल।
0: ट्रेन में जाना, बस में जाना, कार स्टेशन से वो टिकट निकालते थे फर्स्ट क्लास का, और वो वही ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाते थे, फिर चर्चगेट में जाके समुद्र के किनारे मंडरा पे बैठते थे, जहां वो बैठ के गाने लिखते थे, वहां एक दो घंटा गाना लिखा, दो तीन जो भी मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के। वो जो जिंदगी जी थी उन्होंने
1: उसको
0: 1956 में, उसको रिपीट किया गया ताकि ये डर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो।
1: अरे गजब।
0: तो वो आदमी वापस आएगा, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने। वो इंसान खो गया क्योंकि अब इसके पास गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चर्चगेट जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट पेंटर स्टेशन यार, माय फ्रेंड्स गोइंग ना ट्रेन यार,
1: ट्रेन से जा रहे थे। क्या बात है।
0: हाँ, एक जर्नलिस्ट मुझे, मैं दो तीन जर्नलिस्ट से मिला रहे, हम बख्शी आपको देखते थे यार
1: ट्रेन में जाते।
0: हाँ, क्यों जाते थे?
1: हाँ।
0: तो कभी बैठेंगे तो सुनाऊंगा कहानी।
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत ही कमाल की कहानी।
0: तो हमें अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा।
1: ये बहुत बारीक,
0: तो वो स्पिरिचुअल ताकत वापस आएगी।
1: जी, बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बंबई जा यार, तू बंबई जा यार, यार तू किधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बंबई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वाज अ वेरी सीरियस एटमॉस्फेयर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम कर रहे हो, बिकॉज दैट व्हेन यू जॉइन द आर्मी इट वाज पेट्रियोटिज्म, व्हेन यू जॉइन द नेवी इट वाज मैं बंबई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था उसने रूप लेना शुरू किया। कैसे? उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया। और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटर पे चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सीलेंट राइटर एंड एक्सीलेंट सिंगर एंड ही परफॉर्म्स वेरी गुड स्टेज शोज एंड आई सोनचो कमांडर ऑफिसर कैप्टन रिकमेंड हिम टू एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री टू प्लीज गिव हिम अ वर्क एज अ सॉन्ग राइटर।
1: वो है गजब गजब। यानी एक फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको सिनेमा में काम दो,
0: में काम दो।
1: वाह वाह,
0: वो है मेरे पास चिट्ठी है, मेरे पास रेडीनेस, वो संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखाते थे बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने मुझे भेजा है, अब यहाँ क्या उसकी कीमत।
1: हाँ, इंडस्ट्री वालों को थोड़ी पता है
0: क्या कीमत है कैप्टन की।
1: जी, आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे बड़े खाने के दिन?
0: प्लेस, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी, और एक्टिंग भी कर लेते थे। यू आर द मेन स्टार ऑफ बड़ा खाना शोज।
1: और ये
0: एनुअल
1: इम्पोर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के उनकी धुन पर गाने लिखना शुरू कर दिया।
0: हाँ, जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी
1: जी,
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था, 28-29 टाइम्स। क्यों देखा था? ताकि वो कहानी को घोल के पी जाएं, और फिर उस फिल्म के गाने लिखे थे पूरे।
1: ये उनका रियाज था,
0: ये उनका रियाज था। वीकेंड पे जो छुट्टी मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरक्स में उसी फिल्म के पूरे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रिकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट, पहली बार उनका जो सपना था ना वो कॉन्क्रीटाइज हुआ कि मैं यहाँ के लिए नहीं बनाऊ, मैं वहां के लिए बनाऊ।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी, कैसे मुंबई आए, साल कौन सा था?
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया, सेविंग्स बम्बई 1950, और 3 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए।
1: बम्बई तो शहर ही निराला है।
0: और वापस आर्मी ने को लिया, 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स ने ही उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में बम्बई आए,
0: तीन महीने में
1: वापस चले गए, और वापस आर्मी में
0: हार के, और वो जो टोली ना उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो दे वो वेलकम डेम, उनको बल्कि सिंपथी हुई कि यार बेचारा अपना छोड़ा मुंडा वापस आ गया है, आज को रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया है ना वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमिजिएटली। फिर उनकी शादी हो गई, तो
1: और शादी भी लखनऊ में हुई।
0: हाँ, शादी लखनऊ में हुई।
1: ये लड़की कैसे मिली?
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है, वो रावलपिंडी का था, उनकी गली का, बोला यार तू इधर क्या कर रहा है, तो बोला मेरी तो शादी है। तेरी शादी है? हाँ। तो तू इधर क्या कर, मेरी बहन की शादी है, तो मेरे मम्मी का भाई था वो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ,
0: क्योंकि वो दोनों में अरेंज मैरिज होती थी।
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था?
0: उनकी एक बुआ थी, शी वॉज वो पत्री बनाती थी, जन्म पत्री।
1: अच्छा अच्छा।
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड में, पोस्ट कार्ड हमारे मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में
1: जी,
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाऊजी को, कि मैंने नंद के, नंद उनका घर का नाम था नंद।
1: हाँ, आनंद से नंद,
0: नंद, नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा,
1: बिल्कुल
0: कृष्ण भक्त है वो
1: जी।
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प, और सबसे कमाल की बात है शी इज अ सीमस्ट्रेस ग्रेजुएशन इन
1: सिलाई कढ़ाई, बहुत अच्छा करती है।
0: हाँ, और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है।
1: अच्छा, साइकिल चलाना बहुत बड़ी खासियत,
0: बहुत बड़ी बात थी लेडीज के लिए, गर्ल के लिए। लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई ये तो।
1: वाह वाह वाह वाह वाह। तो बख्शी साहब देखने गए?
0: नहीं नहीं, कुछ देखने होगा ना क्या, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप, देख रहे
1: सीधे शादी तय,
0: शादी तय। और उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
1: हाँ, ये देखिए ये कमाल की बात है। और यही बख्शी साहब ने आगे चल के गाना लिखा, लड़की साइकिल वाली,
0: बी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
1: हाँ।

जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के जन्मदिन पर ये थी उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत।

0: हम बोल रहे हैं देश की
1: 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युववाणी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं को अधिकार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया भी है। जब समाज की आधी आबादी शिक्षित, सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत होगी, तभी देश वास्तविक अर्थों में प्रगति कर सकेगा। आज महिलाएं विज्ञान, शिक्षा, राजनीति, सेना, खेल, चिकित्सा, उद्योग और अंतरिक्ष जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। दोस्तों, यह सिद्ध करता है कि अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकती हैं। फिर भी समाज के अनेक हिस्सों में बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, अशिक्षा और असमान अवसर जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं, और इन चुनौतियों का समाधान केवल कानूनों से नहीं बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव से संभव है। बेटियों को बेटों के समान समान शिक्षा, सम्मान और अवसर प्रदान करना प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। शिक्षित महिला न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को सकारात्मक दिशा भी देती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है और उन्हें अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने की शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार अपनाएं, उनके सपनों को उड़ान देने में सहयोग करें और सुरक्षित वातावरण उन्हें उपलब्ध कराएं। कार्यस्थलों या फिर घर, समान अवसर और समान सम्मान ही सशक्त समाज की पहचान है। जब हर बेटी निर्भय होकर अपने सपनों को साकार कर सकेगी, तब हमारा राष्ट्र अधिक समृद्ध, संवेदनशील और प्रगतिशील बनेगा। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का विषय नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का आधार है।

दोस्तों श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी और सावा हमारे पारंपरिक भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा से रहे हैं और आज बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के बीच इनका महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। इसलिए हमें अपने दैनिक भोजन में श्री अन्न को यानी कि मोटे अनाज को स्थान देना चाहिए। दोस्तों ये अनाज पोषक तत्वों, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और अनेक आवश्यक खनिजों से भरपूर होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। दोस्तों श्री अन्न का नियमित सेवन मधुमेह यानी कि शुगर, डायबिटीज, मोटापा और हृदय संबंधी अनेक समस्याओं के जोखिम को कम करने में सहायक माना जाता है। इतना ही नहीं, इनकी खेती कम पानी में भी संभव होती है, जिससे जल संरक्षण होता है और पर्यावरण की रक्षा में भी सहायता मिलती है। दोस्तों यदि हम स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित श्री अन्न को अपनाते हैं तो इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हमें अपने परिवार, मित्रों और समाज के लोगों को भी इनके लाभों के बारे में बताना चाहिए तथा साथ ही साथ बच्चों में पौष्टिक भोजन की आदत विकसित करनी चाहिए। दोस्तों विद्यालयों, सामाजिक कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से श्री अन्न और श्री अन्न से बने व्यंजनों को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, आप भी जानते हैं। इसलिए संतुलित और पौष्टिक भोजन अपनाना हम सभी की जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। आइए हम सब ये ठान लें कि अपनी थाली में श्री अन्न को सम्मान पूर्वक स्थान देंगे, स्थानीय किसानों का समर्थन करेंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

0: दोस्तों, यह समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और आज के युवाओं के लिए इससे जुड़ना एक आवश्यकता बन चुकी है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बैंकिंग और संचार जैसे लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर लगातार प्रदान कर रही है। दोस्तों, इसीलिए हमें केवल इसका उपयोग करना ही नहीं बल्कि इसके कार्य करने के तरीके और जिम्मेदार उपयोग को भी समझना चाहिए। दोस्तों, युवा यदि AI से संबंधित नए कौशल सीखे, रचनात्मक सोच विकसित करे और तकनीक का नैतिक उपयोग करे तो हम और आप भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। ज्ञान और नवाचार के साथ AI को अपनाकर हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए इसी संदर्भ में वार्ता सुनते हैं और वार्ता का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस विषय पर हमसे चर्चा कर रही हैं एहतिशाम परवीन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं एहतिशाम परवीन आपका स्वागत करती हूं आज के इस खास पेशकश में, जहां हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। जिस प्रकार से मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, उसी का परिणाम है कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर चुके हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक वह है जो कंप्यूटर और मशीनों को इस तरह से विकसित करती है कि वे इंसानों की तरह सोच सके, निर्णय ले सके और कार्य कर सके। यह तकनीक न केवल हमारी वर्तमान जीवन शैली को बदल रही है बल्कि भविष्य की दुनिया की दिशा भी तय कर रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मशीनें स्वयं सीखने, समझने, विश्लेषण करने और कार्य करने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य मशीनों को इस प्रकार तैयार करना है कि इंसानों की भांति कार्य कर सके। उदाहरण के तौर पर स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट, स्वचालित कारें, हेल्थ केयर में डाटा विश्लेषण, बैंकिंग में धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणालियां, ये सभी AI के प्रयोग हैं। जी हाँ, आज के समय में AI का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, परिवहन, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, बैंकिंग और यहाँ तक कि घरेलू कार्यों तक में हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में AI आधारित टूल्स छात्रों की पढ़ाई को आसान बना रहे हैं। ये तकनीक छात्रों की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें वैयक्तिक सहायता प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य सेवा में AI आधारित मशीनें रोगों को शीघ्र और सटीक निदान कर रही हैं। इससे डॉक्टरों को इलाज में सहायता मिल रही है और रोगियों को समय पर उचित देखभाल प्राप्त हो रही है। भविष्य की बातें करें तो AI तकनीक हमारे जीवन को और भी सरल और स्मार्ट बना देगी। आने वाले समय में स्वचालित वाहन मुख्य धारा में होंगे जिनमें चालक की आवश्यकता नहीं होगी।

0: वाहन सड़कों पर खुद चलेंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे और दुर्घटनाओं को कम करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी आम हो जाएगी जो सटीकता और दक्षता को बढ़ाएगी। कृषि में AI आधारित ड्रोन्स और सेंसर फसलों की निगरानी करेंगे जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और किसान अधिक सटीक निर्णय ले सकेंगे। दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल मानव जीवन को ही नहीं बल्कि व्यवसायों को भी अत्यधिक प्रभावित कर रही हैं। कंपनियां AI का उपयोग ग्राहक सेवा, उत्पादन प्रबंधन, डेटा विश्लेशन और बाजार रणनीति में कर रही हैं। इससे कार्य की गति बढ़ रही है और लागत में कमी आई है। व्यापारिक निर्णय अब डेटा के आधार पर लिए जा रहे हैं जिससे मुनाफा बढ़ रहा है। हालांकि जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनेक लाभ हैं, वहीं इसके कुछ गंभीर दुष्परिणाम और चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी की और साथ ही साथ ये कि हम AI पर ही ज्यादा निर्भर तो नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे मशीनें अधिक सक्षम होती जा रही हैं, वे मानव श्रम का स्थान ले रही हैं, कई पारंपरिक नौकरियां कम हो रही हैं और नई नौकरियां उन लोगों के लिए उपलब्ध हो रही हैं जो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हैं। इससे समाज में असमानता बढ़ने का खतरा है। दूसरी चुनौती है डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता। AI प्रणाली बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करती है और उसका विश्लेषण करती है। यदि यह डेटा गलत हाथों में चला जाए तो इसका दुष्परिणाम हो सकता है। इसके अलावा मशीनों द्वारा लिए गए निर्णयों की जवाबदेही भी एक चिंता का विषय है। अगर कोई स्वचालित कार दुर्घटना कर देती है तो दोष किसे दिया जाएगा? कार निर्माता को, सॉफ्टवेयर को, डेवलपर को या AI को? भविष्य में AI इतनी सक्षम हो सकती है कि वह इंसानों से अधिक बुद्धिमान बन जाए और इसे सुपर इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो यह मानवता के लिए खतरा भी बन सकता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और उद्यमी एलन मस्क ने भी AI की अनियंत्रित प्रगति पर चिंता जताई है। इसलिए जरूरी है कि AI के विकास के साथ साथ नैतिकता, नियमों और नियंत्रण की प्रणाली भी विकसित की जाए। भारत में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तेजी से विकास हो रहा है। सरकार ने नेशनल AI मिशन की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत AI का उपयोग स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सिटी और परिवहन जैसे क्षेत्रों में बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी AI आधारित समाधानों पर कार्य कर रहे हैं। यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वह इस तकनीक की क्रांति का नेतृत्व करे। दोस्तों, AI के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इससे केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित न रखें, बल्कि इसे मानवीय मूल्यों और नैतिकता के साथ जोड़े। शिक्षा प्रणाली में AI और तकनीकी प्रशिक्षण को शामिल करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इसके अनुकूल हो सके। साथ ही नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि AI का विकास समावेशी, न्यायपूर्ण और मानव हितकारी हो। अंत में यह कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक भविष्य की दिशा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, यदि इसका यही सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह मानव जीवन को अत्यधिक उन्नत, सुरक्षित और समृद्ध बना सकती है। लेकिन यदि इसे बिना नैतिक सीमाओं और नियंत्रण के विकसित किया गया तो यह मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकती है। इसलिए हमें इस तकनीक के विकास के साथ साथ इसकी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम मानव क्षमता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संतुलन बना पाए, और संतुलन बनाने में यदि हम सफल हुए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता न केवल तकनीकी क्रांति की अग्रदूत बनेगी बल्कि एक ऐसे भविष्य का निर्माण करेगी जहाँ तकनीक और मानवता साथ साथ प्रगति कर रहे हैं। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी आप वार्ता सुन रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस विषय पर, और वार्ताकार थी एहतिशाम परवीन।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह!
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दोस्तों, पर्यावरण हम सभी जीवों के लिए एक वरदान की तरह है। इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, और ऐसा सिर्फ इस पर्यावरण के कारण ही संभव है। कल्पना कीजिए कि यदि इस संसार से पर्यावरण नष्ट हो जाए तो हम इस धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह पर्यावरण हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन प्रदान करता है। दोस्तों, यदि हम इस पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो यह धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा और अंत में इस धरती से जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व को समझना चाहिए और इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। यह पर्यावरण हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति हम सभी के लिए आवश्यक होने के साथ साथ काफी सुंदर भी है। यहाँ हर जगह हरियाली है, नदियाँ और तालाब भी हैं, जो इसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देते हैं। यदि यह प्रकृति ऐसे ही प्रदूषित होगी तो इसकी सुंदरता भी जल्द ही नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, सभी पेड़ पौधों, नदियों, तालाबों और जीव जंतुओं से मिलकर ही यह पर्यावरण बना है। पर्यावरण हम सभी जीव जंतुओं को जीने के लिए सभी साधन प्रदान करता है, लेकिन आज इस पर्यावरण की सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि यह दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहा है और जिसका सबसे बड़ा कारक इंसान है। हम सभी इसके प्रति जिम्मेदार हैं। आज इस दुनिया में प्रदूषण इतनी तेजी से फैल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर हमारे ओजोन परत पर भी आज हो चुका है, जो सिर्फ प्रकृति के लिए ही नहीं, हम इंसान के लिए भी, सारे जीव जंतुओं के लिए बेहद खतरनाक है। दोस्तों, आज पर्यावरण सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान भी है। इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है, अन्यथा एक दिन यह प्रकृति नष्ट हो जाएगी और इसके साथ साथ सभी जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें इसे बचाने के लिए आज से ही आवश्यक कदम उठाने होंगे। आज कई लोग इस प्रकृति के प्रति जागरूक हो गए हैं, इसके महत्व को समझ रहे हैं और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसके प्रति जागरूक हो गया है और साथ ही साथ इस पर्यावरण को बचाने के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब भी देर नहीं हुई है, अगर अब नहीं तो फिर कब? यकीनन बाद में मौका नहीं मिलेगा इस प्रकृति को बचाने का, तो बिल्कुल आज से नहीं, अभी से लग जाइए इस प्रकृति की सुरक्षा में।
4: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
5: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
6: हेलो,
4: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
5: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
4: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
5: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
4: ओनली ऑन AIR ओबरा।
1: दोस्तों, साइबर सुरक्षा आज के डिजिटल युग की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, वैसे वैसे हमारे जीवन का हर क्षेत्र इंटरनेट से जुड़ता जा रहा है। बैंकिंग हो, शिक्षा, व्यापार या फिर मनोरंजन या फिर स्वास्थ्य सेवा और सरकारी कार्यकलाप, हर जगह डिजिटल साधनों का उपयोग लगातार हो रहा है और ऐसे में साइबर अपराधों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अतः न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि पूरे परिवार की साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य हो गया है। दोस्तों, परिवार की साइबर सुरक्षा का अर्थ है कि घर के सभी सदस्य, बच्चे, बड़े और बुजुर्ग, इंटरनेट का सुरक्षित, सतर्क और जिम्मेदार उपयोग करें। आजकल छोटे बच्चे भी मोबाइल फोन, टैबलेट और कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। वे ऑनलाइन गेम्स, सोशल मीडिया और शैक्षणिक प्लेटफॉर्म से भी जुड़े रहते हैं और ऐसे में उन्हें यह सिखाना बेहद जरूरी है कि वे किसी अनजान लिंक पर क्लिक न कर दें। अपने निजी विवरण किसी अजनबी से साझा तो नहीं कर रहे हैं, किसी भी अजनबी से ऑनलाइन बातचीत न करें, इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ माता पिता को चाहिए या घर के बड़ों को चाहिए कि वे बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखें और समय समय पर उनसे बातचीत करें। बड़ों और बुजुर्गों को भी साइबर जागरूक होना चाहिए। कई बार वे अनजाने में धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि बैंक से जुड़े फर्जी कॉल्स, लिंक पर क्लिक करके पासवर्ड शेयर करना या अज्ञात ईमेल से रिलेटेड
6: फाइल डाउनलोड करना, उन्हें बताया जाना चाहिए कि कभी भी आप अपना OTP, पासवर्ड या बैंक विवरण किसी से भी साझा ना करें। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके अलावा पूरे परिवार को मिलकर मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिए और समय समय पर अपने पासवर्ड को आप जरूर बदलें। और साथ ही साथ एक ये भी जरूरी चीज है कि नकली खबरें, अफवाहें और फर्जी साइट से सतर्क रहें। दोस्तों, साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी उपायों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक सतर्कता और अनुशासन का विषय भी है। यदि हर परिवार अपने स्तर पर सजग और जागरूक हो जाए तो समाज को एक सुरक्षित साइबर वातावरण प्रदान किया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, समय की मांग है कि हम सभी अपने परिवार को साइबर सुरक्षा के प्रति लगातार जागरूक करते रहें और डिजिटल दुनिया में एक सुरक्षित कदम के साथ आगे बढ़ें।

दोस्तों, चलते चलते बस इतना कि हम अक्सर सफलता के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत को कभी कभी हम अनजाने में नजरअंदाज कर जाते हैं। दोस्तों, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। मेहनत करने से हमें अपनी मनचाही सफलता मिलनी लगभग तय है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए सही तरीके से तैयारी करनी चाहिए और इसके साथ ही साथ सकारात्मक सोच के साथ योजना बनानी चाहिए और इसके पीछे और अपनी कड़ी मेहनत के साथ हमें लग जाना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखने से भी नकारात्मक विचारों से बचा जा सकता है और सकारात्मक सोच बनाई जा सकती है, अगर आप सही दिशा में सही तरीके से काम करते हुए कठिन मेहनत करते हैं तो दोस्तों, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ कि आप डटे रहिए, कड़ी मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। अपनी रेडियो हम सफर रानी राजश्री को कार्यक्रम युववाणी से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घरनी।

सब बहन लोगन के राम राम। बहन लोगन, हम आप सबके आपन जलेबी भौजी आप सबके बीच में आपन मने का बात साझा करे बदे हाजिर हई, और उम्मीद करत हैं कि आप लोग भी हमार बात से जरूर सहमत हुई हैं। देखा, वैसे तो अगर देखल जाए तो बर बीमारी का कोनो समय नहीं होवेला। जहाँ भी परिवार में चार प्राणी हवन तो साल भर में केहू न केहू के कुछ दिक्कत परेशानी हो जाएला। पर आपहू लोग जरूर ये बात के ध्यान देवत हुई हैं कि बरसात के मौसम में जहाँ जहाँ गंदगी और किचकिच यानी मक्खर मक्खी मच्छर वाला मोहल्ला बाना, वहाँ पूरा के पूरा परिवार कबो कबो खटिया पकड़ लेवेला, केहू पानी देवैया नहीं रहेला। ऐसन काहे होवेला इहो हम सबके जानब जरूरी बा। त गंदगी से मक्खी मच्छर जन्मेलन और अपने आप में संक्रमण वाहन वाहक के रूप में इधर उधर जाके गंदगी के साथ बीमारी फैलावेलन। अब संक्रमण वाहक, वाहक यानी कि बीमारी के वाहक, एक जन के खून से दूसरे जन के खून तक, मतलब मच्छर एक लोग के शरीर पर बैठल फिर दूसरे लोग के बैठल शरीर पर बैठल, तो ए तरह से बीमारी के एक दूसरे में आदान प्रदान करेलन और संक्रमण से हो वाली तमाम बीमारियां यहाँ से वहाँ फैलावेलन। कहे का मतलब ये कि यदि हम सब थोड़ा सतर्क रहें और गंदगी से बचल रहीं,

रोग की संभावना कम रही। यानी सब रोग का एक ही दवाई, सब और रखें साफ सफाई। बहन लोगन, मौसम इतना सुंदर बा, पर देखें मौसम बैठके के शुरुआत अपन बर बिरामी से भइल, तो हम कहब कि ए तरह के चर्चा तो अभी बैठकी में हम लोगन के जारी ही रही, मगर काहे ना बैठकी के एक मन मनसायन के साथ आगे बढ़ावल जाए। तो अब सुन, एक झूमर,

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहन लोगन देखा है कीर्ति बहन के गावल मन मन सायन सुनल गई और फिर से एक बार एक अहम चर्चा में जुड़ल जाए तो देखा है कहल जाला ना कि वो आंगन सबसे गुलजार रहेला जहाँ बचपन के किलकारी और बेतुकी बात पर ठहाका लगेला। पर बड़ी चिंता के बात हो कि तमाम लाड़ प्यार दुलार खियाई पहराई इकरे बावजूद भी कभी कभी बचपन कुपोषण के शिकार हो जालन। तब बचपन के एक संतुलित आहार कैसन होवे के चाहे ये बात पर चर्चा करे खातिर अपन बतासा बहिन बैठल हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती नीलम श्रीवास्तव बहिन के साथ। और चर्चा का विषय बा कि कुपोषण से बचाता अनुपूरक पुष्टाहार। अब पहले ये ज्ञानवर्धक बातचीत सुनल जाए और इसे जरूर हम लोगन के कुछ न कुछ सीख मिली कैसे हम लोगन के बचवा कुपोषण से बचे। मगर उससे पहले ना एक संदेश भी बा वो सुन लिया जाए।

0: चिकन गुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों नमस्कार। बहनों, खुशहाल जीवन हर कोई जीना चाहता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो या बच्चे, सबका ये अधिकार भी है। पर स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को कुछ तो करना भी पड़ेगा ना, चाहे अपना खान पान हो या फिर अपनी दिनचर्या को लेकर हो। छोटी छोटी बातों का हम सबको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हाथ पर हाथ रख के तो कुछ होगा नहीं ना। अपने लिए, अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य के प्रति सतर्क और सावधानी से सेवा भाव अपनाना होगा। जैसे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनें या फिर आशा बहनें हैं, एनम बहनें हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लोगों को सतर्क और जागरूक करती रहती हैं। और आज हमारे साथ हैं श्रीमती नीलम श्रीवास्तव जी, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। तो बात करते हैं आपसे नीलम जी। सबसे पहले तो आपको हमारा नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: और आकाशवाणी ओबरा के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: नीलम जी, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है
3: जी।
2: और पहला धन निरोगी काया होता है। तो सब स्वस्थ रहें, यही मंशा है हमारी। चूंकि आज आप हमारे साथ हैं, आपसे पोषाहार के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ बात करेंगे आपसे। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप आंगनवाड़ी में अपना समय कितने वर्षों से दे रही हैं और आपकी जिम्मेदारियां इस पद पर इस समय क्या क्या है।
3: जी, मैं 2008 से इस पद पे कार्यरत हूँ
2: जी।
3: मुझे कार्य करते हुए 17 वर्ष हो गए हैं।
2: अच्छा।
3: और मेरी जिम्मेदारियां हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री माताएं, स्वास्थ्य एवं पोषण और शिक्षा का ध्यान रखना है, पूरक पोषाहार देना, स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण करवाना, धात्री माताओं को स्तनपान के बारे में बताना, स्कूल पूर्व शिक्षा देना 3 से 6 वर्ष के बच्चों को
2: जी,
3: और खेल कूद की गतिविधियों का आयोजन करना है।
2: अच्छा अच्छा। आपका जो चयन होता है नीलम जी, कितनी आबादी पर चयन होता है?
3: 1000 की आबादी में होता है
2: जी। तो उतने लोगों का देखभाल, निरीक्षण करना, उनकी सारी समस्याओं को सुनना, टीकाकरण करवाना, सारा ये काम होता है आप लोग के थ्रू
3: जी।
2: जी देखिए, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। आज उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा तभी कल को वो देश को अच्छे से संभाल सकेंगे। बच्चे कुपोषित ना हो, सरकार की तरफ से देखें उनको कई सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो ये बताएं कि पोषाहार में क्या क्या होता है और बच्चों को कब कब दिया जाता है ये?
3: जी, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं, टेक होम राशन दिया जाता है।
2: ये टेक होम राशन क्या है?
3: टेक होम राशन जैसे इनको घर पर ले जा करके देना, आपका 1 kg दाल और 500 ग्राम आयल रहता है।
2: अच्छा। तेल होता
3: हाँ
2: है?
3: तेल, ये फॉर्चून तेल होता है,
2: सोयाबीन का।
3: हाँ, सोयाबीन
2: जी।
3: हाँ, दिया जाता है। ये जो सेंटर है, सेंटर पे भी आके अभिभावक ले जाते हैं।
2: अच्छा।
3: जो माता पिता हैं आते हैं, अपने बच्चों के साथ में ले जाते हैं, और जो कार्यकर्तियाँ हम लोग हैं जा सकते हैं तो जा करके उनके घर पे भी दे सकते हैं।
2: अच्छा, जिनके बच्चे छोटे होते हैं क्या उनके अभिभावक आते हैं?
3: हाँ, आते हैं
2: जी।
3: जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनके अभिभावक भी आते हैं और बड़े हैं वो भी आते हैं। 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके घर पे ले जा करके हम लोग देते हैं, आके भी ले जाते हैं।
2: अच्छा। और बच्चे जो होते हैं आपके आंगनवाड़ी केंद्र पे, वो कितने से कितने वर्ष तक के?
3: 3 से 6 वर्ष तक के। और 6 अगर पूरा हुआ तो फिर वो निकल जाते हैं, स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है।
2: अच्छा अच्छा। ये बच्चों को जो पोषाहार है, इनका मेन्यू होता है क्या कि प्रतिदिन का अलग अलग भोजन है? क्या क्या होता है प्रतिदिन?
3: गर्म पका भोजन होता है। हफ्ते भर का उनका मेन्यू इस प्रकार है
2: जी।
3: जैसे सोमवार को उनको रोटी, सोयाबीन और मौसमी सब्जी दी जाती है
2: जी।
3: मंगलवार को चावल, सब्जी युक्त दाल है। बुधवार को मौसमी सब्जी, सोयाबीन बड़ी युक्त तहरी दी जाती है।
2: अच्छा।
3: अब बृहस्पतिवार को रोटी एवं सब्जी युक्त दाल दी जाती है। शुक्रवार को मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन बड़ी युक्त तहरी दी जाती है। शनिवार को चावल, सब्जी युक्त दाल दी जाती है।
2: तो ये हफ्ते भर का जो उनका भोजन का मेन्यू है, वो उनको परोसा जाता है,
3: परोसा जाता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को
2: जी। नीलम जी, ये हम जानना चाहेंगे कि जब आप आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं होती हैं, मसलन जैसे कि आप किसी कार्य से निरीक्षण के लिए चली गई या फिर कहीं बैठक में शामिल होना पड़ा, तो उस समय आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों की देखभाल कौन करता है?
3: जब मैं निरीक्षण पे या भ्रमण पे निकलती हूँ उस समय सहायिका होती है, वो बच्चों की देखभाल करती है, बच्चों को पढ़ाती भी है।
2: अच्छा।
3: बच्चों को गतिविधियाँ कराती है, बच्चों की देखरेख करती है।
2: अच्छा। देखें, पूरक पोषाहार के बारे में जो आपने बताया ये तो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बच्चों का या फिर जो गर्भवती बहनें हैं उनका टीकाकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
3: 0 से 6 वर्ष के बच्चों को टीके लगते हैं, जैसे जन्म के समय BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी, 6 से 10 हफ्तों पे और 14 हफ्ते पे, 3 महीने पे DPT, फिर IPV, हेपेटाइटिस बी, फिर रोटा वायरस और PCP, और खुराक 9 महीने पर MMR, और 12 महीने पर हेपेटाइटिस ए, 16 से 18 और 4 से 6 साल तक की उम्र में इनको बूस्टर की खुराक दी जाती है।
2: अच्छा नीलम जी, देखें 6 वर्ष के बाद बच्चों का दाखिला जैसे कि किसी विद्यालय या फिर स्कूल में होता है, मगर उससे पहले की महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां होती हैं वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की देखभाल आप लोगों के माध्यम से होती है। तो जो केंद्रों पर अभिभावक होते हैं अपने बच्चों को ले आते हैं, तो उनका नामांकन कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया होता है, कैसे दाखिला करते हैं बच्चों का?
3: जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे अभिभावक लेके आते हैं तो उनका आधार कार्ड तो होता नहीं है अक्सर माता पिता, हाँ माता पिता का ही हम लोग आधार कार्ड लेते हैं।
2: अच्छा।
3: और उनका जन्म प्रमाण पत्र है तो ले लिया जाता है, फिर उनका एडमिशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, और उसके बाद माता पिता यही सोचते हैं कि यहाँ मेरे एडमिशन कराने से उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, हर तरह की गतिविधियां कराते हैं हम लोग,
2: बच्चों
3: खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं
2: जी,
3: जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास होता है। हम लोग हर जो है महीने में उनका वजन लंबाई लेते हैं।
2: अच्छा, जब बच्चे छोटे जो रहते हैं देखें वो जब तक उनका मन है तब तक हंसेंगे खेलेंगे, फिर रोना शुरू करते हैं तो फिर कैसे चुप कराते हैं आप लोग?
3: जैसे बच्चे रोने लगे तो खेल खेल के माध्यम से उनको खिलौने दे करके, कुछ खाने पीने की जैसे टॉफी है, चॉकलेट है, बिस्किट है, अपने पास हम लोग रखते हैं जिससे बच्चों को शांत कराते हैं
2: जी। अच्छा नीलम जी, ये बताएं कि टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी कैसे आप लोगों को प्राप्त होता है और लोगों को आप लोग कैसे बताती हैं?
3: टीकाकरण की जानकारी हम लोग को जैसे बैठक होती है हम लोग की टीकाकरण सत्र पे, तो वहाँ हम लोग को मालूम हो जाता है।

0: बताता है कि हम लोगों को किस डे को जो है टीकाकरण है, और फिर हम लोग वो गृह भ्रमण के माध्यम से लाभार्थियों को बताते हैं कि आज आपके बच्चे का ये टीका लगेगा। जो भी टीका लगता है उसकी जानकारी हम लोग एनम तक देते हैं। अच्छा। और फिर एनम उसको दर्ज करती है, फिर उस दिन उस बच्चे को टीका लगता है।
1: जी,
0: टीकाकरण का कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक।
1: जी अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताएं गर्भवती बहनों की देखभाल हेतु आपकी तरफ से क्या क्या सहयोग प्रदान किया जाता है?
0: गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान उनकी स्वास्थ्य जांच की जाती है।
1: अच्छा।
0: उनका टीकाकरण टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, पोषण संबंधी सलाह दी जाती है, और वो खान पान अपना अच्छा रखें, समय से खाएं, तभी बच्चा भी स्वस्थ होगा। और जोखिम वाली जो गर्भधारण की पहचान करके उन्हें विशेष ध्यान दिया जाता है, उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, ताकि वो किसी तरह की नाउम्मीद ना हो। और गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए तैयार करते हैं हम लोग, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी उनकी मदद करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत वित्तीय सहायता मिल रही है, उसका भी लाभ उन्हें मिल रहा है, ये भी समझाया जाता है,
1: मतलब जागरूक करते हैं,
0: जागरूक करते हैं।
1: जी बताया जाता है।
0: जी
1: नीलम जी, देखें ये विडम्बना रही है कि जब किसी को कोई परेशानी हो, दिक्कत होता है, तकलीफ होता है, तो लोग डॉक्टर के पास न जा करके, बच्चों को टीकाकरण ना करवा करके झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उनको कैसे समझाते हैं?
0: जो महिलाएं जैसे कि झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाती हैं, डर जाती हैं कि मेरे बच्चे को जैसे टीका लगा वो बीमार पड़ गया, फीवर आ गया, बुखार आ गया उसे, तो हम टीका नहीं लगवाएंगे। तो उनको समझाना पड़ता है कि अगर वो टीका लगा है और आपके बच्चे को अगर बुखार आ गया, इसका मतलब वो आपके बच्चे को सूट कर रहा है, वो आपके बच्चे की तबीयत वो खराब नहीं हुई है, वो टीका आपको
1: फायदेमंद
0: काम कर रहा है, तो उससे आप घबराइए नहीं। और दूसरे बच्चों का उदाहरण दे करके, जो बच्चों को टीके लगे होते हैं उनको बताया जाता है कि दूसरे बच्चों को देखिए टीके लगे हैं, जिससे उनकी जान बची है और उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, जिससे उनको समझाया जाता है, समझती हैं, फिर वो अपने बच्चों को टीका लगवाती हैं।
1: जी अच्छा नीलम जी, किशोरियों के लिए भी तो आप लोगों की तरफ से कुछ सहयोग या फिर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं?
0: हाँ, किशोरी बालिकाएं जो हैं 14 से 18 वर्ष की,
1: जी,
0: तो उनके लिए आयरन की गोलियां आती हैं टीका सत्र पे, और उनको दी जाती है, और पैड भी दिया जाता है, और उनको समझाया जाता है, उनकी लंबाई वजन भी ली जाती है किशोरियों की, और उनको यह समझाया जाता है कि यदि कॉटन का कपड़ा भी यूज कर रहे हैं तो उसको धूप में सुखा करके तब उसका प्रयोग करें, पीरियड के समय यूज करें। यदि उनके पास जैसे कि वो गरीब वर्ग के हैं, उनके पास पैड के लिए पैसे नहीं है, तो वो कॉटन का कपड़ा यूज करें, लेकिन सफाई के साथ यूज करें, उसको धूप में सुखा करके तब यूज करें, ताकि कोई बीमारी ना हो।
1: बिल्कुल सही बात है कि अगर हम साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे तो इन सब चीजों से हम बचे रहेंगे।
0: हाँ,
1: आंगनबाड़ी केंद्र मौसम के हिसाब से खुलता है आपका नीलम जी, तो इस समय जो आंगनबाड़ी केंद्र खुलने का समय है वो क्या है?
0: इस समय आंगनबाड़ी केंद्र खुलने का समय है 8 से 12 है, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दोपहर तक है, और उसके बाद हम लोग का गृह भ्रमण का टाइम है।
1: अच्छा।
0: 12 बजे से लेके
1: प्रतिदिन
0: 2 बजे तक, 2:30-3 बजे तक रहता है।
1: तो गृह भ्रमण के दौरान
0: जैसे धात्री माताओं के पास जाना, गर्भवती माताओं के पास जाना, बच्चों के पास, जिसका वो टर्न रहता है उस समय,
1: जी,
0: जिसके यहाँ जाना है वो हम लोग गृह भ्रमण करते हैं।
1: जी तो नीलम जी, चलते चलते मेरा एक और प्रश्न ये आपसे है कि जो धात्री माता बहने हैं उनको अपने बच्चों के साथ खुद को स्वस्थ रहने के लिए क्या सलाह देती हैं आप?
0: धात्री माताओं को पौष्टिक आहार लेने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दालें, दूध खाने के लिए कहा जाता है, जिससे उनको दूध हो भरपूर मात्रा में और बच्चों को स्तनपान करा सकें, और अपने वो भरपूर नींद लें, बच्चों को स्तनपान जरूर कराएं, इससे वो खुद भी स्वस्थ रहेंगी और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन कुछ लेडीज ऐसी हैं, माताएं ऐसी हैं जो स्तनपान कराने में सोचती हैं कि मेरा फिगर, मेरा चेहरा या हमारा
1: शरीर
0: खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर वो बच्चों को स्तनपान कराती हैं तो खुद भी वो स्वस्थ रहेंगी और बच्चे भी उनके स्वस्थ रहेंगे। अगर बच्चे अगर उनके स्वस्थ हैं तो ऐसी माताओं को तो गर्व होना चाहिए कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, तो मातृत्व का सुख उन्हें मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: और चलते चलते हम ये बताना चाहेंगे कि THR जो लोगों के घर तक हम लोग पहुँचाते हैं, तो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं को दी जाती है, तो वो चने की दाल और गेहूं दलिया, और ये आपको जो है कि तेल दिया जाता है फॉर्चून सोयाबीन। जो चने की दाल दी जाती है उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक है, फॉस्फोरस है, विटामिन B6 है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और गेहूं की दलिया में आपका फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जिंक, आयरन पाए जाते हैं, और तेल में आपका विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन डी, वसा पाए जाते हैं। तो इसलिए ये लाभ उन लोगों तक हम लोग पहुंचाते हैं ताकि वो लोग

0: खुद स्वस्थ रहें और हम लोग को भी इससे प्रसन्नता होगी कि खुशी मिलेगी कि हम अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं और लोगों को स्वस्थ रख रहे हैं। और ये भी कहना चाहेंगे बहनों भाइयों, याद रखिए हम सब एक दूसरे का साथ देंगे तो हर मुश्किल आसान होगी।
1: जी बिल्कुल नीलम जी। तो श्रोता बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती नीलम श्रीवास्तव जी हमारे साथ थी। बहनों देखें, जब हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए चारों तरफ से लोगों का सहयोग प्राप्त है, सरकार की सुविधाएं प्राप्त हैं, तो हमारे लिए तो इन बातों का ध्यान रखना ये फर्ज तो बनता ही है। तो अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखें और सदा स्वस्थ बने रहें। और नीलम श्रीवास्तव जी, हमारी हुई इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: बहन लोगन देखें, अभी कितना सुंदर से बातचीत सुनल गई और कितना छोट छोट बात पर ध्यान देवे के जरूरत बा हम सबके। कोनो भी बचपन के ये सोचाएं कि खूब दूध पियावल जात बा, खूब फल खिलाई संजा सवेरे, बढ़िया बढ़िया बाजारू चीज खियाई, ये सबसे ज़्यादा जरूरी बा कि उनके आहार में शरीर के पूर्ण पोषक तत्व मिलब जरूरी बा ताकि उनका पूरा विकास हो सके। और शरीर के विकास के साथ साथ पौष्टिक तत्व से सेवन से बचपन के मानसिक विकास भी बढ़िया होवेला। तो आवा दिहल जाए धन्यवाद एक बार फिर एक मन मनसायन के साथ।

भी डूबत बा, समय हो चलत बा अब घरे चले के, तो अगर कहें तो अपन बैठकी समेटल जाए। काहे कि देखा रास्ते पेड़े कीड़ा बिच्छी निकलत हवन, तो हम कहब कि बैठकी समेटल जाए। और आज यही वादा के साथ कि अगली बैठकी में फिर मुलाकात हुई, भांति भांति के बात हुई, तो चलत चलावत सब बहिन लोगन के राम राम।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घरनी। हम आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से बोल रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारन के साथ ही हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में भविष्य में परीक्षण में पेपर लीक रोके बदे सजो संबंधित पक्षन से मिलके कोशिश कैले क आवाहन कैले हमें। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के साप्ताहिक रणनीति बैठकी के बादे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बतौलें कि श्री मोदी परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ेर कार्रवाई कैले आ देश के नौजवानन के हितन क रक्षा कैले के सरकार के संकल्प के दोहरौलें।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में आज भईल प्रदेश कैबिनेट के बैठकी में लोकहित का कई गो महत्वपूर्ण फैसला कल गए। एगो रिपोर्ट।
2: कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत लगभग 50,000 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य निजी और संबद्ध विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 5% छात्राओं को लाभ मिलेगा। बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना का लाभ उन छात्राओं को ही मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम हो। दिव्यांगजन, निराश्रित परिवारों और शहीद परिवारों की छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत वाराणसी में 500 क्षमता वाले महिला छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य विधानमंडल का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से प्रारंभ होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच में 352 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 70 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। इस मौका पर मुख्यमंत्री कहने कि बहराइच एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बन चुकल बा।
3: आज बहराइच अपने गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, महर्षि बालार्क के नाम पर हॉस्पिटल का नाम है, पूरे देश में एस

0: नेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जारी होती है तब देश के अंदर पहली रैंक स्थापित किया है बहराइच ने, कृषि में दूसरी रैंक आई है बहराइच की और शिक्षा में बहराइच की आई है चौथी रैंक। ये है अब बहराइच की नई पहचान।
1: मुख्यमंत्री अजुए श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 83 परियोजना का लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भइल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कहीं कहीं अनियमित बरखा से पैदा भइल सूखा का समस्या आ कुछ जगहिन पर ढेरे बरखा से संभावित बाढ़ के चुनौती के लेके काल लखनऊ में एगो उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कैले। ए मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि बाढ़ होखे चाहे सूखा, हर मनई का सुरक्षा, किसानन का फसल आ लोगिन के आजीविका का रक्षा राज्य सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता हो। केंद्र सरकार ओ सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन कैले हो जेमे दावा कैल गेल रहल कि काली दिल्ली में भइल प्रदर्शन के दौरान एगो लड़की का ओहिजुक में मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय का तथ्य जांच इकाई साफ कैले हो कि दिल्ली में प्रदर्शन से जुड़ल कौनो मौत नहीं भइल बा। प्रदेश के ज्यादातर जिलन में रुक रुक के हो रहल बरखा से नदियन का जलस्तर तेजी से बढ़ रहल बा। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी, बाराबंकी आ अयोध्या में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरा के चिन्ह के लगे पहुंच गई हो। वहीं उत्तराखंड में पहाड़न पर लगातार हो रहल बरखा के नाते पीलीभीतों में शारदा नदी का जलस्तर ढेरे बढ़ गई बा। यह बीचे बरखा आ जतरा वाले राहिन पर भूस्खलन के आशंका के नाते उत्तराखंड में काल स्थगित कैल गई चार धाम जतरा आज फिर से शुरू हो गई। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: FM पर हम आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: रिया
1: देखा जब बांसुरी के धुन तान जनबा डफली के मीठ लय के साथ और साथे साथ बरखा के फुहार जब मिले ला ना तो देखा पंचायती का रंग कुछ और रहेला।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा हुआ। चलो भैया एह बेर देखा अपने जनपद के लगभग हर गांव गिराव में बदरी बरसात बा। अपन धरती हरियर चुनरी ओढ़ के मुस्कुरा रहल बा। खेत खलिहान में किसान के चेहरा पर नया उमंग देखे के मिलत बा।
1: बिल्कुल। और देखा नंदू भैया अपने जनपद के भौगोलिक बनावट कुछ ऐसा बा कि देखा मारकुंडी के ऊपर का पहाड़ी का इलाका और नीचे का मैदानी भाग में मौसम जन बा उमेन उनकर अंतर जन बा एकदम साफ देखे के मिलेला। कभी कभी देखा 3-4 दिन तक ले लगातार बरखा बुनी होला तो कभी एकदम देखा चुभे वाला एकदम तेज धूप निकल आवेला।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं न कहीं जोन बादर के छैले रहल बा और कहीं तेज धूप पड़त बा, उगर कहीं न कहीं तेज हवा भी चलत बा। यह बदलत मौसम के चलते उमस भी देखा काफी बढ़ोतरी महसूस करल गई। और ई हालात के असर किसान मजदूर चाहे अपन पड़वैया भैया लोग हुआ बचवा लोग हुआ आम ग्रामीण जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहल बा।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे मौसम के अनुसार सतर्क रहला के जरूरत बा, काहे से कि पहले से कहीं अधिक बढ़ गइल बा।
1: बिल्कुल। और सतर्क जोन बा पहले से ज्यादा अभी अधिक हो रहे के जरूरत बा। और देखा नंदू भैया आज के मौसम में आज के समय में जोन बा मौसम का जोन चाल ढाल बा इतना बदल गइल बा कि वाकई आप बिल्कुल सही कहते हो कि सतर्क पहले से ज्यादा रहे के जरूरत बा। तो कभी जरूरत से बेसी जोन बा देखा कभी बरखा हो जात बा कभी देखा महीना भर सूखा पड़ जाला। जौने समय में ठंड रहे के चाहे वो समय में देखा गर्मी बढ़ जात बा। तो ये बदलाव का जोन मुख्य कारण बा ओ पर ध्यान देवे के बा ऊ बा पर्यावरण असंतुलन पेड़ पौधा के लगातार कटाई।

0: सृजन बा, प्रकृति एकदम कमजोर भी हो रहल बा भैया।
1: बिल्कुल अचल भैया। और कहीं ना कहीं अचल भैया, धरती के तापमान जो हर साल बढ़ल जा रहल बा, एक कारण भी मौसम अपन पुरान नियम से हटत जा रहल बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये बदलाव देखा इंसान और प्रकृति दोनों खातिर चिंता के विषय बा, और पर्यावरण संतुलन के सबसे बड़ कारण जंगल के कटाई बा।
0: बिल्कुल
1: और
0: सही
1: हर दिन हजारों पेड़ जोन बा विकास के नाम पर काटल जा रहल बा, कारखाना चाहे वाहन से निकलल धुआं हवा जहरीला बनल जात बा।
0: बिल्कुल सही कहला नंद भैया। देखा नदी हो चाहे पोखरा हो चाहे तालाब, ओमे गंदगी देखा फेंकल जा रहल बा कई लोगों के माध्यम से, और प्लास्टिक जोन बा ओकर इस्तेमाल ज्यादा बढ़त बा, जेकरे वजह से अपने धरती माई का काफी नुकसान हो रहल बा। और देखा नंद भैया, जब रासायनिक खाद जहरीला दवाई जोन बा ये माटी के स्वास्थ्य एकदम बिगाड़ रहल बा, और देखा प्राकृतिक संसाधन के अंधाधुंध दोहन भी जोन बा एकर बहुत बड़ा कारण बा, और ये सबसे देखा पर्यावरण के संतुलन जोन बा वो लगातार बिगड़त बा।
1: एकदम बात तो हर सही बा चलो भैया, और यह विषय पर गंभीरता से सोचे के बा। कैसे कि देखे पर्यावरण असंतुलन के असर अब मतलब हर मनई महसूस कर रहल बा। भीषण गर्मी से लोगन के जीव मुश्किल हो गेल बा, बरखा के अनियमितता से खेती किसानी प्रभावित भी हो रहल बा, और सूखा बाढ़ से समझ लगे किसान से भारी नुकसान उठावत हो भैया। देखे इस समय किसान भी हर लोग अपन टकटकी लगीले हो कि कब जवन बा दौचुए कि अपन धान के रोपनी होके, तब पिए खातिर भी पानी देखे साफ से धीरे धीरे कम हो जा रहल बा। हवा में प्रदूषण बढ़ला से सांस की बीमारी भी देखा भी सोनभद्र में भी बढ़ाता
0: बढ़त बा। और भैया देखा एक असर जन भी है ना, वो छोट छोट बचवा हो और चाहे बुजुर्ग, उन पर जन बा सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा बा। और देखा मानव जीवन के गुणवत्ता पर भी ये बदलाव जन बा गहरा असर डाल रहा बा, और पर्यावरण असंतुलन से जीव जंतु भी सुरक्षित नहीं कन बिल्कुल, और कई पक्षी और वन्य जीव का बसेरा भी जन बा देखा एकदम धीरे धीरे खत्म हो रहा बा। और नदी सुखला से जन बा जलीय जीव हो संकट में एकदम पड़ गए हुए, और देखा फूल पत्ती या पेड़ पौधा के जीवन चक्र भी एकदम बदल गए भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं एक कारण बा जैव विविधता में लगातार घटत जा रहल बा, और प्रकृति के ई नुकसान आखिरकार इंसान के भी नुकसान बा।
0: बिल्कुल सही
1: कहा। कहे से कि देखे प्रकृति के मानव एक दूसरे से जुड़ल बाड़े, प्रकृति स्वस्थ रही तब जाकर के मानव जीवन भी सुखी रही।
0: बिल्कुल,
1: यह समय से निपटे खातिर हमनी के मिलके काम करे के होई, और हर आदमी के हर साल कम से कम एक पेड़ जरूर लगावे के चाहिए, और प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम होके तब जाके बात बनी।
0: बल्कि हम तो कह भैया बिल्कुल न करे तो ज्यादा अच्छा बा
1: भैया। भैया चलू देखे कहीं न कहीं एक बात और होला कि भैया हो अगर आप प्लास्टिक में सामान खरीदत हो तो भैया अतिरिक्त आप पर बोझ भी लदत बा।
0: बिल्कुल सही कहत हो, चाहे वो देखा जल हो जंगल हो या जमीन हो, ओके बचावे पे हमन के जोर देवे के चाहिए। साफ सफाई और कचरा का सही तरीका से निपटान बिल्कुल जरूरी भविष्य है, और सौर ऊर्जा और हरियर ऊर्जा के भी बढ़ावा हमेशा देवे के चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के संदेश देखा घर घर पहुंचावल जरूरी बा, छोट छोट प्रयास मिल के जन बा वो बड़ा बदलाव लिया सकेला। प्रकृति जोन बा हमनी के जीवन का सबसे बड़ा आधार भी है।
1: बिल्कुल सही कहत हुआ, अगर आज पर्यावरण के ना बचावल गई तो भविष्य में संकट बढ़ जाये अचलु भैया। आवे वाला पीढ़ी समझ लग की खातिर स्वच्छ हवा पानी जोड़ल सब जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाए, और धरती के हरियर बनावे के हर नागरिक के योगदान जरूरी बा। कहे से कि पर्यावरण संरक्षण खाली सरकार के ना बा, हम सभी के कर्तव्य बा, और अगर हर मन प्रकृति से प्रेम करी तो और ओकरे रक्षा खातिर आगे बढ़ी, तबे जाकर के फिर से मौसम में अपन संतुलन हो आ जाए और सब खुशहाल रही।
0: बिल्कुल सही कहा नंद भैया, देखा स्वस्थ पर्यावरण ही सुरक्षित भविष्य का सबसे मजबूत आधार हो। और देखा हम का बात बत कही तो होत रही, लेकिन आज के पंचायती में वनस्पति विज्ञान का सहायक प्रोफेसर डॉक्टर हरिओम वर्मा भी अभी देखा जुड़ गए, और देखा वन्य जीव संकट के कारण व बचाव के उपाय एक बारे में भोला भैया से बात बत कही करत हुआ। तो हम तो कहते कि एगो कुछ संदेश बा, उस संदेश सुनला के बाद जन बा जरूरी जानकारी सुनल जाए।
1: सुनल जाए।
2: स्वामी हरसेवानंद शिक्षण संस्थान,
3: स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल चूर्क और घोरावल के साथ ही साथ उच्च शिक्षा में लाया है बेहतर विकल्प।
2: स्वामी हरसेवानंद पीजी कॉलेज चूर्क में बीए बीएससी बीकॉम बीबीए
3: एमए एमएससी एमकॉम में प्रवेश प्रारंभ है। ज्ञान संस्कार और सफलता

0: अपनी सशक्त पहचान।
1: स्वामी हरसेवानंद शिक्षण संस्थान।
2: श्रोताओं, सोनभद्र जनपद वन भूमि से अधिकाधिक भाग घिरा हुआ है। इसके बावजूद भी यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव जंतुओं की संख्या की अगर गणना की जाए तो बहुत ही अल्प मात्रा में समझ में आता है। जो पहले के बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि चलते फिरते बहुत ही पास में तमाम तरह के जानवर, तेंदुआ, बाघ, भालू, बंदर की संख्या तो कुछ दिखती है, लेकिन भेड़ के भी संख्या में बहुत कम देखने को इस समय मिल पा रहा है। क्या कुछ कारण है जो वन्य जीव बहुत लुप्त होते दिख रहे हैं? यहाँ तक कि गिद्ध की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं। और पहले जो मेहमान के संकेत देने के काम गांव में किया करते थे, कौवे इत्यादि, उनकी भी संख्या बहुत कम दिख रही है। इस सब के जानकारी के लिए आज भावराव देवरस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुधी में सहायक प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान के डॉक्टर हरिओम वर्मा जी से मुलाकात हो रही है। आपसे बातचीत होगी इस क्षेत्र के वनस्पति और जीव जंतु के बारे में, कि चूंकि आप से थोड़ा संकेत कर दूं कि इस क्षेत्र में ये बहुत ही बारीकी से यहाँ के परिवेश के बारे में जानते हैं। यहाँ रह करके भी आपने बहुत कुछ देखा है यहाँ वनस्पतियों के बारे में, लगभग शोध भी यहाँ से किया है आपने। तो हरिओम वर्मा जी, आपको आकाशवाणी कार्यक्रम में इस आशय से भी बहुत स्वागत है कि यहाँ का परिवेश के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। और आज ये बहुत सारे जीव जंतु जो जंगल के हैं वे लुप्त दिखाई दे रहे हैं, आपका क्या दृष्टि है इसके संदर्भ में?
3: धन्यवाद आपको इस महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा के लिए आमंत्रित करने के लिए।
2: जी जी, स्वागत।
3: देखिए, पहली चीज तो इस क्षेत्र में वन की कमी नहीं, वन क्षेत्र में कमी नहीं आई है।
2: जी जी,
3: लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो नई सड़कें बनी हैं या आवाजाही के जो नए साधन उत्पन्न हुए हैं, उससे चलते वन क्षेत्र में जो जीव जंतुओं के लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक क्षेत्र से दूसरे जाने में सुगमता होनी चाहिए, वो खत्म होती जा रही
2: है। जी जी जी।
3: तो जीव क्या हो गया है कि जो बड़े जीव हों एक ही जगह जब सीमित रह जाते हैं तो वो आक्रामक हो जाते हैं।
2: जी जी जी।
3: जैसे मान लीजिए कोई तेंदुआ है, वो कहीं नहीं पूरे जंगल में नहीं जा पा रहा, केवल थोड़ी जगह में रह जाएगा, तो कुछ दिन बाद वहाँ आक्रामकता दिखाने लगेगा।
2: जी जी जी।
3: जब आक्रामकता दिखाने लगता है तो ग्रामीणों और जो वन्य जीवों में जो संघर्ष होता है उसमें बहुत सारे जीव मरते हैं।
2: जी जी, क्षति होती है। जी,
3: इस चलते लंबे समय से यहाँ देखिए इस तरह के कोई बड़ा जीव नहीं दिखता। फिर जो बीच में आप कई बार, मैंने अपने खुद से सर्वे किया कि यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की संख्या बहुत अधिक थी।
2: जी,
3: लेकिन निरंतर एक मछली है ग्रास। ग्रास मछली क्या करती है, तालाबों में जो भी काई रहती है या
2: घास
3: वगैरह रहती है उसको खा जाती है।
2: जी,
3: तो जो विदेशी पक्षी आ रहे थे उनकी भी संख्या अब कम दिखती है यहाँ पे। खासकर झारो बंधा जो है आपका दुधी तहसील का, वहाँ कई सारे पक्षी दिखते थे, अब उनकी संख्या कम दिखने लगी है, 2 साल से कम दिख रही है।
2: जी,
3: अब जो आ भी रहे हैं वो इक्का दुक्का थोड़ी थोड़ी गिनती में ही आ रहे। फिर जो माइनिंग के कई सारी माइन थी जो बीच में बंद हो गई थी या फिर से चालू हुई हैं, तो उनके चलते क्या है, जो मध्य प्रदेश से जीव आ रहे थे
2: जी,
3: उनमें भी कुछ कमी आई है। दूसरा, सोनभद्र में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि अगर आप देखें तो दक्षिण में मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिले की बॉर्डर पर जो एक संजय नेशनल पार्क है
2: जी,
3: वो फिर आप जिधर जाएंगे झारखंड में जो आपका पलामू नेशनल पार्क है, बहुत सारे जीव इसी सोनभद्र जनपद से हो करके आपस में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे।
2: जी जी जी, जी।
3: संजय नेशनल
2: जंगल जुड़ा हुआ है।
3: जी, जी। तो आप देखें सीधी से चल के उधर चले जाते थे।
2: हाँ, हाँ,
3: फिर आप देखते हैं सर्दियों के मौसम में जब उधर घास सूखने लगती है छत्तीसगढ़ में
2: जी,
3: तो हाथी बभनी में आ जाते हैं।
2: हाँ, हाँ,
3: तो वो पहले का उनका जो रास्ता था वो बभनी से उधर से होते हुए वो चले जाते थे, संजय नेशनल पार्क चले जाते थे, सीधी वाले जंगलों में चले जाते थे। और इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। फिर मौसम एक और महत्वपूर्ण कड़ी इस क्षेत्र में थी, जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रावर्ट्सगंज के पीछे शाहगंज घुरावल वाले हिस्से में वो भी, और उत्तरी क्षेत्र में जो आपका चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
2: जी जी।
3: तो जब क्षेत्र में जिले के चारों तरफ महत्वपूर्ण जंगल हैं,
2: हाँ, हाँ,
3: तो उन चारों ये सारे जंगलों को जोड़ने का काम करता था ये हिस्सा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर औद्योगिक प्रगति बढ़ी है, इस वजह से थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं।
2: अच्छा, ये चूंकि बीच के रास्ता जो आने जाने की बात है उसमें जो क्रॉस करने
3: उसमें रुकावट आने से कोई जीव जा नहीं पा रहा,
2: जिससे बहुत सारे गाड़ी मोटर चल रहे हैं, उसमें अगर आते जाते कोई देख लिया तो उसका पीछा करने लगा, उसमें संघर्ष होने लग रहा है।
3: संघर्ष होने लगा।

0: तो इससे
1: देखिए
0: भी जो है
1: जानवर
0: कि
1: होता है क्या, जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, अचानक से लाइट पड़ी उसके मुंह पे,
0: जी
1: या
0: जी
1: वो
0: जी
1: घबराया थोड़ा भी, तो आक्रामक हो जाता है।
0: आक्रामक हो
1: जब
0: जाता है
1: आक्रामक हो जाएगा तो लोगों में संघर्ष होगा। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु आपसे बताऊं,
0: जी
1: आप लगातार देख रहे होंगे घोरावल के उस हिस्से में जहाँ ये बेलन नदी होकर के जाती है मिर्जापुर में,
0: जी जी
1: बेलन बरौंधा में, वहाँ पे लगातार मगरमच्छों की उपस्थिति की चर्चा हो रही
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो वो भी पुराना आवास है मगरमच्छों का, लेकिन अब वहाँ पर भाई खेती वगैरह बढ़ गई है, तो इसलिए ऐसी दिक्कतें आ रही हैं।
0: प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जो है कि ये जीव जंतुओं का बहुत ही बड़ा भूमिका है, जिससे कि लोग अगर एक न रहे तो दूसरा के लिए भी जो है कि बड़ा हानि पहुंचती है।
1: हाँ
0: तो जीव जंतुओं का रहना, जंगली जानवरों को रहना, ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए कितना आवश्यक है डॉक्टर साहब?
1: बहुत आवश्यक है। एक क्या कहते हैं, एक अध्ययन छपा था
0: जी
1: अमेरिका में, वहाँ पर ये था कि जब जंगली भेड़िये उपस्थित रहते थे
0: हाँ
1: तो नदी के किनारे वाले क्षेत्रों पे घास चरने वाले जीवों की उपस्थिति कम रहती थी।
0: जी जी
1: अब
0: जी
1: आप अगर ऐसा समझ लीजिए कि कोई नदी बह रही है
0: हाँ
1: और उसके किनारे अगर गाय भैंस या हिरन बारहसिंघा लगातार चरते रहेंगे
0: जी
1: तो
0: जी
1: कोई
0: जी
1: पौधा तो उगेगा नहीं,
0: नहीं जाएगा।
1: और फिर लंबे समय में मिट्टी का कटान होने लगेगा, या
0: हाँ
1: मिट्टी कटान होने लगे तो नदी में बाढ़ आने लगेगी।
0: जी जी जी
1: तो नदियों के या जल संरक्षण के जो प्रमुख चीजें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए
0: जी जी
1: यदि घास खाने वाले जीवों या कहें कि शाकाहारी जीवों की संख्या अधिक हो जाएगी तो पारिस्थितिक तंत्र तो अपने आप क्या कहते हैं बिगड़ जाएगा।
0: बिगड़ जाएगा
1: इसलिए
0: बिल्कुल।
1: मांसाहारी जीवों में जैसे जितने शेर है, बाघ है और तेंदुआ प्रमुख है इस
0: जी
1: क्षेत्र
0: जी
1: में, इनकी
0: जी
1: संख्या घट रही है। अब तो लकड़बग्घियों की संख्या ही बहुत कम रह गई है सोनभद्र
0: जी
1: क्षेत्र
0: जी
1: में।
0: जी जी
1: जब नीलगाय रहेगा ही नहीं, चीतल रहेगा ही नहीं जंगलों
0: जी
1: में,
0: जी
1: तो
0: जी
1: शेर तेंदुआ बाघ खाएंगे क्या?
0: हाँ क्या खाएंगे, सही बात है
1: तो जब पहली चीज सबसे अधिक खतरा इस समय जो उत्पन्न हुआ है पूरे क्षेत्र में आप देख ले, तो
0: जी।
1: लेंटाना की वजह से।
0: लेंटाना की वजह से, चूंकि उनके अंदर जो नवोद्भिद पौधे हैं
1: हाँ, वो उनके
0: उनका उगना
1: उगने को
0: बहुत
1: रोक देते हैं,
0: रोक देते
1: रोक
0: हैं।
1: देते हैं।
0: अच्छा, यदा कदा कहीं जमे भी तो इसका इतना जल्दी विकास होता है कि उसको ढक लेता है और
1: हाँ
0: अंत में उसको जो है कि जलाकर ख़त्म कर देता
1: हाँ
0: है।
1: ढक भी लेता है, तो दूसरी
0: हाँ
1: चीज प्रकाश की कमी की वजह से पौधा ग्रो नहीं कर पाता,
0: जी जी
1: नहीं उग
0: जी
1: पाता ठीक से।
0: जी जी तो एक तो कारण हो गया मतलब ये जो जीव जंतुओं का यहाँ वहाँ आवागमन बाधा होने की वजह से हो, और क्या क्या कारण हो सकते
1: और
0: हैं?
1: कारण खेती, खेती में आप देखें मुख्य तौर पे तो सरकार ने तमाम प्रयास तो किए,
0: जी
1: लेकिन एक जो से कि देखते हैं कि यहाँ पे मुख्य तौर पर जो खेती की भूमि है वो निचले इलाकों में नदियों के या कोई जो जल का स्रोत रहता है उसी के आसपास है। लंबे समय से 5 साल 10 साल अगर वहाँ लगातार खेती होती रहती तो ट्रैक्टर वैक्टर चलने से कोई फसल के अलावा कुछ बचता नहीं है,
0: जी जी जी
1: ना
0: जी
1: कोई पेड़ पौधा ना कोई जड़, तो
0: हाँ हाँ हाँ
1: मिट्टी इतनी ढीली हो जाती है
0: जी जी
1: कि जब बारिश होती है तो ढलानदार खेत है यहाँ
0: हाँ
1: पे,
0: हाँ हाँ
1: सारी मिट्टी बह बह के नदियों नालों में चली जाती है।
0: जी जी जी जी
1: अब नदियों नालों के पानी की क्षमता भी बहुत घट गई है सोनभद्र में। आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे
0: जी
1: मेहरपुर का हिस्सा
0: बिल्कुल
1: देख
0: बिल्कुल
1: लीजिए
0: बिल्कुल।
1: या कहीं देखिए,
0: जो ऐसे ही अकस्मात झरना चलते थे वो भी नहीं हो
1: वो
0: रहा
1: भी
0: पाए,
1: वो
0: वो भी बंद
1: तो
0: हो गए,
1: जो खेती के
0: और
1: समतल
0: खेती के
1: स्थान थे
0: समतल हो गए,
1: जहाँ
0: इसलिए
1: नदियां नाले
0: जी
1: कुछ थे वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा
0: खत्म
1: रहे
0: हो
1: हैं।
0: जा रहे हैं
1: अब
0: जी।
1: नदियां नाला खत्म होने का एक सबसे बड़ी समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, आप जो क्षेत्र जैसे बबनी है, म्योरपुर है, इसमें देखेंगे तो हर साल आपको कुछ घटनाएं सुनाई पड़ेंगी गर्मी के मौसम में, कि चीतल को गांव के कुत्तों ने मार डाला,
0: जी।
1: नीलगाय को गांव के कुत्तों ने मार डाला,
0: हाँ
1: या बारहसिंघा को गांव कुत्तों ने मार दिया।
0: जी
1: तो इस तरह से भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं जब जानवरों के पीने के लिए पानी नहीं बच रहा है।
0: बिल्कुल
1: इस
0: बिल्कुल
1: क्षेत्र
0: बिल्कुल
1: में मैं कहूंगा देखिए ग्रामीण विकास विभाग ने काफी काम किया है, तालाबों को संरक्षित संरक्षित करने में, बंधी बंदी बनाने में किया है,
0: जी
1: लेकिन अगर राजस्व विभाग एक थोड़ा सा पहल करके किसी तरह से जो नदियां नाले हैं,
0: जी
1: छोटे
0: जी
1: छोटे नदियां नाले हैं
0: जी
1: पुराने, उनको अगर उनसे अगर कब्जा छुड़ा लिया जाए
0: हाँ हाँ
1: तो जीवों के संरक्षण
0: बिल्कुल
1: की
0: बिल्कुल
1: संभावनाएं और
0: बिल्कुल।
1: अधिक बढ़ सकती हैं।
0: नहीं ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि जीव चूंकि गर्मी के मौसम में सारे गांव में आ जा रहे हैं, गांव में आने से तरह तरह के जीव जंतु जो उसके शत्रु हैं वो उनको नष्ट कर रहा है, मार दे रहे हैं,
1: संघर्ष हो रहा है,
0: संघर्ष हो रहा है, बहुत डर के मारा नहीं आ रहे हैं तो प्यासे तड़प कर मर जा रहे हैं,
1: मर जा
0: बहुत
1: रहा है।
0: सारे लोग खोजते खोजते ऐसे ही नहीं पहुँच पा रहे हैं।
1: हाँ,
0: तो ये मतलब जंगली जीवों को नष्ट होने का भी एक जो ये भी एक
1: बड़ा
0: कारण,
1: कारण है।
0: बड़ा कारण है। अच्छा, ये सुझाव में भी आपने लगातार लगभग कुछ न कुछ देते गया कि अगर इस बंधी उंधी को अच्छा से बनाया जाए, जंगल में भी
1: नहीं
0: जल भरा
1: प्रयास
0: जाए,
1: है भी, ऐसा नहीं मैं कह
0: तो
1: सकते
0: उससे जो
1: कि
0: है
1: सब प्रयास
0: कि
1: नहीं है
0: जी
1: सब।
0: तो ये किया जा सकता है, तो
1: हाँ,
0: और क्या सुझाव है जिससे कि मतलब जीव जंतुओं को बचाया जा सके डॉक्टर साहब?
1: प्रमुख चीज़ों में तो एक तो लेंटाना वो किसी तरीके से कम करने के लिए नए उपाय खोजे जाएं,
0: जी जी
1: उसमें मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि कि मैं देखता हूँ कि राजस्थान वगैरह में कुछ ऐसी मशीनें लगती हैं जो झाड़ियों को तोड़ तोड़ के
0: हाँ
1: छोटा छोटा टुकड़ों में बांट देती है,
0: अच्छा,
1: और उसका इस तरह से बनाया जाता है उनको कि वो कंडे या आग जलाने के लिए लकड़ी की तरह काम करते हैं, क्योंकि लंटाना बहुत हल्का होता है तो इसलिए उसको उतना देर जलाया नहीं जाता, तुरंत
0: जलाया
1: जल
0: नहीं,
1: जाता है।
0: तुरंत जल
1: लेकिन
0: जाता
1: फिर
0: है।
1: भी इस पर थोड़ा शोध किया हो सकता है कि उसको कहाँ इस्तेमाल किया जा
0: जी
1: सकता है,
0: जी
1: कोई ना कोई ऐसा एक जगह खोजना पड़ेगा कि उसको इस्तेमाल किया। दूसरी चीज, अगर क्षेत्र में गेहूं चावल मक्का के अतिरिक्त मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाया जाए,
0: जी
1: क्योंकि पहले की तुलना में मोटे अनाजों की खपत फिर से बढ़ रही है, जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं या किसी और तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, वो अब देखिए मोटे अनाज की तरफ मुड़ रहे हैं।
0: जी
1: अगर क्षेत्र में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाया जाए तो पानी की खपत थोड़ा सा कम हो जाएगा,
0: अच्छा जी,
1: पानी खपत कम होगा तो पानी गर्मी के मौसम में उपलब्ध
0: गर्मी
1: रहेगा।
0: उपलब्ध रहेगा।
1: अगर आप सारा पानी गेहूं में ही लगा देंगे तो
0: हाँ,
1: गर्मी के मौसम में कहाँ पानी
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: बचेगा।
0: नहीं ये भी सब है। तो श्रोताओं, देखिए, आप थे डॉक्टर हरिओम वर्मा जी, आप सहायक प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान के हैं और आप यहाँ भाऊराव देवरस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुधी में कार्यरत हैं। आप इस क्षेत्र को बहुत ही नज़दीक से जानते हैं और कितना अच्छा सुझाव रहा कि किस प्रकार से, अब चूंकि विकास का क्रम तो लगातार चलते रहता है, लेकिन उसमें भी विकास उसको नहीं कहा जा सकता जो अपने अस्तित्व को समाप्त करके और दिखावा मात्र से आगे बढ़ते जाया जाए, बल्कि जो अच्छाई रहा हो पहले उस अच्छाई को अभी भी बरकरार रखा जाए और जो आगे विकास करते हुए अच्छाई की ओर जा रहा हो उसको भी लेते चलना है। निश्चित रूप से एक जो मोटे अनाज की बात आपने किया उसमें एक तो जल की बचाव होगी और दूसरी बात की जो है कि जो व्यक्ति के तबीयत खराब, तरह तरह की बीमारी आ रहा है उसमें भी रुकावट आएगी। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: अचलू भैया,
5: हाँ नंदू भैया,
4: देखा अपन वन जीव संकट के कारण और बचाव के उपाय पर डॉक्टर हरिओम वर्मा रहले जो सहायक प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान के रहले, अपन जगत नारायण भैया से अपन बातचीत भइल।
5: तो इतना अच्छा बातचीत तो अगर सुनल गए तो मन फिर भी हो के चाहिए, तो मन फिर कैसे करा
4: बिल्कुल आवा रामासी से यादव उनके संघाती लोगन से एगो दादरा सुनल जाए।
5: बिल्कुल

0: नंदू भैया
1: अचलो भैया
0: देखा भाई, रामाशीष भैया और संघाती लोगन के गावल एगो दादरा के माध्यम से मनफेर हो रहल बा, लेकिन अपने पंचायती के भी समेटे का समय आ गेल बा। लेकिन काल अपने पंचायती में जब आवल जाए तो का का सुनल जाए, ओकरे बारे में बतावा।
1: तो देखें, काल के बारे में बा कि स्थानीय स्तर पर वर्षा जल संचयन करल बहुत जरूरी बा। एकर जानकारी अपने ब्रज किशोर यादव जो जागरूक ग्रामीण हो जगत नारायण भैया से बात बत कही बा,
0: बिल्कुल भैया
1: सुनल जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वर्षा जल संचयन का प्रयास ऐसन करे के चाहिए कि देखा वो अपने स्वच्छता में भी शामिल हो जाए, स्वभाव में भी शामिल हो जाए, वो संस्कार बन जाए।
1: बा भैया बा,
0: तो ऐसे ही देखा अपन मनसा भी रख करके जनबा अपन समेटल जाए,
1: चलल जाए। तो सब पंचन के
0: राम
1: राम,
0: राम।
1: राम।

0: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

0: भैया बोला जय जवान जय किसान।
1: नंदू भैया
0: अचलू भैया
1: देखा थे कैसा एकदम कनई उनई में सनाए लाए चल आत हुआ एकदम देखा थे कि धोती लुंगी कुल भीगल हुआ तो बरखा बुनी में लगा तो मजा लेत हुआ।
0: भैया हो देखा वर्षा बुन्नी के जब समय बा अब बरखा बुन्नी जरूरी भी बा, लेकिन
1: बिल्कुल
0: अचलू भैया अभी भी जौन बा मन मुताबिक जौन बा वर्षा न हो पावता, जैसे किसान लोग भैया चिंतित भी हों कि भैया धान के अगर रोपाई कैसे होगी,
1: बिल्कुल
0: अगर कहीं दग अगर ना बरसले ना चूले बढ़िया बरियार तो बड़ा दिक्कत हुई।
1: दिक्कत होवे करे भी। देखा जिसे मौसम की बात अगर हो रहल बा तो देखा आजकल न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहल और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहल, लेकिन मौसम के बारे में 3-4 दिन का और का विवेचना बा। एकरे बारे में श्री मंगल सिंह भैया जो कि मौसम वैज्ञानिक हुवन BHU का, उनसे भी हमन कुछ जान लेल जाए कि आगे 3-4 दिन में मौसम कैसन रही,
0: तो
1: तो
0: आवाज
1: हमन
0: सुनल
1: सुनल
0: जाए।
1: जाए।
2: किसान भाई लोग देखे हम लोगों ने खेती बाड़ी से जुड़ल है और इस समय खास तौर से धान का रोपाई का समय हम लोगों का चला था और ऐसने स्थिति में पानी का हम लोगों के जरूरत रहा है, तब मौसम का जानकारी भी बहुत जरूरी बा। आज देखे हमारे संपर्क हो गल बा शिव मंगल सिंह साहब से जो उनकी तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भू भौतिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हम, और आज हम लोग आपसे ही मौसम का जानकारी ले कि अगले 4 दिन तक अपन मौसम कैसन रही और का स्थिति रही। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था शुक्रवार को कि बरसात जो है होगा,
2: जी,
3: तो आप किसान भाइयों को अनुभव हुआ होगा कि बरसात हुई है। तो अगर हम अगले 3-4 दिनों की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से आने वाले अगले 3-4 दिनों तक भी मौसम जो है बारिश वाला बना रहेगा और ऐसे में कहीं कहीं हल्की से मध्यम और कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
2: जी जी
3: ठीक है
2: जी।
3: और चूंकि बरसात का मौसम है इसलिए ऐसे में हवा की गति

0: सामान्य से अधिक रहेगी। इस अवधि में अगर हम अधिकतम तापमान की बात कर लें तो वो जो है तकरीबन 34 डिग्री के आसपास रहेगा,
1: जी,
0: और वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो जो है 22 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान लगाया गया है। चूंकि हम आपको बताए थे कि बरसात के मौसम में जो है सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है, जो कि अधिकतम 90 से 95% रहने की संभावना है अगले 3-4 दिनों तक। अगर मान लीजिए कभी कभी बरसात नहीं होती, धूप होती है, तो बहुत उमस भरी वाली गर्मी रहेगी। जी, अगर बरसात नहीं होती है तो, लेकिन अनुमान तो है कि बरसात अगले 3-4 दिनों तक अच्छे से होगी और किसान भाई उसका लाभ उठाएं। जी बताएं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज देखा क्या होता मौसम में कि खंड वृष्टि होता, माने कहीं बारिश होता तो कहीं बारिश नहीं हो, तो ई काहे बदे ऐसा होला?
0: ऐसा है ना
1: जी,
0: हम लोग प्रकृति इतना खिलवाड़ करते हैं
1: जी,
0: मतलब इसका दोष जो है हम लोग को ही जाता है। इतना बिल्डिंग बन रहा है, पेड़ की कटाई हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं
1: जी,
0: रोड बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमसे परेशान हो चुकी है
1: जी,
0: और उसका दुष्परिणाम है कि आप देखेंगे अभी हम BHU की बात कर लें अपने संस्थान की
1: जी,
0: तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, हम लंका पे गए तो बारिश नहीं हो रही थी
1: जी।
0: अब बताइए इतने 2 किलोमीटर के अंदर में ये वेरिएबिलिटी है, इस तरह से हो रहा है। तो चूंकि BHU में आप देखेंगे पूरा एकदम हरा भरा है
1: जी,
0: कैंपस में पूरा पेड़ वेड़ लगा हुआ है, और वहीं लंका की बात करें तो बहुत सारी बिल्डिंगे हैं, ये हैं वो हैं, तो इसका कहीं ना कहीं असर आप समझ सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है
1: जी।
0: और हम किसान भाइयों से, आपके माध्यम से, आपके ये रेडियो चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे किसान भाई, देखिए अभी क्या है कि बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें आप जितना अधिक से अधिक हो सके पेड़ पौधे लगाएं
1: जी,
0: क्योंकि यही हमारे जो पर्यावरण को बचाते हैं और इन्हीं से हमको शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध वातावरण मिलता है। अगर हम इनसे खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम जो कि अभी आप देख रहे हैं, कहीं बरसात हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं हो भी नहीं रही है, कहीं थोड़ा बहुत हो रही है, ये सब आपको देखने को मिल रहा है।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक असंतुलन बा ओकर दुष्प्रभाव हम लोगन जरूर झेलत है। डॉक्टर साहब चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन के का सहजी हैं?
0: जी देखिए किसान भाइयों, हम आपकी बतावे चाहते हैं कि इस समय जो अनहो की पिछले 3 दिन से आप लोग देखे ना, कहीं कहीं हल्की बरसात, कहीं कहीं हल्की सी मध्यम। जैसे किसान भाई इस समय मक्का के फसल हुई खेत में, अरहर के बुआई करे हुई हैं, मूंग उड़द और विभिन्न प्रकार के सब्जी, लौकी, तोरई, भिंडी जैसे लगेले हुई हैं। किसान भाई ये व्यवस्था करें कि इस समय जो अनहो वो इस सब खेतन में जो है पानी रुके न,
1: बिल्कुल
0: तक अगर रुकी तो जो है कहीं ना कहीं आपकी फसल के नुकसान पहुंचाई, आपके फसल का नुकसान हुई तो कहीं ना कहीं आपको उत्पादन घटी और फिर आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा कमजोर हुई। और साथ में किसान भाई धान के खेत में हम जैसे कि पिछली बार भी बताया रहे कि आप लोग मेड़बंदी करें
1: जी, जी।
0: ताकि पानी खेत में संचित रहे और कुछ समय तक जो ना अगर मान लो बारिश न हो आपका धान जो ना अच्छी तरह से तो मतलब पानी की कमी न रह पाओ भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भल और इतना बढ़िया अपने किसान भाई लोगन के आप जानकारी दिलेन, ये जानकारी से अपन किसान भाई लोग जरूर लाभ उठाई हैं, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।
2: नंदू भैया,
1: अचलू भैया,
2: देखा बरखा बुनी के बाद जहाँ हो रहा बा, बरखा बुनी में सबसे बड़ी चीज आज ई देखे पा, जैसे भी वैज्ञानिक साहब भी बतौलन कि कहीं बरखा हो रहा बा कहीं नहीं हो रहा बा, तो ऐसने भी अपने किसान भाई लोगन के ई करे के चाहिए कि जोन बरखा हो उके संचयन करल जाए।
1: बिल्कुल,
2: तो संचयन करे का कौन कौन विधि अपनावल जा रहा बा इहो तनी बतावे आपके बारे में।
1: बिल्कुल, देखा अपन जो पानी संचयन करे के बाद भैया वो देखा अपन मेड़बंदी करके कर सकला, आ कहीं मेड़ नाला बा भैया तो ओकरे अपन मेड़ के देके पानी के बचा सकला। अब भैया अपन देखा हर जगह आप कर सकला जहाँ तक हो सके भैया, कितना लोगन तो भैया छत के पानी तक के भैया बचा ले वाले।
2: बिल्कुल सही कहते हो ना, देखा कहीं कहीं पोखरा भी बा, पोखरा के माध्यम से भी या अपने ना कहीं छोट नहर कहल जाला या आहर कहल जाला, ओके भी देखा बना करके जन बा उमेन संचयन करल और ओकरे बाद फिर ओकर सिंचाई में भी प्रयोग करेलन अपने आगे आए वाले दिनन में भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही आप बात कहत हो, लेकिन अचुल भी है अब अपन बैठकी आगे बढ़े और हम तक आपकी आवाज जानकारी क्रम

0: जानल जाए कि धान के फसल में व्यवसायिक कृषि कार्य जोन बा का अनुभव अपन बांटत हो जोन बा संतोष कुमार कुशवाहा भैया जोन सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ से हो अपन मुनई भैया के साथ इनकर बात बातचीत बा।
1: लेकिन उससे पहले वो संदेश बा, उस संदेश सुनल जाए।
0: आवाज सुनल जाए।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे हैं?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: किसान भाई लोग देखें, आज देखें अपने कार्यक्रम में हम लोगों के साथ हवा संतोष कुशवाहा भैया, आप एडीओ एजी राजगढ़ में हवा। अच्छा ये बताओ कि जौन किसान भाई लोगों के इसमें जैसे नर्सरी तैयार बा या अभी नर्सरी नहीं तैयार, रोग जोग से ग्रस्त हो जाती है मौसम में, तो वो किसान भाई लोग का करें?
6: जी, जैसे धान की ये समय नर्सरी लोग का लगभग 15 से 20 दिन या 10 से 15 दिन हो गए हैं, तो उसमें देखेंगे कि नर्सरी डालने के बाद 10 से 20 दिन के अंदर में घास हो जाता है बहुत ज्यादा।
5: जी जी,
6: वो घास को नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि आप अभी अगर नियंत्रण नहीं करेंगे तो वो आपकी नर्सरी के साथ साथ आपके खेत तक वो चला जाएगा, और जिस समय आप नर्सरी को निकालेंगे उस समय भी कहीं ना कहीं ज्यादा तकलीफ देगा और परेशानी होगा। जहां एक दिन का काम होगा वहां तीन दिन होगा।
5: जी।
6: तो आप एक छोटी सी दवा का आप जो प्रयोग है उसको कर लेंगे, उसमें केमिकल का, तो आपको जो बिस्पायरी बैक सोडियम होता है
5: जी जी,
6: जिसको अगर किसान की भाषा में कहें तो नामनी गोल्ड जानते हैं, तो उसका अगर हम लगभग 8 से 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से हम अगर उसका स्प्रे कर लेंगे तो आपका जितने भी घास वर्गी है उसमें वो आपका नष्ट हो जाएगा, और आपका केवल नर्सरी बचेगा, तो उसका विकास भी अच्छा होगा, और जब विकास अच्छा होगा तो उसमें थोड़ा सा खाद डाल करके जब स्थिति अच्छी है तो आप तुरंत नहर चल रहा होगा या आपके पास व्यवस्थाएं हैं तो उससे आप पानी भरते हुए अपने खेत में नर्सरी को उखाड़ करके लगवाएं, और नर्सरी उखाड़ करके लगवाने के बाद उसमें लगभग 72 घंटे के अंदर प्रीटिला क्लोर या ब्यूटा क्लोर का आप प्रयोग करेंगे तो उसमें जो खरपतवार, जैसे हम लोग अभी बहुत सारे जगहों पे धान लग रहे हैं, तो उसमें ब्यूटा क्लोर या प्रीटिला क्लोर का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि उससे प्रयोग करने से आपको यही होगा कि जो भी खरपतवार है वो निकलने नहीं पाएगा या उसको खेत को प्रभावित नहीं करेगा, फसल को आपको प्रभावित नहीं करेगा, तो इसका जरूर आप लोग ध्यान देंगे कि फसल जो ही शुष्क होगा या जमीन आपका शुष्क होगा तो घास की मात्रा या जो वो तो ऐसे ही सहनशील ज्यादा है तो वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा और हमारा फसल दबने लगेगा, और जब दबने लगेगा तो कहीं ना कहीं हमारा फसल को प्रभावित करेगा।
5: अच्छा संतोष जी, जौन अपन किसान भाई लोग धान के इसमें रोपाई करत हुआ
6: जी,
5: और देखत हुआ आपकी मौसम रोपाई के अनुकूल नहीं, फिर भी कटकरेजी अपन किसान
6: जी,
5: भाई लोग करत है कि खेत खाली कैसे रही
6: जी,
5: तो वो किसान भाई कौने कौने बात का प्रमुख रूप से ये समय ध्यान रखा
6: जी? ये समय सभी जो किसान हैं जो लगा रहे हैं या जिनको लगाना है उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अपने खेत का मेड़
5: जी
6: जरूर व्यवस्थित कर लें, टाइट कर लें, जिससे कि थोड़ा सा भी बारिश हो तो उनके खेत से पानी न बाहर जा पाए, तो वो जो भी थोड़ा बहुत बारिश हुआ या जितना भी बारिश हुआ, बारिश तो होगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी बारिश होगा वो उनके ही खेत में रहेगा, उनके खेत की नीचे ले संग्रह होगा और कहीं ना कहीं वो सभी जगह के लिए फायदेमंद होगा, और बह करके नदी नाल ताल तलैया में नहीं जाएगा, तो हमारा हमारे ही क्षेत्र के लोगों का उसमें लाभान्वित होंगे। तो ये हमको सबसे पहले मेड़ को मजबूत कर लें, खरपतवार का जो भी है उसमें खरपतवार न रहने दें या उससे बचाने के लिए हमको तरीका जो भी प्री इमरजेंसी

0: पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, और उसके बाद 10 से 15 दिन, कहीं कहीं 10 से 15 दिन की फसल हो भी गई है धान की, जहां पे लगा दिए हैं, जहां पे नहर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दीमक की, टर्माइट जो होती हैं, दीमक का प्रकोप होता है। और एक और ग्रब होता है, ग्रब वो जैसे दीमक से कीड़े जैसा होता है, तो दोनों अलग अलग चीज है, दीमक और ग्रब। तो उसमें देख लें, क्योंकि वो तुरंत सूखा स्थिति होगा, इसमें सूखा ही आ रहा है बार बार, तो जो है सूखा होगा वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे और आपकी फसल को कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे। तो जब भी पानी की स्थिति हो उसमें क्लोरपाइरीफास का इस्तेमाल करेंगे, या फिप्रोनिल एक दवा आती है उसका भी आप, एक क्लोरपाइरीफास केमिकल रूप उसमें आता है आपका लिक्विड फॉर्म में, और वो आता है ग्रेनुलर फॉर्म में, तो अगर आप छींट देंगे और उसमें नमी रहेगा या पानी रहेगा तो पूरे खेत में वो फैल जाएगा, तो जिससे कि आपको कीट रोग बीमारी से भी बच जाएंगे और आपका फसल भी अच्छा चलने लगेगा। इसके बाद जो ही आपका लगभग 30-35 दिन 40 दिन का होगा, उस समय भी आपका फसल में घास की स्थिति आएगी। एक तो शुरुआत लगभग 8 से 10 दिन में आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है, और इसके बाद आपका 30 से 35 दिन में खरपतवार नाशी है, तो खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं, या उस समय खरपतवार कम होते हैं उसमें आप निराई गुड़ाई अपने यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं, और लेबर जो मजदूर लगा करके भी उसको एक एक दो दो होता है उसको निकाल देंगे, तो उसमें आपका बेहतर लाभ होने की संभावना रहेगी पूर्ण रूप से।
1: बिल्कुल सही बात कहत हुआ संतोष जी। अच्छा, धान के फसल में जौन अपन किसान भाई लोग हुआ वो उर्वरक प्रबंधन भैया कैसे करें?
0: जी, उर्वरक में किसान भाई इस समय जो भी ढैचा भी फसल में बोए होंगे, तो जो किसान ढैचा में प्रयोग किए होंगे तो उसमें जो एनपीके है इसको कम मात्रा में भी देंगे तो उसमें आपका हो जाएगा, काम चल जाएगा। अगर नहीं ढैचा का प्रयोग किए हैं उसमें जो रिकमेंडेड है 120-60-60, तो आप जो यूरिया की मात्रा है इसको आपको 3 शिफ्ट में करना है, जो 120 केजी है उसको 3 शिफ्ट में करेंगे। जो पोटास और आपका डीएपी है उसको आप फसल की जो रोपाई से पहले या जो हम खेत तैयार करते हैं उसी समय हम अपने खेत में बेसल ड्रेसिंग के रूप में उसको कर देंगे और रोपाई कर देंगे, तो उसमें हमारा जो है पौधे का ग्रोथ होने लगेगा, और जो ही ग्रोथ होने के बाद लगभग 1 हफ्ता 10 दिन में पौधा हरा होने लगता है धान का, तो हमको उसको फिर बेसल डोज जो तीसरा भाग जो बचा हुआ है उसको हम प्रयोग करते पड़ेंगे। इसके बाद 35 से 40 दिन के अंतराल पे फूल आने से पहले हम कर लेंगे उसका यूरिया का प्रयोग, और उसके साथ साथ हो सकता है कि अगर कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ हम जो एनपीके एक आता है या नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का या कंसोडिया का, ये सब भी हमको कुछ न कुछ प्रयोग करना चाहिए। इससे हमको एक, जैसे हम लोग नसों में जैसे अपने बीमार होते हैं तो नसों में सुई लगाते हैं, तो ये उसी तरह का ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो पोटास ये सब काम करेगा। तो हो सकता है कि जहां हम एक एक दो दो बोरी यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं वहां हम एक स्प्रे में भी काम चला सकते हैं, तो जैसी आपकी खेत की स्थिति है उस हिसाब से भी आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच कराने के आधार पे या जैसा आपका खेत का रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ऊपर नीचे है, तो जिस स्थिति में जहाँ की स्थिति परिस्थिति जो भी यूरिया डीएपी पोटास की जिंक की मात्रा की आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम प्रतिपूर्ति करते हैं। जहाँ अभी जो किसान भाई नर्सरी होंगे, नर्सरी में वहां देखते होंगे कि एक पीला कलर में पूरा आ जाता है, उसमें देखेंगे कि इधर तो शायद नहीं दिखता है कहीं, एक आध दो खेतों में दिखता है जिसमें मिट्टी निकाल ली जाती है, निकालने पे उसमें आयरन की उस खेत में ज्यादा कमी दिखता है, तो उस खेत में हमको फेरस सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ जो नर्सरी होता है उसमें धब्बा टाइप में, नाव के टाइप में जिंक की कमी दिखता है, वो चित्तीदार दिखता है जिंक की कमी, तो वो जिंक की कमी की पूर्ति के लिए हमको जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे तो हमें यूरिया के साथ, तो हमें कहीं हद तक हमको लाभ होगा, और जो अगले फसल को हम जब रोपाई करेंगे तो वहां तक वह फसल में बीमारी नहीं जाएगी। तो इसको हमको प्रयास करके करते रहना है अपनी फसल को देख रेख के लिए।
1: अच्छा, रोग जो कभी समस्या

0: धान में
1: जी
0: आवल है।
1: जी बिल्कुल, रोग हमारा शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। जैसे हम यूरिया, डीएपी, पोटास या अन्य चीजों का समावेश करके खेत में ज्यादा मात्रा में अगर हमारा एक तरह से लग्जरी
0: जी
1: लग्जरी हो जाता है, तो उस स्थिति में बीएलबी जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, ये रोग लगभग हर खेतों में पाया जाता है।
0: जी
1: तो इसके लिए हमको जो है वो आता है फंजीसाइड, उसका हमको प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। जैसे कार्बेंडाजिम अगर लोकल स्तर में देखें, कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर लेंगे। उससे अगर ज्यादा स्थिति में है तो मैंकोजेब का या फिर हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, ये सब दवाएं टेक्निकल थोड़ा सा ज्यादा उस तरह से आते हैं जिस हिसाब से हमको आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम प्रयोग करेंगे। और बहरहाल हमको प्रयास करना चाहिए कि पहले से ही हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल का प्रयोग एक फ्लावरिंग से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि एक कंडुआ की बीमारी ज्यादा आती है।
0: जी जी
1: जैसे हम लोग अभी धान लगाएंगे, धान लगाने के बाद लगभग 1 महीने 45 दिन 50 दिन के बाद हमारा जब फ्लावरिंग आएगा, तो फ्लावरिंग में देखेंगे कि जो ही उसमें दाना भरने की स्थिति हुआ, फिर उसमें आपका पूरा उसमें हल्दी कलर का
0: जी जी
1: उसमें आ जाएगा। और जब हल्दी कलर का जब आएगा तो उसको फिर उस समय कोई निदान नहीं है। और इसलिए प्रयास करते हैं कि पहले से ही हम एक फंजीसाइड का भी प्रयोग कर लें। जैसे कोई कीटनाशक डाल रहे हैं तो उसी के साथ, जैसे अभी 30-35 दिन पे कोई कीटनाशक डाल दें तो उसी समय फंजीसाइड का अवश्य स्प्रे कर लें। और एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवा आती है,
0: जी
1: वो बैक्टीरियोसाइड होती है जो बैक्टीरिया को मारता है, तो वो भी हमको प्रयास करके डाल ही देना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक रोग को देख करके अगर हम दवा डालेंगे तो लगभग 3-4-5 बार दवा को प्रयोग करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल
1: अगर हमें अगर जिस हिसाब से जिस खेत की आवश्यकता या जिस फसल की जिस जैसी आवश्यकता हो, उस हिसाब से हमको जरूर करना चाहिए कि बीएलबी के लिए भी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो दवा आती है उसको जरूर प्रयोग करें। और जब हमको ये पीला वाला जो कंडुआ की जो समस्या आती है, उसमें विकट स्थिति में आपको कापर ऑक्सीक्लोराइड अगर आप प्रयोग करते हैं तो
0: जी
1: उसमें ज्यादा बेहतर लाभ मिलता है। उसमें प्रायः यही बताया जाता है कि आप लोग जिस खेत में अगर वह कंडुआ की समस्या आई तो उसमें फसल को बदल दीजिए और वैरायटी को बदल दीजिए। फसल नहीं बदल पा रहे हैं तो वैरायटी को बदल दीजिए, जिससे कि आपको उसमें कंडुआ की समस्या ना आए और आपको भविष्य में भी उसकी सामना ना करना पड़े। क्योंकि आपको लगभग 20 से 30% तक वो बीमारी आपको क्षति पहुंचा सकता है।
0: संतोष भैया, आज आप अपने कार्यक्रम में शामिल भईना और इतना बढ़िया जानकारी अपने किसान भाई लोगन के देलेन, किसान भाई लोगन का जो समस्या रहा हो ओकर समाधान कैलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: अचलो भैया।
7: हाँ नंदू
6: भैया, देखा कुछ संदेश भी सुनल गेल और धान के फसल में व्यवसायिक कृषि कार्य कैसे करल जाए, अपन संतोष कुमार कुशवाहा भैया रहल जोन सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ से रहल है, अपन मुनय भैया से बात बत कही भेल। भैया हो देखा, सजगता बहुत जरूरी बा, काहे से कि तनको भी सजगता हटल तो परेशानी भैया बढ़ जाला। तो एक चीज और देखा थे तोरे हाथ में, चलो भैया के पाती लग गेल बा मधुपुर के।
7: मधुपुर के पाती तो लगल बा, कहल जाला ना कि किसान का एगो आंख जोन
6: भैया बाजार में एगो खेत में
7: खेती में रहेला। तो देखा आज मधुपुर मंडी से पुनवासी भैया जोन बा अपन बाजार भाव भेजले हुन, तो देखा ललकी आलू जोन रहे वो 1200 रुपया प्रति क्विंटल रहे, सफेद की आलू 1000 रुपया, प्याज 3000 रुपया प्रति क्विंटल।

0: टमाटर 2500, बोड़ा 2000 रुपया, कोहड़ा 800, अरुई 2500, बंडा 2800, लंबा बैंगन 2000 रुपया, गोल बैंगन 3200 रुपया, परवल 3000 रुपया, लौकी जनरल 1200 रुपया प्रति क्विंटल, करेला 3200 रुपया, भिंडी 1500 रुपया, नेनुआ 2000 रुपया, कुंदरू 1800 रुपया, तुरई 2000 रुपया, और मूली जो रहल 2500 रुपया, हरी मिर्च 6000 रुपया, लहसुन 10000 रुपया प्रति क्विंटल, धनिया 10000, पालक 1500 रुपया, अदरक 14000 रुपया प्रति क्विंटल, सूरन जो रहल 4000, कटहल 1500, खेक्सा 6000 रुपया, खीरा 3200 रुपया, मकई 1200 रुपया, पपीता 2000 रुपया, गाजर 2800 रुपया, शिमला मिर्च 6000 रुपया, चुकंदर 2500 रुपया प्रति क्विंटल रहल, और फूल गोभी जो रहल 3500 रुपया प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 3000 रुपया प्रति सैकड़ा, और नींबू जो रहल 300 रुपया प्रति सैकड़ा
1: तो
0: रहल।
1: भैया आज के रहल ही ताजा बाजार भाव मधुपुर मंडी के, तो पुनर्वासी चौहान भैया के और देखें अपन संतोष भैया के दोनों के जोन बा अपन एगो मन फेर से
0: तो मनफेर जोन बा राम आशीष मौर्य भी अपने संगाती लोगों के साथे जोन बा एगो किसानी गीत के माध्यम से करावत हुए, तो तनिको न हो देर हो जाएगो
1: मन फेर
0: मनफेर।

0: नंदू भैया
1: अचलो भैया।
0: देखा कितना अच्छा मन फेर हो रहा बा किसानी गीत के माध्यम से। राम आशीष भैया और अपने संगाती लोगन के दम माध्यम से करावत हुन। और भैया देखा कल ही जब अपने किसान भैया बदे कुछ बातचीत हुई तो उनमें कृषि आधारित बागवानी से आय में वृद्धि ये विषय पर अरविंद कुमार तिवारी भैया से अपन भोला भैया के बात बतकी आकर के सुनल जाए। और लेकिन देखते कि देखा मौसम का भी इस समय बड़ा
1: बिल्कुल बिल्कुल चला चलाओ, हम तो यह कहब कि

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म नसीहत से, जिसे लिखा है अनजान ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, आवाज़ साधना सरगम की है।

0: आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म ईमानदार में। गीत को लिखा था प्रकाश मेहरा ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात

0: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
1: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
0: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
0: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आपकी बात, ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा रात्रि 10:30 पर। राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण का प्रसारण समय रहेगा रात 10 बजे का, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:23 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपके लिए।

सुगम संगीत कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात 8:30 का। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:15 पर। रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा। और राज्यस्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुना जा सकेगा रात 10:00। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को सरकार देगी मुफ्त स्कूटी। 12 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रस्तावों में 3 अगस्त से विधानसभा के मॉनसून सत्र, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और विंध्य एक्सप्रेसवे जैसे अहम फैसलों को सहमति प्रदान की गई। कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेसवे 333 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि प्रयागराज से शुरू होकर भदोही मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा विंध्य पूर्वांचल स्पर लिंक को भी स्वीकृति दी गई। श्री खन्ना ने बताया कि 3 अगस्त से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा। आगामी सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे।
1: राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का आगामी सत्र 3 तारीख को प्रारंभ होकर 6 तारीख तक चलेगा और इसमें सप्लीमेंट्री भी आएगी।
0: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दिए जाने के बारे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना में इस वर्ष करीब 50,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। इसमें राज्य के उच्च संस्थानों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त स्नातक छात्राओं में से शीर्ष 5% छात्राएं इसकी पात्र होंगी।
2: इसमें उच्च संस्थानों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त छात्राओं में से जो टॉप 5% होंगे, उन छात्राओं की मेरिट के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। जिनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए वार्षिक से कम, एक तो ये प्रावधान है। दूसरा, इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्कर ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को।
0: उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके परिवार की आय सीमा 12 लाख वार्षिक से कम होगी। साथ ही छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव, वाराणसी में 500 बेड के अत्याधुनिक कामकाजी महिला छात्रावास, अग्निशमन तथा आपात सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 25,78,00,000 रुपए के प्रस्ताव, यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद ने प्रदेश में विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती ने विकास की नई ऊंचाइयों को

0: छुआ है।
1: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से श्रावस्ती भी एक था। पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच में महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार में योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्यों और प्रगति के जरिए पिछले 9 सालों में प्रदेश की नई पहचान बनाई है।
2: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी

0: ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल अहम बैठक होगी। बैठक में ट्रस्ट के नियमों के अनुरूप विभिन्न समितियों के पुनर्गठन, मंदिर के सीईओ समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। बैठक से पहले आज प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
2: भगवान श्री रामलला मंदिर के छावा विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होने वाली दूसरी बैठक के लिए इसके सदस्य अयोध्या पहुंचने लगे हैं। बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव के पद और न्यासियों के 3 खाली पदों पर विचार विमर्श करेगा और राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। वहीं कल होने वाली बैठक के मद्देनजर एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी और एडीएम सिटी योगानंद पांडे ने आज बैठक स्थल के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा के विपणन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसमें 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के 4th दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। दीक्षांत समारोह में 22,315 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। लखीमपुर खीरी के पलियांकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब है। वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। हमीरपुर में पिछले 24 घंटों में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित

0: ताकि कहीं कहीं जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। शिव कुमार सेठी, आकाशवाणी समाचार, हमीरपुर।
1: मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने कल राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को सरकार देगी मुफ्त स्कूटी। 12 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर, कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
3: एक 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म बंटी और बबली से, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाज़ सोनू निगम और महालक्ष्मी की है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए अब सुनिए फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: अब आप सुनने जा रहे हैं फिल्म वास्तव का ये गीत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

सागर, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024

0: और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खरगे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खरगे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में दो सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित

करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में आईसीपी शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। फिल्म थी मैंने प्यार किया। आइए अब सुनते हैं फिल्म देवानगी का ये गीत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीत को लिखा है सलीम बिजनौरी ने और संगीत दिया है स्माइल दरबार ने।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: सोनू निगम और अलका याग्निक की गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: स्वामी हरसेवानंद शिक्षण संस्थान,
2: स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल चूर्क और घोरावल के साथ ही साथ उच्च शिक्षा में लाया है बेहतर विकल्प।
1: स्वामी हरसेवानंद पीजी कॉलेज चूर्क में बीए बीएससी बीकॉम बीबीए
2: एमए एमएससी एमकॉम में प्रवेश प्रारंभ है। ज्ञान संस्कार और सफलता की सशक्त पहचान,
1: स्वामी हरसेवानंद शिक्षण संस्थान।

0: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
2: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
5: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
2: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
6: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे, हर मंत्रालय को कहा जा रहा है इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय कि आप रिफॉर्म्स लाइए, आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है, आप सुझाव देंगे हम करेंगे रिफॉर्म्स, कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
2: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
7: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जाँच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
8: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवारों को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
2: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
9: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
2: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
10: ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के हॉर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचेस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म आदमी में। गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था नौशाद ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म मर्यादा का ये गीत मुकेश की आवाज़ में।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गीत है बाबुल सुप्रियो की आवाज में, फिल्म है नाम गुम जाएगा।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

शान और महालक्ष्मी को अभी आपने सुना फिल्म रिश्ते में। गीत लिखा था अब्बास कटका ने और संगीत तैयार किया था संजीव दर्शन ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म फ्लाइट क्लब का ये गीत, जिसको लिखा है निलेश मिश्रा ने और संगीत दिया है प्रीतम ने। आवाजें हैं शान और श्रेया घोषाल की।

लता मंगेशकर और अमित कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म पुलिस पब्लिक में। गीत को लिखा था असद भोपाली ने और संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म साया में। गीतकार हैं अनु मलिक और संगीतकार MM क्रीम।

0: आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम प्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं नमित राज, और प्रस्तुति है आकाशवाणी नजीबाबाद की। कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपको सुनवाएंगे 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एथलेटिक्स कोच तरुण सहरावत से भेंटवार्ता। नेपाल और भारत के बीच खेली गई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी श्रृंखला में भारत की ओर से प्रतिभाग करने वाले कबड्डी खिलाड़ी तनिष कुमार से भेंटवार्ता, और साथ ही आप सुनेंगे इस हफ्ते के प्रमुख खेल समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का ये सफर बीते हफ्ते के प्रमुख खेल समाचारों के साथ। खेल समाचारों की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेले गए फुटबॉल विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप की ट्रॉफी जीत ली है। रोमांच से भरे फाइनल मुकाबले में निर्णायक गोल दागा स्पेन के फेरान टोरेस ने। वहीं स्पेन के कप्तान रोड्रिगो पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। गोल्डन बूट का खिताब फ्रांस के किलियन एम्बापे को दिया गया, जिन्होंने टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 10 गोल दागे। तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर फ्रांस ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस बार के विश्व कप में पहली बार कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया, जो अब तक के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला को इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम किया। श्रृंखला का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला गया, जिसमें मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी और 27 रनों से ये मुकाबला हार गई। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने शानदार 138 रनों की शतकीय पारी खेली। इस मैच में हरफन मौला खेल दिखाने वाले जैकब बेथेल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने 91 रन बनाने के साथ एक विकेट भी लिया। वहीं जो रूट को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान जापान की स्टार खिलाड़ी अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-17, 21-17 से हराकर पहली बार जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। 31 वर्षीय पीवी सिंधु इस जीत के साथ ही जापान ओपन

0: जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी। इस बार की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित होगी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले इस 30वें संस्करण में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी 5 श्रेणियों पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल में खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 2009 के बाद पहली बार भारत में वापसी कर रहा है। भारतीय दल में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के नेतृत्व में 10 भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। अगली खबर बॉक्सिंग से। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एशियन अंडर 19 एवं अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीते। भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अंडर 19 महिला वर्ग में भारत ने 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक जीते। 51 किलोग्राम भार वर्ग में चंद्रिका भोरेश पुजारी और प्राची ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं अंडर 23 महिला वर्ग में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। वहीं पुरुषों में स्वर्ण पदक विजेता रहे 50 किलो भार वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और मुक्केबाज गंगा ने 55 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले महिला हॉकी विश्व कप के लिए शुक्रवार को भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी जबकि सोर्ड मराइन मुख्य कोच की भूमिका में रहेंगे। विश्व कप के लिए उसी टीम को चुना गया है जिसे कुछ दिन पहले एशियाई खेलों के लिए चुना गया था। कुश्ती में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक अपने नाम किए। भारत ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। भारत के लिए अमन सहरावत ने 57 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं में नेहा सांगवान ने 59 किलो और काजल ढोचक ने 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा अंतिम पंघाल, मानसी अहलावत और हंसिका लांबा ने अपने अपने भार वर्ग में रजत पदक जीते। साल 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इन खेलों में 126 भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। बीते हफ्ते के प्रमुख खेल समाचारों को जानने के बाद आइए कार्यक्रम खेल दर्पण के इस अंक को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एथलेटिक्स कोच तरुण सहरावत से भेंटवार्ता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पहले भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की और फिर खेल के मैदान में देश का गौरव भी बढ़ाया। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं तरुण सहरावत। मैं एक नजीवाद तहसील के एक छोटे सा गांव पड़ता है चमरौला
0: जी,
1: मैं उसका निवासी हूं। और मेरे फादर मुझे MBBS कराना चाहते थे। अब मेरी रुचि क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्षेत्र कंपटीशन था एथलेटिक्स का, तो महावीर PTI जी थे एक हमारे, तो मैं बोला सर मैं भी खेलने जाऊं। बोला नहीं नहीं पढ़ाई करो।
0: अच्छा।
1: मैं चला गया। अगले दिन मैं चुपचाप वहां जहां कंपटीशन होता वहां गया
0: जी।
1: तो मेडल तो नहीं आया वहां, कोई प्लेस नहीं आई, मगर PTI ने मुझे देख लिया, बोला इधर आ। तो मेरे 2-3 रैपर्ड उसने साहब मारे।
0: अच्छा।
1: वह उसी टाइम ही पता नहीं क्या हुआ, मन ये किया कि अब मैं करके दिखाऊंगा। गांव में नहर थी, नहर पर प्रैक्टिस करता था मैं
0: जी।
1: नहर पे प्रैक्टिस कर करके मैं अपना जिला स्तर का कंपटीशन खेला, वहां मेडल आए। फिर मंडल स्तर 4 जिलों में खेला, वहां मेडल आए। तो ललक ये थी कि बस इंडिया खेलना। उस टाइम पर PTUSA भागती
0: थी जी। अच्छा, उस समय आपकी उम्र क्या थी?
1: छोटा था, 6th क्लास में
0: थे आप। और 6th क्लास में आपने PTUSA,
1: हाँ, PTUSA
0: को देख के शुरू किया था।
1: PTUSA जी थी, उनके मेरे पापा उनकी कहानियां सुनाते थे
0: जी।
1: तो बस यही उन्हीं की देखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। और एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए, कोच नहीं मिला, फिर भी मैं हौसला नहीं छोड़ा। स्टेट चैंपियन में गए, वहां से मैं फिर जूनियर नेशनल में मेडल दिया
0: जी।
1: उसमें गोल्ड था, फिर यूनिवर्सिटी आया खेलने के लिए, जब इंटर हो गया वहां से मेरा सिल्वर मेडल था।
0: तरुण जी, खेलों की दुनिया से निकल आप सेना में भर्ती हुए,
1: जी
0: ठीक है, तो जो सेना का अनुशासन था
1: जी
0: वो कितना काम आया खेलों में?
1: सर, जब हम फौज के अंदर गए तो कुछ थोड़ा सा ऐसा था कि यार इनडिसिप्लिन टाइप रहता सिविल आदमी। जब हम वहाँ गए, हमने थोड़ा सा ट्रेनिंग भी किया
0: जी
1: और ट्रेनिंग में ये पता चला कि यार ये जो जो हम एक डिसिप्लिन में बॉडी रखते हैं, ये हमारे माइंड को भी फोकस करता, हमारी बॉडी को भी फोकस करता, तो डिसिप्लिन तो मस्ट है, उसके बगैर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते।
0: अच्छा, जैसे सेना में आप थे तो एक तो सेना की ड्यूटी होगी, एक आप खेल भी खेल रहे थे, तो दोनों को मैनेज कैसे करते थे?
1: ड्यूटी तो कभी कभी देनी पड़ती थी
0: अच्छा,
1: क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, और कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता कि मेरा स्पोर्ट्समैन अगर ड्यूटी देगा ज़्यादा तो फिर प्रैक्टिस में मेडल नहीं ला पाएगा। फिर भी ऐसा नहीं था कि हम फ्री सो रहे थे, हम ड्यूटी भी देते थे, कुछ ऐसी ड्यूटीज थी जो हम कर सकते थे। और हमारे जो बड़े सीनियर थे, कोचेस थे, उन्होंने यही सिखाया था कि यार कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा तो
0: खोना पड़ता
1: खोना
0: है
1: पड़ता,
0: जी।
1: तो ये चीज़ें तो नॉर्मल थी कि ड्यूटी वगैरह ये तो नॉर्मल हो जाती है, मगर एक मेडल लाने के लिए जो हमारा संघर्ष था वो कड़ा था
0: बिल्कुल
1: जी। उसमें डाइट फोकस हो जाता, उसकी मेहनत हो जाती, कभी कभी ऐसा होता है कि इंजरीज आ जाती हैं, कभी हैमस्ट्रिंग खिंच जाना,
0: जी।
1: कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाना, तो उससे क्या होता था, डिस्टरबेंस तो होता था एक खिलाड़ी को।
0: जी, अच्छा, आपने तरुण जी इंजरीज के बारे में बात की, चोट भी लग जाती है, तो ऐसे में हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा वीक कहीं ना कहीं होने लगता
1: बिल्कुल
0: है,
1: सर।
0: तो उससे कवर अप कैसे करते हैं अपने आप को?
1: सर, जब एक स्पोर्ट्समैन को इंजरी हमें भी हो जाती है,
0: जी
1: और होता क्या है कि हम लोग एक्स्ट्रा कर जाते हैं कुछ वर्क,
0: अच्छा।
1: जैसे अभी हैमस्ट्रिंग खींचने का मैटर हो जाता है कि भैया तुमने उस पर ज़्यादा लोड कर दिया इसलिए वो खींची, और एक कोई भी मसल खींचने के लिए कम से कम नहीं तो 4 से 5 दिन लगते हैं सही होने के लिए।
0: जी
1: हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं तुरंत एकदम, यार मेरा कंपटीशन आ गया। मैं भी स्पोर्ट्समैन होता क्योंकि वो मेहनत करने वाला बंदा होता, रेस्ट कैसा करे,
0: बिल्कुल।
1: अंदर से इतना दर्द होता कि वो जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ होता
0: अच्छा,
1: रहता
0: एक चीज और होती है कि
1: है।
0: जैसे एक तो अगर हम कंटिन्यू किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें अगर बीच में ब्रेक हो गया 10-5 दिन का, तो
1: जी
0: वो भी बड़ा फर्क
1: बहुत
0: हो
1: सर,
0: जाता है।
1: वो फर्क इतना पड़ता है कि अगर हमारी ट्रेनिंग 10 दिन छूट चुकी है
0: हाँ
1: तो हम 3 महीने पीछे चले जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: उस बॉडी को कवर करने के लिए हमको कम से कम नहीं तो 15-20 दिन तक लगना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे अपनी उस जर्नी की जब तक आप सेना में रहे,
1: जी
0: तो रिटायरमेंट क्यों लिया था?
1: सर, इसका एक मेन कारण ये था कि जब मैं कभी इंडिया लेवल या फिर बाहर खेलने जाता था तो
0: जी
1: अपने क्षेत्र का बच्चा बड़ा कम निकलता था,
0: अच्छा।
1: तो मुझे ऐसा लगा यार मैं अगर मेरी सर्विस पूरी हो गई है, पेंशन मेरी मिलने लगी है,
0: जी
1: तो यार मैं चलता हूँ और अपने क्षेत्र के बच्चों को निकालने का काम करूँगा
0: अच्छा।
1: जी। मैंने उसी के खातिर NIS किया, योगा कोर्स किया, न्यूट्रिशन का कोर्स किया कि मैं एक जब बच्चों को सिखाना जाऊं तो मेरे पास सब कुछ हो जो प्रॉपर मैं उसको फेस करा सकूं।
0: NIS का आपने जिक्र किया, NIS के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना
1: जी
0: चाहेंगे?
1: सर, NIS होता है एक अच्छा कोच बनाने के लिए,
0: अच्छा।
1: उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि आपका कई सारे इवेंट मिलते हैं उसमें जो एथलेटिक्स के, जैसे एथलेटिक्स वाला NIS कर रहा है या फिर कुश्ती में कर रहा है या फिर किसी और इवेंट में कर रहा है,
0: जी
1: अलग अलग इवेंट के अलग अलग होते हैं, वहाँ पढ़ाई होती है पूरी तरीके से, कैसे हम बच्चों को फेस करा दें।
0: अच्छा।
1: हाँ, 0 से बिल्कुल एकदम, जब लास्ट में 1 साल हो जाता है, टेस्ट होते रहते हैं बीच में, 1 साल का होता है या पटियाला होता है, ग्वालियर होता है, कोलकाता में भी होता है, तो मैंने जो किया था वो पटियाला किया था।
0: अच्छा।
1: पढ़ाई भी बढ़िया होती है वहाँ, पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर हर एक टेस्ट को पास करना पड़ता
0: जैसे आपने कहा कि जो खेलों में प्रशिक्षण देना चाहते हैं
1: जी।
0: उनके लिए ये कोर्स होता है,
1: यस
0: तो कौन अप्लाई कर सकता है इसमें,
1: सर,
0: कौन?
1: अभी तो इसमें कैटेगरी रख दिया कि आपका नेशनल में मेडल होगा तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो
0: अच्छा,
1: जी।
0: मिनिमम क्वालिफिकेशन
1: हाँ,
0: नेशनल
1: नेशनल में
0: का।
1: मेडल,
0: जी
1: या फिर आप कोई ऐसा ओपन नेशनल खेल रहे हो जो हाई लेवल की गेम है और आपका मेडल भी नहीं आया, क्वालिफाई भी कर दिया तो भी आप खेल सकते हो।
0: अच्छा।
1: इसके लिए शॉर्ट भी है, 6 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स भी है NIS का, आप उसको कर सकते हो, उसमें भी प्लेटफॉर्म है।
0: यानी जो प्रशिक्षण वहां पे प्राप्त कर रहे हैं इनका भी फिटनेस टेस्ट
1: बिल्कुल
0: होता
1: सर,
0: होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छा, इस दौरान ही आपका जो ये खिलाड़ी वाला सफर था, जो आप
1: जी
0: बाधा दौड़ के प्लेयर हैं, तो ये भी चलता रहा कंटिन्यू
1: यस
0: साथ में,
1: जी जी
0: तो थोड़ा सा वहाँ का अनुभव हम जानना चाहेंगे कि

0: आपने एशियन गेम्स में परफॉर्म किया और वहां पे सिल्वर मेडल आपको प्राप्त हुआ, कैसा लगा ये उपलब्धि पाकर?
1: सर मैं जब खेलने के लिए गया तो अनुभव ये रहा कि मैंने ये देखा कि यार हमारे इंडिया से बाहर का कंट्रीज का वहाँ एक तो टेक्निकल फेयर ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं, और दूसरा वहाँ के कोच अव्वल दर्जे के हैं। हमारे इंडिया में भी हैं बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। थोड़ा सा क्या ना कि माहौल नहीं मिल पा रहा, दूसरा ट्रैक नहीं मिल पा रहा किसी फील्ड पे जाने के लिए। अभी मैंने एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ओपन किया है जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस एथलेटिक्स की, एथलेटिक का फिजिकल फिटनेस होती है वहाँ। जब आप अच्छे लेवल का फिजिकल फिटनेस करोगे तभी तो किसी गेम में जाओगे।
0: हाँ बिल्कुल,
1: उसका टेस्ट होते रहते हैं स्किल टेस्ट, स्पोर्ट्स के रनिंग के हों चाहे फिर किसी भी चीज़ के हों, तो फिर डिसाइड होता है कि भैया इसको इस गेम में उतारा जाए, 100% रिजल्ट देगा।
0: तो क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप वहाँ, क्या क्या कराते हैं बच्चों को?
1: सर मैं वहाँ बच्चों को एथलेटिक्स का ऑल गेम कराता हूँ,
0: जी
1: जितने भी गेम है चाहे वो जैवलिंग हो, लॉन्ग रेस हो, 100 मीटर हो, हर्डल्स हो, या फिर लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, सबका हम बढ़िया से उनको
0: जी
1: इवेंट वाइज जो प्रैक्टिस कराते हैं। दूसरा फिजिकल फिटनेस बहुत अव्वल दर्जे का, हम लोग उनको भी ट्रेनिंग देते हैं जो अभी फिजिकल फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस की हो गई या आर्मी की हो गई, उनको भी तैयार करते हैं। हाँ जो बड़े बच्चे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बच्चे हैं जो अभी स्टेट खेलने जा रहे हैं या जिला स्तर में गोल्ड मेडल है, जो स्टेट में मेडल है, नेशनल की तैयारी भी कर रहे हैं, उस टाइप के बच्चे भी हमारे पास हैं।
0: आगामी अगस्त में
1: जी
0: आपका सिलेक्शन हुआ है दक्षिण
1: जी
0: कोरिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी?
1: सर काफ़ी ज़्यादा तैयारी उसके लिए मेरी, और कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे में वर्क कर रहा हूँ सर। बिजनौर हमारा भी कच्चा ट्रैक है, वहाँ से मुझे स्पीड वर्कआउट करने के लिए, हर्डल्स पे वर्कआउट करने के लिए मैं हरिद्वार जाना पड़ता है मेरे को, हफ्ते में 3 डेज। एक सेक्शन मैंने रखा है इवनिंग का, मैं यहाँ से बिजनौर से 11 बजे निकलता हूँ और फिर हरिद्वार थोड़ा रेस्ट करके, और फिर मैं ट्रैक पर 3 बजे या 4 बजे जाता हूँ, 8 बजे मैं वर्कआउट करके फिर वापस आना पड़ता है बिजनौर।
0: अच्छा, ये डेली का
1: हाँ
0: रूटीन है
1: हफ्ते में
0: आपका,
1: 3 दिन
0: हफ्ते में 3 दिन?
1: जी।
0: अच्छा।
1: और उसमें क्या ना देखो ऐसा ना, स्पोर्ट्स में पैसा बहुत खर्च होता है भाई, बहुत ज़्यादा। आपके शूज़, आपके स्पाइक्स, आपकी किट महंगी आती हैं बहुत, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड हैं हमारे पास
0: जी
1: कि उनको डाइट नहीं मिल रही, मैं खुद प्रोवाइड कराता हूँ क्योंकि उनमें टैलेंट है। तो हम यही चाहते हैं कि जो बच्चा जिला स्तर में या फिर मंडल स्तर में मेडल आता है स्टेट स्तर में, उनको कम से कम ये तो हो कि हाँ भाई डाइट प्रोवाइड करा दो, क्या क्या खाना, जैसे एक साईं की डाइट चलती है प्रॉपर फेस में, उनको दिलाओ, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, ट्रैक अच्छा होना चाहिए।
0: सही बात है, प्रतिभा देखिए हर क्षेत्र में है, लेकिन सही गाइडेंस की ज़रूरत है और सही सुविधाओं की ज़रूरत है। एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी अभी आ रही है कि जैसे आजकल बच्चे स्टेरॉयड वगैरह लेते हैं खिलाड़ी, तो वो कितना सही है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं बॉडी पे?
1: सर आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है,
0: जी
1: मैं भी सोचने वाला था इसको बताने वाला था। ये जो एक अभिशाप है स्पोर्ट्स में, हमारे बच्चे जो ये स्टेरॉयड वगैरह ले रहे हैं ना, दे कौन रहे आप, पहले तो ये जो स्टेरॉयड अगर ये सक्सेस होता तो भारत सरकार क्यों बंद करती इसको? ये एक ऐसा नशा है, ये ऐसा पॉइजन है जो हमारे स्पोर्ट्स को ख़त्म कर रहा है
0: खत्म कर रहे हैं।
1: जी। तो ये बहुत गलत है और मैं इसके हमेशा विरोध में खड़ा रहूँगा कि ना हो। अच्छी अपनी डाइट खाओ, घर का खाना बहुत अच्छा खाओ, ट्रेनिंग स्मार्ट तरीके से करो।
0: जी, तो बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, जड़ पे काम करना जरूरी है। कोई भी समस्या तभी खत्म हो सकती है जब हम उसकी
1: बिल्कुल
0: जड़ पर काम करें। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं लेना चाहूंगा कि जैसे हमारा क्षेत्र बिजनौर है, छोटा जिला है और प्रतिभा की कमी नहीं है,
1: बिल्कुल।
0: तो अपने यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को क्या गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप?
1: मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को यही गाइडेंस देना चाहता हूँ भाई कि गलत राह पर चलो मत, और भैया मेहनत करो। अभी कुछ देर पहले सर बोल रहे थे स्टेरॉयड का, उसे तो यूज ही मत करो, उसको यूज करोगे आपके फेफड़े, आपके लीवर, ये सब खराब हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, मेहनत करो बस, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। सर साथ में मैंने एक चीज़ और ऐड की है, हमारा जो यूथ है वो गलत ट्रैक पर जा रहा है, तो मैंने उस यंग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहा हूँ, और हर गांव-गांव जाके

0: अच्छा
1: पेरेंट्स को समझाया जा रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ तो इस चीज का फेस कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो अभी बताई थी हमने कि भैया स्टेरॉयड नहीं लेना, उस पर भी हम विचार करते हैं और घर वालों को भी समझाते हैं। दूसरा कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो बच्चे जो है माँ बाप परेशान है उनसे, यार हमें सुनते नहीं है
0: जी। मतलब ये ऐसे युवाओं की बात आप कर रहे हैं कि जैसे जो एक तो बेरोजगार हैं,
1: हाँ
0: पढ़ाई लिखाई कम की है और ज्यादातर नशेखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं।
1: यस, अगर हमारा यूथ सही चलेगा, हमारा समाज बदलेगा, हमारा जो समाज की ग्रोथ बदलेगी, सभ्यता चेंज होगी, हमारे अगली पीढ़ी मजबूत होगी,
0: अगली पीढ़ी मजबूत होगी। बिल्कुल सही आपने बात की, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्रिमिनेलिटी भी बढ़ेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तरुण जी, आपने सेना में रहकर देश की सेवा की, खेल के मैदान में देश का नाम रोशन किया और अब नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामना है कि आपके मार्गदर्शन में और भी प्रतिभाएं आगे आएंगी और देश का गौरव बढ़ाएंगी।
1: धन्यवाद सर।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए अब आपको सुनवाते हैं नेपाल और भारत के बीच खेली गई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी श्रृंखला में भाग लेने वाले कबड्डी खिलाड़ी तनिष कुमार से भेंटवार्ता। श्रोताओं, कार्यक्रम खेल दर्पण में आज हमारे साथ हैं युवा कबड्डी खिलाड़ी तनिष। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है तनिष।
2: धन्यवाद सर।
0: तनिष, भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय सीरीज हुई थी कबड्डी की, उस कबड्डी टीम के आप प्लेयर हैं, लेकिन सबसे पहले आपका एक शॉर्ट इंट्रो चाहेंगे।
2: सर, मैं मूर्ति देवी सरस्वती इंटर कॉलेज नजीबाबाद जिला बिजनौर का स्कूल का छात्र हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में हूँ। मुझे एट्थ क्लास से ही कबड्डी खेलने का शौक हो गया था। स्कूल में बहुत सी लड़की कबड्डी खेलते थे, जो शुरू में मैं डर लगता था कबड्डी के, मेरी पैर हाथ नहीं टूट जाए डर लगता था इस वजह से। फिर जब मैं उसमें फोकस करा तो फिर मेरा डर भागा। फिर हमारे स्कूल में GIC वर्सेस MDS के स्कूल के टीम का मैच हुआ और हमने उसमें पहला स्थान पाया। जब से मुझे बहुत शौक लगा कबड्डी खेलने का।
0: अच्छा तनिष, कबड्डी खेलने का आपको शौक है और आपने, जैसा आपकी बातों से लग रहा है कि स्कूल लेवल से आपने शुरू किया और एट्थ क्लास से शुरू किया, तो ये जो द्विपक्षीय सीरीज हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, तो इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ उसके बारे में बताइए।
2: सर, मैं अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ। मेन कबड्डी प्लेयर मेरा दोस्त विवेक है।
0: अच्छा,
2: तो उसने मुझे बताया हापुड़ में ट्रायल चल रहे हैं
0: जी,
2: वहाँ पर एक कोच थे अरुण कुमार सर, उन्होंने ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के होने के बाद मेरा इंडिया वर्सेस नेपाल के लिए सिलेक्शन हुआ, मैं राइट कॉर्नर रहा हूँ।
0: तनिष, टूर्नामेंट में जैसे हम गए नेपाल, तो आप पहली बार इंडिया से बाहर गए होंगे।
2: यस सर।
0: कैसा महसूस हुआ?
2: सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इंडिया में पहली बार गए, इंडिया से बाहर जाते ही जब बॉर्डर से गुजर रहे थे, कुछ अलग सी फील आ रही थी।
0: अलग सी फील आ रही थी, डर भी लग रहा होगा।
2: जी सर जी।
0: अच्छा, टूर्नामेंट में कितने मैच हुए थे दोनों टीमों के बीच में?
2: सर, दो मैच हुए थे, वो तीन, सॉरी सर, तीन
0: मैच हुए थे,
2: जिसमें दो मैच जो जीत जाती है उसका फाइनल था।
0: अच्छा
2: जी सर।
0: यानी दो मैच नेपाल ने जीते और एक मैच इंडिया ने जीता। अच्छा, कबड्डी का आपको शौक है तनिष, तो आपने बताया कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई को और कबड्डी को कैसे मैनेज करते हैं?
2: सर, सुबह में मैं रनिंग करने जाता हूँ, जो कि मेन है कबड्डी के लिए
0: जी,
2: जिसकी वजह से सांस ना फूले। 40 मिनट का गेम होता है कबड्डी का। और शाम को 5 बजे के समथिंग मैं अपने ग्राउंड पे जाता हूँ, ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता हूँ 3 घंटे। 3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद शाम को करीबन 9 बजे से लेके 10-10:30 बजे पढ़ाई करता हूँ।
0: अच्छा, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी कोच के अंडर में कर रहे हैं?
2: सर, कोच के अंडर में मैं JD अकेडमी में करता था, पर अभी गर्मी की वजह से मैं वहाँ पर नोएडा में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वजह से घर पे कर रहा हूँ।
0: तो कहाँ देखते हैं अपने आप को आगामी जो 1-2 साल में अपने आप को, क्योंकि अभी आपकी उम्र काफी कम है तनिष, तो आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
2: सर, बस इंडिया की तरफ से खेलने का सपना है मेरा सर, इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है।
0: इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है। चलिए, थोड़ा सा हम अपनी बात को आपकी पर्सनल लाइफ से जोड़ते हैं। देखिए, जो भी श्रोता हैं जो हमें सुन रहे हैं तनिष, तो वो इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि खिलाड़ी ने कौन सी उपलब्धि हासिल की, वो जानना चाहते हैं कि उसके पीछे की मेहनत आपकी कैसी रही। तो जब आपको पता चला कि आप द्विपक्षीय सीरीज जो नेपाल के साथ इंडिया की हुई उसमें आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो उसके बाद तैयारी के लिए कितना वक्त मिला था आपको?
2: सर, मुझे करीबन 1 महीने का समथिंग मिला था, जिसमें मैंने अपने पूरे 100% दिया। सुबह भी शाम भी प्रैक्टिस कर रहा था मैं। फिर मैंने सर थोड़ी सी टाइम के लिए पढ़ाई रोक दी थी।
0: अच्छा
2: जी सर। फिर मेरे क्लास टीचर बोल रहे थे तो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, ये वो है। मैंने सर अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस चल रहे हैं, सर ने चलो कर लो, हमारे PTI सर हैं आलोक सर, वे भी हमें बहुत सोर्स करते हैं स्पोर्ट्स के लिए।
0: अच्छा, तो पूरी तैयारी की आपको 1 महीने का समय मिला, उसका पूरा आपने सदुपयोग किया और
2: जी सर
0: जी जान मेहनत की। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये तो एक टूर्नामेंट की बात रही, इसके अलावा आपने कुछ मंडल स्तर पे खेला हो या नेशनल
2: जी सर
0: वगैरह
2: जी।
0: खेला हो?
2: हाँ सर, हमारे स्कूल से स्कूल की टीम गई थी सर, वहाँ से किरतपुर, किरतपुर से नांगल जट, नांगल जट से अमरोहा, अमरोहा में जाकर मंडल स्तर खेलता है अमरोहा में, तो अमरोहा में जाकर अमरोहा की टीम फाइनल हुई थी, पर उसमें मेरा सर सिलेक्शन हुआ था, पर वहाँ पे कुछ ऐसा कारण हुआ कि मैं जा नहीं सकेगा।
0: मंडल स्तर के लिए।
2: जी
0: अच्छा तनिष, जैसे देखिए कबड्डी का जो ये गेम है,
2: जी
0: इसमें चोट भी काफी लगती है,
2: जी सर
0: तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मतलब इतनी ऐसी चोट लगी कि आपने सोच लिया छोड़ ही दूं कबड्डी
2: जी
0: को?
2: सर, इंजरी की बात मैं स्कूल में ही बता रहा हूँ, मैं स्कूल में बड़े बड़े बच्चों के साथ खेल रहा था
0: अच्छा।
2: जी सर, तो मेरे गोड़ में इंजरी आई थी बहुत तगड़े वाली, तो मैंने ये तक बोल दिया था आज के बाद कबड्डी नहीं खेलूंगा। फिर
0: अच्छा।
2: सर 3 दिन बाद फिर दोबारा खेलने चालू कर दी, फिर 3 दिन बाद जिन बच्चे ने मेरी इंजरी करी थी उन बच्चों के ऊपर ही टैकल पॉइंट करे मैंने।
0: बहुत बढ़िया। तो ये होता है कि इम्प्रूवमेंट हमारा, कि इंजरी को हमने बहाना नहीं बनाया कोई, और उससे हम उभर कर वापस आए। एक बात मेरे ध्यान में अभी आ रही है कि कबड्डी ही क्यों?
2: सर कबड्डी शुरू से फेवरेट स्पोर्ट्स है, छोटा सा था मैं सर करीबन मान के चलो 9 साल तक का, तो मेरी एक दीदी है वहाँ पर, तो उनके समूह के संतिक जो ना, मैं सानपुर ये यहाँ
0: जी
2: पर कबड्डी खेलना,
0: जी
2: यहाँ
0: जी
2: से ही
0: जी
2: फर्स्ट आया था प्राइस मैंने।
0: अच्छा।
2: जब से और भी ज़्यादा लगन लगी फिर स्कूल में कबड्डी खेलने लगी
0: तो इसलिए आपका इंटरेस्ट कबड्डी में
2: जी
0: है, तो परिवार का कितना सपोर्ट है इसमें?
2: सर, परिवार का ही सपोर्ट है, पर घर वालों को भी डर लगता है कि कहीं बच्चा चोट फिट ना खा ले, इसलिए पापा ही थोड़ा मना करते थे कबड्डी मत खेलो, पर मैंने फिर भी छुप छुप के खेली।
0: अच्छा। एक कबड्डी का प्लेयर होने के नाते अगर मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल करूं, तो कबड्डी में अगर कोई सफल होना चाहता है बच्चा, तो क्या चीज़ जरूरी है सबसे ज़्यादा?
2: सर पहले फोकस करना, कबड्डी पे फोकस करो और अपनी मेहनत में लगे रहो, ये मत सोचो कि मेरे से खिल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, पर एक दिन जरूर हो जाएगा जब मेहनत करते रहेंगे, मेहनत का फल जरूर मिलता है सर।
0: कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि लंबाई में ज़्यादा होते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो शॉर्ट होते हैं, तो लंबाई का कितना फ़ायदा मिलता है?
2: सर लंबाई के लिए एक तो रेडर ही फायदा देता है, क्योंकि ग्राउंड अलग अलग टाइप के होते हैं, सीनियर का ग्राउंड लंबा होता है, जूनियर ग्राउंड छोटा होता है, तो रेडर का फायदा लंबाई से बहुत ज़्यादा होता है कि
0: अच्छा,
2: रोकना मुश्किल हो जाता है रेडर को।
0: रेडर को
2: जी
0: यानी लंबाई का कहीं
2: जी
0: थोड़ा सा
2: सर
0: इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है
2: जी
0: खेल
2: जी
0: पे।
2: सर जी
0: अच्छा, थोड़ा सा हम बात इस बारे में करेंगे कि जहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं इसका, वहाँ पे क्या कैसा माहौल रहता है, किस तरह से सिखाते हैं कोच? जैसे सपोज आप यहाँ पर थे, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कबड्डी के बारे में आपको नहीं पता होंगी, तो वहाँ पे जाके आपका अनुभव कैसा रहा कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, स्ट्रेटेजी सीखने को मिली?
2: सर, कोच हमारे मतलब हर चीज़ बताते थे, मुझे जो ना राइट कॉर्नर पर चैन मारने नहीं आती, जैसे बोलते हैं कि रेडर को रोके कैसे जाए, मतलब कवर कवर की कोई गलती नहीं होती, कवर को दिखाना दिखाना होता है,
0: अच्छा
2: तो उन्होंने मुझे ये भी सिखाई कैसे लगती है, अपने हाथ से हाथ पकड़ के सिखाई,
0: अच्छा
2: माई बेस्ट कोच मैं उन्हीं मानता हूँ सर।
0: अच्छा एक बेहतर कबड्डी प्लेयर बनने के लिए और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, जो मतलब आप सोचते हैं कि
2: सर
0: एक एक खिलाड़ी को मिलनी जरूर चाहिए?
2: सर कबड्डी प्लेयर को तो ऐसी बात है सर, डाइट पर अपना फोकस देना चाहिए, क्योंकि
0: अच्छा।
2: ये खेल जान गई है, जब बोलो शरीर में जान नहीं होगी तो बेकार है खेलना।
0: तनीष, आपसे बात करके आज हमें बहुत अच्छा लगा। आपने आज बताया कि आपकी उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन देखिए सपने बड़े होने चाहिए श्रोताओं, तो इसी तरह मेहनत करते रहिए तनीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
2: थैंक यू सर।
0: श्रोताओं, ये था कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। आलेख एवं वाचन स्वर नमित राज का था और प्रस्तुतकर्ता थे अंकित सैनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र पर तैयार हुआ और लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: खेल दर्पण।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात। इस कार्यक्रम में सबसे पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत को लिखा है SH बिहारी ने, संगीत दिया है OP नैयर ने, फिल्म का नाम है कश्मीर की गली।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म अनुपमा में। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले को सावन की घटा में, जिसे लिखा है एस एच बिहारी ने और संगीत दिया है ओ पी नैयर ने।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। फिल्म थी मेरे हमदम मेरे दोस्त। आइए अब सुनते हैं फिल्म आराधना का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज बनाई है एस डी बर्मन ने।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म तलाश का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत तैयार किया है ST परमन ने।

0: इस गीत के साथ ही आपकी बात कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत।
2: सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी

0: साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी ये सभा। कल सुबह 5:50 पर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।